0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा, तो उसका effect कितना लंबा जाएगा? तो जब brain में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं, उसका brain पर असर पड़ रहा है। ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल कटारा खींच के।
2: हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरणों की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और उसमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हो सकती है, कौन सी हमारी जिम्मेवारियां हैं, तो जब अपनी तरफ देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले है, तो उसमें बहुत सी बातें सामने आई कि किस तरफ मैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैं लेकर जाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी को, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी जिम्मेवारी है। जहाँ मैंने अपनी चॉइस की तो जिम्मेवारी भी मेरी ही होगी। आगे और बढ़ाते हैं इस बात को और देखते हैं कि किस तरह से ये अनफोल्ड होता जाएगा, खुद को मैनेज करने का प्रोसेस। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से पिछली कड़ी में हमने देखा था कि हर बार हम बहुत से सिचुएशंस में ऐसे कह देते हैं कि आई डोंट हैव एनी चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो कहीं ना कहीं जब हमने बातें की थी तो ये बात सामने आई थी कि जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ उसमें चॉइस मेरी ही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर आ रही थी, कोई भी सिचुएशन है, जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, मैं इसलिए कई बार ये कह देती हूँ कि इट्स नॉट माई चॉइस, आई डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि फिर उसकी जिम्मेवारी मुझ पर आ जाती है।
1: वी ऑल्सो लाइक वी रियलाइज अबाउट द कर्मा फिलोसफी, सो मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ अस, इनफैक्ट आई कैन से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हम लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना जीवन में, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब हमें क्या होता है जब परमात्मा से ये ज्ञान मिलता, या हमने पहले भी कार्मिक फिलोसफी समथिंग जो हमने बचपन से सुना था, तो एक तरफ से कार्मिक फिलोसफी हमें कहता कि हम जो करते उसी का रिटर्न मिलता, लेकिन हमारी अपनी बिलीफ ये कहती कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो समवे वी नीड टू थिंक कि जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी होती हुई चीज़ें हमें गलत लगती हैं, लेकिन करती हुई चीज़ें हमें गलत नहीं लगती हैं। सी, होती हुई जो चीज़ें हैं, विच इज़ कमिंग द एनर्जी कमिंग फ्रॉम देयर, आई डोंट लाइक इट, लेकिन जो एनर्जी हम यहाँ से भेज रहे हैं थॉट, वर्ड, एक्शन के रूप में, हम कह रहे हैं वो गलत है ही नहीं। हमने जो कल के एपिसोड में डिस्कस किया, इट जस्ट स्ट्रक समथिंग हियर फॉर मी, एंड इट वॉज क्यों हमें ये लगता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। डेफिनेटली हमने गलत किया है, लेकिन जब हम वो कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है। तो क्या होता है, हम गलत करते हुए भी, जैसे हमने कल देखा कि ब्राइब देते हुए भी हम कह रहे होते हैं मैं सही हूँ, सिस्टम गलत है,
0: अपने आप को जस्टिफिकेशन,
1: मैं सही हूँ। हर कर्म के लिए है ना, हर कर्म के लिए हमने अपने आप को कहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ,
0: सिस्टम गलत था, सिस्टम गलत था,
1: समवन एल्स इज रॉन्ग। तो इसलिए जब वो मेरे पास वापस आता है, आई से मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि गलत करते टाइम भी मैंने क्या सोचकर गलत किया था,
0: ये मैं तो सही हूँ,
1: सही हूँ।
0: इनफैक्ट ये अपने आप को धोखा देने वाली बात, जो अभी तक हम कहते थे कि आप किसको धोखा दे रहे हो, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ धोखा दिया, सब कुछ क्लैरिटी से तो कर रहे हैं, लेकिन अगर डीप डाउन तो इनफैक्ट ओ वाओ,
1: मेरा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन है, एवरीवन यूनिवर्सल आई विल फील दिस हैज हैपेंड, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे व्हाटएवर फिजिकल इलनेस में है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन परमात्मा कह रहा है जो आपने किया उसका ही मिल रहा है, तो वेयर इज द फॉर्मूला, सी द फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दैट्स इंपॉर्टेंट।
0: क्योंकि पता है कई लोग ये भी बोलते हैं मैंने जानते हुए कुछ गलत नहीं किया, अनजाने में गलत हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता।
1: हाँ, तो वो तब ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमने लिए ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स में हम एक्चुअली तो गलत ही कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को सही बता कर रहे होते हैं, तो फिर जब हम अपना ही अकाउंट चेक करते हैं, यू नो,
0: अब अगर हम चेक करना शुरू करें तो कितनी,
1: अब जब हम अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं तो मैंने कहा मैंने सब कुछ सही किया, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, परमात्मा ने आकर कहा ये फॉर्मूला वर्क नहीं होता है, जो आपने किया वही मिल रहा है, तो नाउ चेक योर कर्म वाला अकाउंट अगेन, एंड नेक्स्ट टाइम जब कर्म कर रहे होंगे तो थोड़ा सा और अटेंशन के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं गलत करते हुए भी अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसका रिजल्ट मेरे सामने आएगा मैं फिर वही स्टेटमेंट दूंगा
0: कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था,
1: एंड देन इट मेक्स मी फील वेरी पेनफुल इनसाइड, यू नो दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पेन।
0: ओके, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आज अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब और जिसको मैं अभी तक मैं ये कहता था कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है इसलिए मुझे ये करना है, लेकिन आज मैं ये समझते हुए कि मेरे पास चॉइस है और मैंने ये गलत किया क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम की ज़रूरत ये थी, मुझे इस टाइम पे ये ज़रूरत लग रही थी और मैंने ये गलत किया जानते हुए, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। समवेयर आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि दिस इज समथिंग विच इज़ रॉन्ग विच आई हैव डन एंड इट विल हैव इट्स ओन
1: And
0: रिपरकशन।
1: stop telling myself this every time. It's just that करते हुए मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ. कर तो मैं ही रहा हूँ, इसीलिए इट्स कमिंग बैक टू मी. सिस्टम गलत है तो ब्राइब देना गलत हुआ क्या? नहीं. अब कल को अगर मेरा कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया फाइनेंशियल, क्योंकि मैंने जो अभी गलत कर्म किया वो फाइनेंशियल था, कार्मिक लॉ विल वर्क इन द सेम वे, तो जहाँ मैंने एक फाइनेंशियल कर्म जो किया वो रॉन्ग था, कहीं मैंने पैसा गलत तरह से लगाया तो कहीं मेरा पैसा गलत तरह से फिर
0: चला गया,
1: जाएगा भी, लेकिन जब वो जाता है
0: बहुत तकलीफ होती है,
1: तो मैंने कहा मैंने तो कुछ गलत
0: क्या
1: नहीं
0: हुआ,
1: किया.
0: क्या किया था मैंने। हाँ
1: टू बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स, दिस इज नॉट टू स्केयर आर सेल्व्स, दिस इज जस्ट टू बी अवेयर वाइल डूइंग द एक्शन. सो कीप ऑन डूइंग इट हाउ एवर यू आर कंफर्टेबल, बट रिमेंबर लेट्स स्टॉप दिस सेंटेंस एटलीस्ट, क्योंकि ये सेंटेंस भी हमें बहुत हेल्पलेस फील कराता है जब हम कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है. ये भी हमारे जीवन को क्या कर देता है? बहुत कमजोर बनाता है. आज मेजोरिटी हम कहते हैं मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सबने मेरे साथ ही धोखा दिया. हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज जस्ट दैट मीन्स इन द लॉ ऑफ एनर्जी इज नॉट वर्किंग. मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सबने मेरे साथ धोखा दिया, ये कहाँ वर्क कर रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मैं सबके साथ बोलने में बहुत मीठी हूँ
0: अंदर
1: लेकिन अंदर मैं उनके प्रति क्या थॉट क्रिएट कर रही हूँ. फिर जब वो एनर्जी मेरे पास रिटर्न में आती तो किस तरह से आती? तो लॉ ऑफ कर्मा एट एवरी स्टेप आई नीड टू रिमेम्बर. धन तो बहुत छोटा लेवल है लेकिन हर स्टेप पर उस पर देखते जाएं. तो जब हम इस तरह से ध्यान रख कर अपने जीवन को चलाएंगे, जीवन की यात्रा में चलेंगे, तो हमें सबसे पहली पावर ये मिलेगी कि मैं अपना जीवन खुद क्रिएट करता हूँ. हर स्टेप में सीन है, सीन आते मेरे पास चॉइस है क्या रिस्पॉन्स देना. जो मैंने रिस्पॉन्स चूज़ किया उस समय मेरे लिए वो सीन बना. आप वही सीन में दो अलग एक्टर्स को अलग अलग रिस्पॉन्स देता हुआ देखेंगे, दोनों ने अपनी जीवन अलग अलग उसी टाइम डिसाइड कर ले. समटाइम्स वी टेक वेरी बिग डिसीशंस, उसी सिचुएशन में दो लोग दो अलग डिसीशंस लेते हैं और दोनों की जीवन की यात्रा बिल्कुल ही चेंज हो जाती है. लेकिन क्या वो ये कहेंगे कि ओ इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स? नो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट डिसीशन विच दे टुक दैट टाइम.
0: चॉइस आई मेड,
1: तो हो तो यही रहा, सिर्फ लिव विद दैट अवेयरनेस, ताकि उससे क्या होगा जब हम वो जागृत अवस्था में चलेंगे कि हर स्टेप पे मैं अपना जीवन खुद बना रहा हूँ, तो दैट विल गिव मी अ वेरी नाइस फीलिंग एंड इट इज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम विलिंग टू डू दिस इंस्टेड ऑफ आई हैव टू डू दिस.
0: एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कैन चेंज इट एनी टाइम आई वॉन्ट. सी राइट नाउ इफ आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ विद माई लाइफ, आधे से ज्यादा तो हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ अपने आप से. सुबह उठ के रोज मैं एक ऐसी ऐसे दिन की शुरुआत करता हूँ जो जिससे मैं कोई खुश नहीं हूँ. मैं नहीं चाहता उस ऑफिस में जाना, मैं नहीं जीना चाहता उस पूरे एटमोसफेयर में, मैं खुश ही नहीं हूँ.
1: अब जहाँ तक जैसे आपने कहा मैं नहीं जाना चाहता उस ऑफिस में, तो अभी भी कुछ लोग कहेंगे ये प्रोग्राम सुनते हुए भी, कहाँ मेरे पास चॉइस है? अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं जॉब ही छोड़ देता ना, फिर मुझे नहीं जाना है. ओके सिचुएशन कि आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, ये भी आपका डिसीशन है, ये तो चॉइस है ना कि वो जॉब करते हुए आप फील कैसा करेंगे, क्योंकि वहाँ रहना आपने चूज़ किया है. सी दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. अगर हम कहें मैं मजबूर हूँ वहाँ काम करने से, फिर आप दर्द में काम करते हैं, आप दर्द में काम करते हैं, नफरत से काम करते हैं, व्हाटएवर. लेकिन जहाँ आप कहते हैं मेरी परिस्थितियाँ या कुछ भी, मेरा परिवार जो भी एक रीज़न है उनकी वजह से मैं चूज़ करता हूँ इस ऑफिस में काम करना, तो मेरी चॉइस है, तो अपनी चॉइस को कैसे निभाना चाहिए?
0: बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू पावर.
1: या यू नो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल टेक अ करियर. पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियरिंग करे. अगर बच्चा पेरेंट्स के कहने पर मेडिकल करता है ना, तो वो पढ़ता भी जाता है, प्रोफेशन भी करता है, लेकिन पूरा टाइम उनको ब्लेम करता है, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी, तो देन ही डजंट रियली पुट इन द बेस्ट और इन्जॉय. लेकिन जो प्रोफेशन उसने खुद चूज़ किया होता है, उस प्रोफेशन में कितने भी हर्डल्स आते हैं, ये नहीं है कि उस प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन चॉइस किसकी थी? वो प्रोफेशन मेरी थी. उस समय वो कंप्लेंट नहीं कर सकता. जहाँ आपकी चॉइस है, आप कंप्लेन नहीं करते. अगर वो बच्चा घर आकर कहे कि मुझे ना बहुत डिफिकल्ट है ये इंजीनियरिंग करना, तुरंत पेरेंट्स क्या कहते? आपने चूज किया था ना.
0: सो तो उसके लिए वी मेक इट वर्क.
1: यस, वी मेक इट वर्क. यू पुट इन योर बेस्ट इनटू इट. तो इसी तरह वो ऑफिस जो आप कह रहे हो कि मेरा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता वहां जाना, लेकिन मैंने चूज किया है वहां जाना, नाउ मेक इट वर्क बिकॉज इट्स योर चॉइस. लेकिन अगर आप मजबूरी समझ के, चाहे ऑफिस या किसी रिश्ते में हैं, आज लोग बहुत सारे रिश्तों में हैं, चूज भी कर रहे हैं लेकिन मजबूरी से रहते हैं, तो दर्द में रहते हैं. यू आर चूजिंग, माय मदर इन लॉ शी इज लाइक दिस, बट आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू स्टे विद हर. ओ, यू आर चूजिंग टू स्टे विद हर, नाउ मेक द मोस्ट ऑफ इट. ये आपकी चॉइस है. अब यहाँ क्या क्रिएट करना है वहाँ रहते हुए उनके साथ, चूज इट. लेकिन जब हम कहें मेरी चॉइस नहीं है, तो हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, और फिर हम कर भी रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर
0: बहुत
1: घुट भी रहे हैं.
0: और वो दिस इज नॉट सेल्फ जेन्युइन होती है. जेन्युइन
1: जेन्युइन घुटन जेन्युइन कैसे हो सकते हैं?
0: मतलब वो घुटन जो है वो महसूस तो हो ही रही होती है ना,
1: बहुत ज्यादा
0: तकलीफ तो बहुत हो रही होती है.
1: एंड मोस्ट ऑफ अस कैन स्पेंड आवर होल लाइफ इन दिस. वी मीट लॉट ऑफ गर्ल्स, वुमेन नाउ, दो कहेंगे मैं आई वाज अ वर्किंग गर्ल, लेकिन शादी करने के बाद मुझे कहा गया कि आपको जॉब नहीं करना, चॉइस. कहेंगे नो, नॉट माई चॉइस, माई फैमिली मेड मी डू इट. एंड फिर पूरी जीवन कैसे काटेंगे? रहेंगे उसी परिवार के लिए, त्याग भी उनके लिए किया लेकिन अंदर से नहीं किया. ऊपर से त्याग किया, अंदर से दर्द दर्द दर्द. फिर कहेंगे इतना इनके लिए किया, ये अभी भी खुश नहीं है मेरे से. क्यों खुश नहीं है? क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ. तो फिर वो जीवन की पूरी यात्रा कैसे हो जाएगी? आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू. तो हमने एक बहुत अच्छा स्लोगन एक जगह पढ़ा, जस्ट चेंज वन वर्ड, हैव टू की जगह वॉन्ट टू, एंड योर लाइफ विल चेंज. एंड इट वर्क्स. आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई हैव टू डू.

0: लेकिन डू आई हैव अ क्लियर सेंस ऑफ अ गोल एंड एम कि मुझे इतने समय में क्या करना है. जैसे टाइम इज मनी कहते, तो जितना पैसा मेरे पास है, मेरे पास कितना क्लियर ये होता है मुझे इस पैसे से क्या क्या करना है. जितना समय मेरे पास है, क्या मेरे पास वो क्लियर गोल है मुझे इस समय में क्या क्या करना है. एम आई वेरी क्लियर विद माई गोल्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि अगर क्लियर नहीं होता तो आप देखो जीवन में चलते चलते बीच बीच में क्वेश्चन उठता, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, वाई एम आई हेयर, व्हाट एम आई डूइंग, दिस इज मीनिंग लीडिंग अ लाइफ. लेकिन ये नहीं पता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं. तो जब भी ये मन में क्वेश्चन उठता, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, इसका क्या. मेनी पीपल, उनका सबसे बड़ा, उनको पूछो यू हैव एनी क्वेश्चन, दिल से व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. अ पर्पस ऑफ माय लाइफ, हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स.
1: ओह, वी आर डूइंग दैट, यू नो, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन.
0: हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ, दैट मींस आई एम लीडिंग अ पर्पसलेस लाइफ. मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है. तो हम अपने जीवन का कोई गोल, कोई एम, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं सेट कर पाते, क्योंकि दो चीज़ों की कमी है. एक, हमने अपने जीवन का कोई पर्पस नहीं बनाया. गोल इज सेपरेट, पर्पस इज सेपरेट. उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि गोल क्या है, पर्पस क्या है. और दूसरा, हमने अपने जीवन की कोर वैल्यूज़ नहीं डिफाइन की है. एक बार हमारी कोर वैल्यूज़ और जीवन का पर्पस डिफाइन हो जाए, फिर गोल सेट करना बहुत ईजी हो जाता. एंड फिर ध्यान रखना कि जो गोल मैं सेट कर रहा हूँ वो मेरे पर्पस और वैल्यूज के साथ
1: क्लैश ना करे,
0: मैच करे. इस पर मनन भी करना पड़ेगा कि मेरे जीवन का पर्पस और वैल्यूज क्या है. एंड दिस नीड्स टू बी रिटन समवेयर. हर एक के पास ये लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब आपकी लाइफ में कोई द्वंद आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि आजकल कई बार आता कि मैं ये करूँ या ये करूँ, गो पिक अप दैट चिट फर्स्ट जो वहाँ रखा था. क्योंकि ये गोल्स हैं, लेकिन पर्पस और वैल्यूज क्या है.
1: हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको मैनेज करने में अपने जो ज़रूरतें हैं दुनिया भर की या जीवन की जो ज़रूरत है उन्हीं को पूरा करने में हम इतने इन्वॉल्व हैं कि ना हमने पर्पस के बारे में सोचा, ना हमने वैल्यूज़ के बारे में सोचा है, और गोल तो समझ में नहीं आता कि
0: पर्पस के बारे में सोचते भी तो भी क्या पर्पस दिखाई देता. जीना और अपने बच्चों को
1: पालना
0: भर, तो यू नो इट्स अ वेरी एक्सटर्नल पर्पस. तो वो पर्पस नहीं है. फिर हर थोड़े दिन के बाद ये आता,
1: क्या कर रहे हैं हम.
0: ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
1: क्या कर रहे हैं हम. वेयर एम आई गोइंग, यू नो, मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. और उसके बाद फिर उसी डर्रे में चले जाना. आज
0: क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन अराइज होता है ना, उसको दबा देते हैं. क्वेश्चन आता है, सबके मन में आता है. ये कभी ना कभी हर एक के मन में क्वेश्चन उठता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है. लेकिन फिर छोड़ते, छोड़ो ना, काम करो, बच्चों को संभालो, परिवार को,
1: बहुत सारा काम,
0: ये क्वेश्चन को, ये सब. फिर सोचते जब रिटायर हो जाएंगे ना, स्पिरिचुअलिटी विल गिव अस द आंसर्स फॉर ऑल दिस क्वेश्चन. बट पर्पस ऑफ माई लाइफ इज
1: नाउ,
0: थ्रू आउट माई एंटायर लाइफ आई नीड टू चॉक इट आउट व्हाइल आई एम ऑन द जर्नी इन दिस लाइफ. अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए हु इज वेरी फोकस्ड, बहुत क्लियर है कि वो अपने जीवन में क्या चॉइसेस बना रहे हैं. डिसीशन लेना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. दे विल नॉट गो अराउंड आस्किंग पीपल, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना. उनके पास सिर्फ अपना वो पर्पस ऑफ लाइफ और वैल्यू वाला चिट सामने होगा. हियर व्हाट इट इज, सच अ पर्सन नेवर नीड्स हेल्प टू टेक देयर डिसीशंस. अगर मैंने अपना डिसीशन अपने वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए लिया, तो मुझे कभी भी अंदर से घुटन की फीलिंग नहीं आएगी, चाहे वो डिसीशन कोई भी डिसीशन.
1: You know, now a lot of people are going to ask us, what should be the purpose of our life?
0: Yeah, good. I didn't mind that. That is an okay, good question. But we will not find the purpose. We can just take them on a journey to find their own purpose. Because everyone will have to find the purpose for themselves. Agar humne ready-made answer de bhi diya, ki this is purpose of your life, these are your values, wo aaj paper par likhenge, kal chhod denge usko. Jaise hi situation samne aayi, छोड़ो इसको, आई हैव टू डू दिस.
1: तो एक जिस तरह से जीते जा रहे हैं उसी तरह से जिएंगे.
0: इट हैज टू कम फ्रॉम मी. हर एक को अपने आप के लिए ये ढूंढना पड़ेगा. तो जो लोग ये बहुत फोकस्ड और यू नो जिसको कहें वेरी क्लियर कि उनका डिसीशन क्या होना चाहिए, उनके एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए,

0: उनके पास तीन बातों का आंसर होता है। वो कौन है, पहली बात, वो यहाँ क्यों है, एंड तीसरा, उनका रोल क्या है। ये तीन क्वेश्चंस के अगर आंसर मिल जाते, हु एम आई, वेयर एम आई एंड व्हाई एम आई हियर, आई नीड दीज थ्री आंसर्स। हु एम आई, वेयर एम आई हियर एंड व्हाई एम आई हियर, ये तीन आंसर्स मिल गए, फिर पर्पस और वैल्यूज ढूंढना बहुत ईजी हो जाता। लेकिन जैसे ही हु एम आई को आंसर करना शुरू करते तो वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही खड़ा हो जाता है। और आज दिन तक तो जब तक परमात्मा से ये ज्ञान नहीं मिला था तो यही सुना था कि हु एम आई इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर।
1: यू स्पेंड ऑल योर लाइफ सर्चिंग फॉर इट।
0: तो जब तक हु एम आई नहीं आंसर हुआ तो माई पर्पज एंड माई वैल्यूज वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि पर्पज और वैल्यूज किसका है, माई पर्पज माई वैल्यूज, लेकिन वो मैं कौन। वो मैं का जैसे ही आंसर निकलेगा तब तो उसकी वैल्यूज निकल कर आएंगे ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए सब कहते हैं कि जब तक हु एम आई का आंसर नहीं आता तो बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रह जाते। आज अगर हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर एक लेबल लगा है। कोई भी ड्रेस देखो ना, उसके ऊपर लेबल है, कौन सा मेक, क्या कॉस्ट, क्या डिज़ाइन, कैसी इसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस है, सब कुछ लेबल्स लेबल्स, हर जगह लेबल्स। अपने आप को देखो, हमारे ऊपर भी एक लेबल लगा हुआ है। जिसको भी हम मिलते उनके ऊपर भी तुरंत हम एक लेबल लगा देते हैं। बिना लेबल के किसी को देखना या किसी से मिलना इज बिकम डिफिकल्ट। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, लेबल, फैट, थिन, प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, लेबल्स। जैसे ही हम औरों के ऊपर इतने लेबल्स लगाते, अपने ऊपर भी हमने लेबल्स लगाए हुए हैं। हु एम आई, तो ये पूरी लिस्ट ऑफ लेबल्स आ जाती। और जैसे ही ये लेबल्स बन जाते, मेरी पूरी जीवन पता है किस में बीतती है, इन लेबल्स को डिफेंड करने में, इन लेबल्स को संभाल कर चलने में, कि और इन लेबल्स के ऊपर ही मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस लेबल पर ही डिपेंडेंट है
1: कि मैंने अपने आप को ये लेबल दिया, अब जो भी दूसरा है वो ये लेबल एक्सेप्ट करे, उसे समझ में आए कि मैं ये हूँ।
0: एब्सोल्युटली। जैसे ही किसी ने मेरे उस लेबल को थ्रेटन किया, लेट्स से माय लेबल इज आई एम अ हिंदू, सिंपल लेबल, जैसे ही कोई कहे तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ, आई एम एन इंडियन, ये मेरा लेबल है, कहे कोई अब इंडिया के बारे में कुछ भी, एंड आई विल गो लाइक दिस, मुझे कह दिया, एंड देन वी से पेट्रियोटिज्म, यस, बट पेट्रियोटिज्म डजंट मीन दैट आई नीड टू रिएक्ट, लेकिन मेरा लेबल है। और जैसे ही किसी ने उस लेबल को स्क्रैच किया, उसको हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया। लेट्स से आई एम अ डॉक्टर, किसी ने भी अगर कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, मुझे कह दिया, एंड आई विल गेट हर्ट। आई एम अ मदर, किसी ने मेरे बच्चों के बारे में कुछ कह दिया, आई गेट हर्ट, मेरे लेबल को स्क्रैच कर दिया। नाउ दिस इज माई आइडेंटिटी। अगर ये जो लेबल्स की पूरी लिस्ट है, ये मेरी आइडेंटिटी होगी, तो व्हाट विल बी माय वैल्यूज,
1: डिपेंडिंग अपॉन देम, यू नो,
0: डिपेंडिंग ऑन
1: दीज, सेव करने के लिए
0: लेबल्स। एब्सोल्युटली, मेरी वैल्यूज हु एम आई पर डिपेंड करती है। तो जैसे हु एम आई, वाइफ, मदर, वुमन, इंडियन, हिंदू, ये आंसर आएंगे, तो वैल्यूज भी क्या आएंगे, सब उससे रिलेटेड आएंगे।
1: और उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं को यू नो बहुत अच्छी तरह से शो करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई एम।
0: एब्सोल्युटली। क्योंकि वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, व्हेन वी से वैल्यूज, तो वैल्यूज मींस समथिंग दैट आई केयर अबाउट। आई से आई वैल्यू यू, आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप, आई वैल्यू माई जॉब, इट्स वैल्यू, समथिंग दैट आई केयर अबाउट। अब अगर मैं अपने आप को एक प्रोफेशन के साथ एसोसिएट करती हूँ, तो व्हाट विल बी माय वैल्यू,
1: पावर
0: देयर, पोजीशन देयर, माय रोल देयर,
1: एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन,
0: एवरीथिंग। नाउ माय वैल्यूज मींस आई विल ओनली बी रिलेटेड टू दैट पावर, पोजीशन, दैट रोल दैट आई प्ले देयर। तो सारा दिन मेरा पूरा ध्यान किस पर होगा, उस पर होगा। इफ माय लेबल इज, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, इफ माय लेबल इज आई एम अ ब्रह्मा कुमारी,
1: होल थिंग इज लाइक
0: रिलीजन, फिलोसफी, अगर किसी ने मेरी नहीं मतलब, लेकिन जो भी फिलोसफी आई एम प्रैक्टिसिंग इट, लेट समवन से एनीथिंग अगेंस्ट दैट फिलोसफी एंड आई विल गेट हर्ट। स्पिरिचुअलिटी वैनिश्ड, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी वॉज एक्चुअली नॉट टू गेट हर्ट, लेकिन मैंने वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा, मैंने अपना लेबल कौन सा अटैच कर लिया, आई एम दिस, हाउ क्रिटिकल दैट इज। आज हमने अपने लेबल्स पर रिलीजन को लगाया है, एंड दैट्स वाई इन द नेम ऑफ रिलीजन वी आर फाइटिंग विद ईच अदर, प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने रिलीजन को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी फिलोसफी को, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वैल्यू, नो वन कैन डू और से एनीथिंग टू दिस, देन टू प्रोटेक्ट
1: दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी, यस, यू नो, लाइक, ओह यस, वेरी ट्रू.
0: ये सारे जो लेबल्स हैं, अब परमात्मा आकर हमारे ये सारे लेबल्स
1: हटा देता
0: और हमें दिखाता कि हम एक्चुअली कौन हैं. और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हम एक्चुअली कौन है, हु एम आई, जब आंसर हो जाएगा, तो वैल्यूज एंड पर्पस वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है.
1: वेरी ट्रू.
0: तो जब तक वो आंसर नहीं होता, लेट्स सिट इन साइलेंस फॉर वन मिनट और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि हु एम आई. और जो जो आंसर बाहर के अक्वायर्ड लेबल्स के हों, उनको एक साइड रखते जाए. दिस इज माइन, माई रिलीजन, माई रोल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जिन जिन लेबल्स के साथ माई आता, उसको हटाते जाएं. दिस इज अ लेबल विच इज फाइन, दिस इज देयर, बट दिस इज माइन. मुझे उस आंसर पर आना है कि हु एम आई. तो अपने आप के साथ बैठें और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि जैसे ही हम आई कहते हैं, तो क्या क्या आता है सामने. और धीरे धीरे जो जो चीज़ें इस जीवन की यात्रा में अक्वायर की हैं, हमने प्राप्त की हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, वो हमारी डिग्रीज हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी और पोजेशंस हैं, वो सब कुछ मेरे हैं, उनको एक साइड रखते जाएं. यस, आई अंडरस्टैंड, ये मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैं कौन? थॉट्स, फीलिंग्स, ये भी मेरे हैं, मैं कौन? लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट हु एम आई, टू होम ऑल दिस बिलोंग्स. जैसे जैसे हम एक एक लेबल को गिराते जाते, धीरे धीरे हम खो नहीं रहे हैं कोई भी चीज़ को, हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि मैं कौन, मेरा क्या क्या. एक एक लेबल को हटाते हटाते वी कम टू आवर सेल्व्स, आई, दैट बीइंग, द एनर्जी, जस्ट मी, जो इन रिलेशनशिप्स और इन रोल्स को प्ले करती है, आई, कॉन्शियसनेस, I am that being of energy. And now, as I set out throughout the day with this identity, ke ye sab kuch mera hai, lekin main ye hu, to aaj ke din main apni values ko dekhna shuru karte, apne purpose ko dhoondna shuru karte. Let me explore it with myself today.
1: ओम शांति. सुशिवानी, जिस तरह से आज पूरी बातचीत रही और जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्शन की बात कर रहे थे, वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट सवाल यही कि मेरे जीवन का पर्पस क्या. और उसमें आपने कहा कि जब तक वैल्यूज़ नहीं आएंगी सामने, तब तक, जब तक मैं खुद को नहीं पहचान पाऊँगा, तब तक ना वैल्यूज़ को ले पाऊँगा, ना पर्पस पता चल पाएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि खुद को हमें पहचानना है. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू this journey.
0: We'll then take it up tomorrow.
1: Yes.
0: That how do I find my purpose and values?
1: Yes. Then. We'll talk about it tomorrow because आज हमारे पास नहीं रहा वक्त, लेकिन आज जो हमने समझा है वो भी बहुत important है. एक पूरा time चाहिए उसको seep in करने के लिए. हम शांति. आज की इस पूरी बातचीत में कहीं कोई ऐसी बात लगती है जो अभी आपके सामने नहीं क्लियर हो रही है, या कुछ और आप कहना चाहते हैं, कोई सजेशन है, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-999-344-666, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज जो अपनी पहचान हुई है कि आप वो चैतन्य शक्ति हैं, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, इन सारे लेबल्स के, माँ के, पिता के, प्रोफेशनल के, या कोई भी जितने भी लेबल्स हमने ओढ़े हैं उन्हें ज़रूर चेक करें, देखें कि वो कौन कौन से लेबल्स हैं, उनको रखने के लिए कितनी वैल्यू करता हूँ मैं, और उसके बाद डीप जब ये लेबल्स उतरते गए तो मैं कौन हूँ ये सामने आता है। उसके साथ आप रहें, उसे सीप इन करने दें, फिर वैल्यूज़, इस नई पहचान के साथ जब हम वैल्यूज़ और पर्पस की तरफ जाएंगे, एक नया मैं सामने आऊँगा। आज की कड़ी में इतना ही।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे, वो संस्कार क्या होता जाएगा? वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी? पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी? स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: मेरे लिए,
4: अगर आप कबूल करें तो।
3: मेरी जरूरत नहीं कि इनकार करूं, आइए। लेकिन अचानक मुझे कैसे इस लायक समझ लिया?
4: आपने मुझे जिंदगी का मुकाबला करने की हिम्मत दी, बदले में ये बहुत छोटा तोहफा है।
3: रखिए, खोल के देख सकता हूँ।
4: जरूर।

0: नहीं।
1: शालिनी देवी, अगर आप मुझे अमर बनाना चाहती हैं तो ये आपकी भूल है। अगर आप मेरे साथ इसलिए मुलाकात बढ़ाना चाहती हैं कि मुझ में आपका अमर नजर आता है, तो आप समझ सकती हैं कि मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर मैं आपको अमर की याद दिलाता हूं तो आपसे दूर रहना पसंद करूंगा। हाँ, अगर अमर को भुलाने में आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे अपना साथी समझिए।
0: गलती से मैं आपको अपना दोस्त समझ बैठी।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन जीने की कला को हम सीख रहे हैं लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में। अपने विचारों को देखा, जाना कि कितनी तरह के विचार होते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो थॉट्स या विचार हम क्रिएट करते हैं क्या असर डालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बड़ा खुलासा हुआ है हमारे सामने है अब खुली किताब की तरह कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। जो भी विचार हैं, जिस तरह के जितनी तरह के विचार हैं आपने कहा, वो हमारे द्वारा क्रिएट होते हैं। अभी तक हम अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। ये जो विचार हैं, ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे जीवन पे तो डाल रहे हैं असर। अगर है, क्या हमारे बॉडी पर भी इनका असर होता है?
2: नहीं, डेफिनेटली पहला असर तो बॉडी पे होता है, क्योंकि ना आत्मा शरीर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट इफेक्ट तो बॉडी पर ही है, फिर सारे जीवन पर है, लाइफस्टाइल पर है। और मानते हैं कि शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स है, तो आपका प्रत्येक विचार या सभी 75 ट्रिलियन सेल्स पर इफेक्ट करता है।
0: बॉडी और ये पर्सनालिटी, दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो जो जो हम थॉट कर रहे हैं वो इस शरीर पर, इस पर भी असर डाल रहा है, ऑर्गन्स पर भी डाल
2: बिल्कुल
0: रहा है।
2: हाँ, थॉट भी डालेगा, और जब पर्सनालिटी बनेगी तब तो वो थॉट आपका बार बार रिपीट होगा।
0: हाँ।
2: और उससे अच्छा और जो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट है वो बढ़ती जाएगी।
0: ओके।
2: बात तो है कि भी वन सिंगल थॉट अफेक्ट्स प्रैक्टिकली ऑल द 75 ट्रिलियन सेल्स ऑफ बॉडी। है ना, मतलब इतनी, इसको अगर हम समझ ले तो इट्स अ क्वाइट एन डीप रूटेड थिंग कि भी प्रत्येक विचार पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विचार में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, अगर उसमें पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव इफेक्ट हो रही है।
0: ओके। और ये कैसे डाल रहा है?
2: आत्मा का स्थान नहीं, ब्रेन का एक सेंट्रल पोर्शन है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस को भी माना गया है कि वो दिमाग का भी दिमाग है। तो वहां पर आत्मा निवास करती है, और हाइपोथैलेमस इमोशन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और जब एक भी नेगेटिव विचार आया तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट होगी, और उसका असर फिर सारे शरीर पर होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का सारा कनेक्शन ब्रेन के साथ भी है, डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर भी है।
0: ओके। तो मतलब मेरा एक एनर्जी, एक जो थॉट है, वो हाइपोथैलेमस को इफेक्ट कर रहा है।
2: हाइपोथैलेमस में कई सेंटर्स हैं। अगर नहीं आम भाषा का उपयोग करना हो, मेडिकल लैंग्वेज को बाजू में रख दे, तो ये एक स्विच बोर्ड की तरह, जैसे भी एक स्विच आपने ऑन की, फैन स्टार्ट हो गया, दूसरा स्टार्ट किया, गीजर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस में अलग अलग स्विचेस है। एक स्विच पर इफेक्ट हुई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिडिटी।
0: अच्छा।
2: बढ़ जाएगी,
0: मतलब कोई एक इमोशन से एसिडिटी बढ़ गई,
2: बढ़ गई। हाँ।
0: दूसरा इमोशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तीसरे इमोशन से घबराहट बढ़ गई, ऐसा
2: ये भी हो सकता है। और जो दूसरी बात, विजय साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर एक सेंटर, हम कहें भी डिफरेंट स्विच हाइपोथैलेमस में है, एक स्विच अगर ऑन हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इससे दूसरी स्विच ऑन हुई तो डिफरेंट इफेक्ट्स होगी। और इमोशंस की भी इफेक्ट पॉसिबल है। ये अपने आप में एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है कि कैसे क्रोध की क्या इफेक्ट होगी, लोभ की क्या इफेक्ट होगी, अगर क्रिटिसिज्म हुआ तो क्या इफेक्ट होगा।
0: मेरे ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आई है, मैंने वहीं तक सीमित रखा, उस दवाई के साथ ही उसको रिलेट किया, या फिर मैंने वो फिजिकल एक्सरसाइजेस और उन तक किया। मतलब व्हाई आई लिव्ड इन दिस फूल्स पैराडाइज, मुझे समझ में क्यों नहीं आया।
3: नो, इट्स नॉट दैट हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज इस बात की भी अवेयरनेस है कि माइंड इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन द बॉडी। ये बात की भी अवेयरनेस है कि अगर आप बॉडी का कितना भी ध्यान रख लें तो भी अगर माइंड हेल्दी नहीं है, सो मेनी यंग प्रोफेशनल्स टुडे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स एट अ वेरी यंग एज। और इनसे अगर बात की जाए तो ये कहेंगे हम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, हम अल्कोहल भी नहीं लेते, हम हर मॉर्निंग अपनी वॉक पर जाते हैं, हम फिजिकली भी ओबीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो लॉजिकली देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन के ऐसे हेल एंड हार्टी एंड जो राइट लाइफस्टाइल, जो हम कहते हैं ना राइट लाइफस्टाइल, वो लीड कर रहे हैं, तो फिर इसको इतनी यंग एज में, मिड 30s और समथिंग या अर्लियर देन दैट, हार्ट अटैक हो रहा है. दैट्स बिकॉज वी आर इग्नोरिंग वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि इनका मन कितने टर्मोइल से गुजर रहा है सारा दिन. तो जबकि ये अवेयरनेस आ गई, अब जैसे हम बॉडी का ध्यान रखते थे, हमें मन का रखना है, लेकिन हम मन का क्यों नहीं रख रहे थे? क्योंकि हमने कहा वो तो विदाउट, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन है. सो वी एक्सेप्टेड स्ट्रेस. See, we accepted ये सारी इमोशंस जो आज हम सोच रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट. अर्लियर वी थॉट वी आर नॉट क्रिएटिंग, दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. सो इफ आई एम अ कॉर्पोरेट लीडर और इफ आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल, जहाँ ना दिन है ना रात है, सुबह निकलना है, रात को आना है, फैमिली टाइम नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, तो दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड इफ दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, देन दीज डिजीजेस ऑल्सो
0: आर पार्ट ऑफ माई लाइफ. इनफैक्ट ओ हो यस, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज दैट.
3: आई कैन नॉट चेंज देम. दे थॉट टू चेंज मीन्स फिर आप अपनी जॉब छोड़ दो या आप अपने एम्बिशंस को कम कर दो.
0: यू संन्यास लेके बैठ जाओ बोलते
3: हैं. संन्यास नहीं भी तो भी यू नो इफ यू टेल समवन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा कहेंगे कॉम्पिटिशन इतना है कि अगर मैं थोड़ा भी स्लो हो गया तो. आज लीडर छोड़ो, एक नॉर्मल जॉब के लिए भी, जॉब एक है, लाइन में 100 लोग खड़े हैं जो उस जॉब के लिए रेडी है. थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाओ, द कंपनी विल से ओके यू आर नॉट नीडेड, लेट अनदर पर्सन वॉक इन. सो वी हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशंस चैलेंजिंग है तो स्ट्रेस तो होना ही है. द बिगेस्ट सो कॉल्ड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, यू नो, जिसकी वजह से हम अपना कितना नुकसान कर रहे थे. जब तक सिचुएशन नहीं चेंज होगी, इमोशन नहीं चेंज हो सकती, और जब तक इमोशन नहीं चेंज होगी तो हेल्दी होना पॉसिबल नहीं
0: है. तो
3: सो वी एक्सेप्टेड. सो वी थॉट कि चलो जितना मैं ध्यान रख सकता हूँ उतना रख लेता हूँ, एंड दैट वाज ऑल फिजिकल. बट द आयरनी इज कि इतना ध्यान रखने के बावजूद बीमारियां तो, लेट्स गो बैक 20 years बैक, नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल वाटर, नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉगिंग पार्क्स, डाइट अवेयरनेस. आज तो हर न्यूज़पेपर में डाइट पर आर्टिकल है. आज हम स्प्राउट्स खा रहे हैं, मतलब नेचुरोपैथी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बीमारियां फिर भी बढ़ती जा रही है. बिकॉज वन इम्पोर्टेंट डायमेंशन इज बींग कन्वीनियंटली इग्नोर्ड जस्ट बाई सेइंग टू योर सेल्फ कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं. तो जितना इस तरफ ध्यान रख सकते हो रखो, फिजिकली सारा रख लो, ताकि कुछ तो एक बैलेंस, विच इज वेरी गुड कि एटलीस्ट वी आर टेकिंग केयर ऑफ सेल्स फिजिकली. लेकिन बैलेंस तो मतलब जो एक डोमिनेंट फैक्टर है कि इफ इट इज माइंड ओवर मैटर. आज दिन तक हम कहते थे अगर हेल्दी होंगे तो खुश होंगे. इट वॉज सपोज टू बी अगर खुश होंगे तो हेल्दी होंगे. यू नो यू आस्क समवन क्या चाहिए, खुशी चाहिए. खुशी कैसे मिलेगी? हेल्दी होंगे तो खुश होंगे. हेल्दी होंगे तो खुश होंगे नहीं, खुश होंगे
0: तो हेल्दी
3: होंगे. तो इक्वेशंस ही तो सारे.
2: लेकिन और गहराई में भी नहीं गए, जो शिवानी बेन बता रहे हैं कि ये तो समझ में आता है कि स्ट्रेस की इफेक्ट होती है, लेकिन वो डीप में क्या है, क्यों हो रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड अच्छे से आज तक नहीं कर पा रहे. और आपने भी जो शुरू में पूछा ना, वह बात भी एक प्रकार से सही है कि लोग आज ये समझने लगे कि हम आसन कर लेंगे, कुछ प्राणायाम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे. ये मन पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गहरी बात है, हमें समझ में नहीं आया
0: और हमारे बस में ही नहीं.
2: हाँ, ये भी सोचते
0: हैं कि हम उस पर कुछ कर ही नहीं सकते. और वो मतलब क्योंकि अगर वो करना है तो मुझे अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, मुझे अपनी एम्बिशंस छोड़नी पड़ेगी. लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सिचुएशन बाउंड नहीं है, अगर हम ये रियलाइज कर लें, देन लेट्स लुक एट इट कि क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पे, क्योंकि उस तरफ तो हमने जाने की कोशिश नहीं की. तो क्या असर डालती हैं ये फीलिंग्स
2: हमारे शरीर में? एक प्रणाली है जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करती है. जैसे शरीर के मसल्स को कंट्रोल करना हमारे बस में, हाथ को ऊपर नीचे करना, परंतु जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हार्ट की एक्टिविटीज, डाइजेशन, किडनी का फंक्शन, ये सब ऑटोमेटिक चलता है. अब जब नींद में सोए हैं तब भी वो अपना नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, इसी के कारण उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक. जो सिंपैथेटिक प्रणाली है, अधिकतर जो हमने टॉक्सिक इमोशंस कहा, वो सभी टॉक्सिक इमोशंस सिंपैथेटिक सिस्टम को बहुत तेज चलाएंगे. और सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्सेलरेटर की तरह है, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम फास्ट काम करती है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सांस की गति तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो हृदय की अपनी धमनियां है, ब्लड वेसल्स है, वो भी छोटी सी हो जाएगी, मसल्स है वो सारे टेंशन में आएंगे, मुंह सूखने लगेगा।
0: तो ये जो हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं जब हम यू नो इन इमोशंस को महसूस कर रहे होते हैं, सो इट्स बिकॉज़
2: ऑफ द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी।
0: ओके,
2: जैसे कि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी में डाइजेशन खत्म है, आपको भूख नहीं लगेगी, इवन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में जाते हैं तो बैक पेन होता है, इवन माइग्रेन हेडेक कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये सारा एक चेन ऑफ रिएक्शन है। और जो दूसरी सिस्टम है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, कि जो एक प्रकार से ब्रेक की तरह है, और जब पॉजिटिव इमोशंस हो, खुशी का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, सेटिस्फेक्शन का अनुभव हो, तो थोड़ी सी पैरासिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करती है, कि जो अच्छा है। आज वर्तमान 21वीं सदी में ब्रेक पर तो हमारा पैर ही नहीं है, ब्रेक फेल हो गई है और एक्सेलरेटर बहुत ही फास्ट चल रहा है, इसके कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह हो रही है।
0: ओके, डॉक्टर पटेल, एक मेरे को बात जाननी है। आपने कहा कि जैसे ही हमारे टॉक्सिक इमोशंस जो हैं वो आती हैं हमारे पास, यानी कि हमारे थॉट्स जो है बहुत फास्ट चलने लगते हैं, तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एस्पेक्ट्स हैं, जो ऑटोनॉमस है, ये नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइफ में, अगर दोनों कुछ नहीं हो रहा, कोई भी इमोशंस इस वक्त नहीं है, तो वो क्या एक बैलेंस में चल रहे हैं?
2: तो ऑलवेज वो बैलेंस में चलेंगे। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी भी नहीं है, पैरासिंपैथेटिक भी नहीं है, और आप हेल्दीली चल रहे हो। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशंस आए, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है, मैं नहीं कह सकते परिस्थिति नहीं आएगी,
0: हमने वो इमोशंस क्रिएट की बार-बार, आई थिंक वी नीड टू रब इनटू आवरसेल्फ्स नाउ,
2: कि भी वो पॉजिटिव इमोशंस को भी लाना है, मुझे थोड़ा डिटैच होना है, पीस ऑफ माइंड को अनुभव करना है, तब पैरासिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट होगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वह सही रूप से चलेगा।
0: पैरासिंपैथेटिक अगर एक्टिवेट हुआ तो क्या क्या बॉडी पर इफेक्ट होता है?
2: वो अधिकतर इससे अपोजिट है।
0: अच्छा, मतलब हार्ट रेट आपका कम होगा,
2: हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, मसल्स है वो रिलैक्सेशन में जाएंगे, प्रॉपर सिक्रीशन होगा डिफरेंट जूस का, इवन हार्मोनल सिस्टम पर भी उसकी कुछ इफेक्ट है, वो बैलेंस होगी।
0: ओके, मतलब अगर पैरासिंपैथेटिक ज्यादा सिक्रीट हो जाए
2: तो बुरा है,
0: तो बुरा है,
2: बट दैट इज एक्सट्रीम। अदरवाइज जो नॉर्मली है वह नेगेटिव इमोशंस है वो सिंपैथेटिक पर इफेक्ट करते हैं।
0: तो अब हमने कोशिश की थी कि गुस्सा आ रहा है तो उसके ऑपोजिट के इमोशन को क्रिएट करने की कोशिश करें, यू नो, या बिकॉज समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है।
3: समवेयर आई थिंक अपने बिलीफ सिस्टम्स पर वर्क कर लें, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से थॉट्स है। तो जब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मेरा एक एक थॉट, एक एक गुस्से का थॉट मेरा डैमेज कर रहा है, दूसरे का तो कर रहा है, काम का तो कर रहा है, लेकिन सबसे पहले मेरा डैमेज कर रहा है, और शायद दूसरे भी से भी ज़्यादा मेरा ही डैमेज कर रहा होगा। यू नो, कई बार ऑफिसेज में अगर किसी सीनियर को आदत हो गई है गुस्से से काम कराने की, तो कई बार जो जूनियर्स हैं उन पर अब उस बहुत बात का असर नहीं पड़ता। यू नो, देयर इम्यूनिटी सिस्टम बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर मेंटली ऑल्सो, कि ये तो ऐसे शोर मचाते रहते हैं, एंड समटाइम्स पीपल जस्ट लाफ अबाउट इट। लेकिन जो कर रहा है उसका तो नुकसान हो ही रहा है ना,
0: शरीर के हर अंग का, जैसे कहा,
3: एंड फिर उसकी वो नेचर बनती जा रही है। एंड होता भी क्या, अगर मैं किसी को देखकर इरिटेट हो जाऊं, आई माइट शाउट एट देम वंस, लेकिन वो बात मेरे माइंड में तो यू नो कुछ मिनट्स तक तो कम से कम रहेगी। ये लोग ऐसे ही हैं, जब तक इन पर चिल्लाओ नहीं, फिर मैं अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रही होती हूँ अपने बिहेवियर के लिए। तो शोर तो एक मिनट में मचाया, लेकिन कम से कम 15 मिनट उसके थॉट्स चल रहे होंगे, इसका मतलब कितना ये डैमेज हो रहा होगा अंदर वाला। दिस आई एम नॉट रियलाइजिंग,
0: इवन हेट्रेड जिसको हम कभी बाहर शो नहीं करते, yes. कितनी बार, और अंदर अंदर हम मतलब हेट में जी रहे होते
3: क्यों हैं? सप्रेशन भी क्यों नहीं सप्रेस्ड? आज बहुत सारे वाइव्स फील करते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम अपनी बात नहीं रख पाते, हस्बैंड मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो अंदर अंदर अंदर सप्रेशन, अपनी थॉट्स को नहीं चेंज कर रहे, देन इट इज मैनिफेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ अ डिजीज ना। तो हेल्दी रहने के लिए अगर मुझे ये समझ में आ जाए, एटलीस्ट मैं अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स को तो चेंज कर दूं, इवन इफ़ आई एम एक्सेप्टिंग कि स्ट्रेस तो होना ही है. चलो लेट्स डू दैट सेकेंडरी. क्या मैं आज ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ ले लूं कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा? ये तो मेरे हाथ
0: अपने
3: में है
0: आप को
3: ना.
0: हेल्दी रखने
3: हाँ,
0: के लिए,
3: ये तो मेरे हाथ में है ना,
0: अपने
3: ट्राई
0: आप को सेफ रखने के
3: yes.
0: लिए.
3: एंड इट्स ओनली अ प्रोग्रामिंग ना. मैं बार बार अपने आप को ये बात कहूंगा कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा. व्हाई विल आई नॉट बी एबल टू डू इट? इट्स अ बिलीफ सिस्टम दैट आई हैव टू चेंज. एटलीस्ट वो इफेक्ट इमिजिएटली मुझे दिखाई देने लगेगा अपने ऊपर. धीरे धीरे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा, मैं अगर ध्यान रखूँ, आई कैन यू नो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई थॉट्स. देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो. देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ फियर ऑल्सो, बिकॉज मुझे रियलाइज होगा कि ये सारी नेगेटिव इमोशंस मेरी अपनी क्रिएशन है. इट्स ओनली एक किसी स्टेप से शुरू करना पड़ेगा. एंड आई नॉर्मली फील कि एंगर इज एन ईजियर वन टू स्टार्ट विद, क्योंकि एंगर बाहर मैनिफेस्ट होता है. आज हमें अपने आप को अंदर देखना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है कि कहाँ वरी है, कहाँ जेलसी है. जो हमें बाहर अपने आउटबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, एटलीस्ट आई कैन सी दैट. मैं गॉसिप करती हूँ, आई कैन सी दैट. मैं शाउट करती हूँ, आई कैन सी दैट. लेट मी जस्ट स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट ऑन दीज बिहेवियर्स. आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल रियलाइज कि एटलीस्ट जहाँ मैंने अटेंशन दिया, आई वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. जिन चीज़ों को मैंने अभी तक कहा था कि ये नेचुरल है, धीरे धीरे आई विल बी एबल टू गो डीपर टू फियर्स, इनसिक्योरिटीज, रिजेक्शन.
0: आई थिंक क्योंकि अभी तक रियलाइजेशन ये ही नहीं था कि दीज आर माई क्रिएशंस, यू नो.
3: ये भी था कि दीज आर नेचुरल, यू नो,
0: क्रिटिसाइज
3: करना नेचुरल. ये इतना नेचुरल नेचुरल कहने से इतनी सारी अननेचुरल चीजें हो रही थी.
2: और यूं ये बात भी कि भी एक थॉट की इफेक्ट है. जैसे नहीं, एक सिंपल थॉट कि भी आई एम अ पीसफुल सोल, वो तो सिंपल है ना. और कुछ चीजें भले आप बिलीव नहीं भी करो, दैट ऑल्सो कैन हैव अ वंडरफुल इफेक्ट. हमारी गुलजार दादी एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं, जो एंगर की बात कही ना, कि भी एक बॉस थे, वो माउंट आबू में आए, उन्होंने मेडिटेशन को सीखा और ये बात आई कि भी आई एम अ पीसफुल सोल. और फिर ऑफिस में गए, सचमुच पीसफुल रहने लगे. लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि भी क्या बात है. पहले तो हमारा बॉस आता था, गुस्से में ही बात करता, डांटता था, हम लोग भी कांपते थे आते ही. अब इसमें क्या हो गया? तो पीसफुल हो गया सचमुच, लोगों में भी चेंज आया. दादी कहती यहाँ तक कि उसके जो सबऑर्डिनेट थे मेरे पास आए और कहा, दादी इनको रोज आप मेडिटेशन सिखाना, 2-4 महीने में तो जरूर इनको कुछ ना कुछ मेडिटेशन की बात सिखाना. कहा क्यों? तो कि दादी ये जरूर आप करना, क्योंकि पहले जब आता था ना तो हमको लगता था कि काल आ गया, अभी जब भी हमारे बॉस आते हैं तो हमको लगता है बाप आ गया.
0: डॉक्टर पटेल, अगर ये सारी चीजें इतना इफेक्ट कर रही हैं, जैसा आपने कहा कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का एस्पेक्ट आ जाता है,
2: इवन देयर आर अदर्स, नो, देयर आर अदर 3 एस्पेक्ट्स जिस पर इफेक्ट होती है. जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऐसी दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम. ये छोटी छोटी ग्लैंड है, आपने भी सुना होगा कि गले में थायराइड ग्लैंड है, साथ में पैराथायराइड है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड
0: है. मुझे तो कई बार लगता है कि 80% जनता जो है वो हाइपोथायराइड से जूझ रही है, मतलब हाइपो या हाइपर से जूझ रही है.
2: किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड है जिसको एड्रिनल कहते हैं, ऐसे नहीं ओवरीज और टेस्टीज, उसमें से भी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. तो ये जो सभी एंडोक्राइन हॉर्मोन्स है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, और साथ साथ में वह केमिकल सीधा खून में चला जाता है, और केमिकल से वो सीधे खून में नहीं जाते हैं. तो ये जो एंडोक्राइन सारी सिस्टम है वो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा की तरह है,
0: डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं.
2: हाँ, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि वो सीधा खून में जाता है. और यह जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो ऑर्केस्ट्रा में अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से नहीं बजे तो पूरा आनंद किरकिरा हो जाता है. तो ऐसे ही कहते हैं कि भी एक भी ग्लैंड में थोड़ी भी दिक्कत हो तो सारी सिस्टम गड़बड़ा जाती है. और इसका कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस में है.
0: अच्छा.
2: हाँ, हाइपोथैलेमस से जो डिफरेंट ग्लैंड्स है उनको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं. जैसे थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन. अब थायरॉक्सिन को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, दूसरा है थायरॉक्सिन इनहिबिटिंग फैक्टर,
0: TSH वगैरह.
2: तो अभी TSH को रिलीज भी करना है, बढ़ाना भी है, वो बैलेंस भी हाइपोथैलेमस में. और जो हमारे इमोशंस है उससे उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, और एक इम्बैलेंस हुआ सारे के अंदर डिस्टर्बेंस निर्माण होगा. तो बात यह है कि यह इश्यू बड़ा सेंसिटिव है कि एक छोटा सा भी विचार आपके सारे हॉर्मोन्स में डिस्टरबेंस ला देगा।
0: तो ये जो टॉक्सिक इमोशंस हैं, ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं।
2: वो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेंगे।
0: अच्छा, तो
2: रिलीजिंग या इनहिबिटिंग जो इफेक्टर्स है वो डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे तो हॉर्मोन्स पर भी इफेक्ट होगी। ऐसे दूसरा एक हॉर्मोन है कॉर्टिसोल, कि जो किडनी के ऊपर छोटी सी ग्रंथि है। अब कॉर्टिसोल की जरूरत भी है हमें, क्योंकि उससे एनर्जी भी आती है, परंतु कॉर्टिसोल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो भी उसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, यहाँ तक कि ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तो इसके कारण स्ट्रेस से या टॉक्सिक इमोशन से कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है।
0: हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है।
2: हाँ, हाइपोथैलेमस पहले इफेक्ट होता है, फिर उस पर इफेक्ट।
3: इसीलिए कहते होंगे ना, जब गुस्सा आता है तो मुझे लगता है मुझे एनर्जी मिली है।
2: हाँ, एक बार
0: गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं,
3: बिकॉज़ इट मस्ट बी गिविंग दैट सर्ज ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम, लेकिन वो टेम्पररी हुआ और बार बार करने से उसका लॉन्ग टर्म फिर
2: नो, इवन एवरी टाइम, हर बार आपको गुस्सा आया भले एनर्जी लगी, परंतु तब ब्रेन पर भी इफेक्ट हुई और ब्रेन डैमेज हुआ।
0: अच्छा,
2: हार्ट पर भी नेगेटिव इफेक्ट हुई, हार्ट भी डैमेज हुआ।
0: मतलब अगर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है
2: तो ब्रेन पर भी डैमेज होता है,
0: ब्रेन पे असर पड़ रहा है उसका।
3: एंड दैट्स व्हाई इफ वी सी मोस्ट ऑफ दीस डिजीजेस, थायराइड और वंस यू गेट द प्रॉब्लम यू आर लिविंग विद इट फॉर अ लाइफ टाइम।
0: हां, मतलब आप
3: क्योंकि हम रूट को तो अगर रूट थॉट्स है उसको तो मैनेज करने के बारे में हमने नहीं सोचा, तो इनमें से जो भी इलनेसेस हैं एक बार हो गई तो हम सिर्फ दवा ले लेके उसको बस चलाते रहते हैं, उसके बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। रूट को अगर ठीक कर लेते
2: तो
3: प्रॉब्लम बी एबल टू कम आउट।
2: और एक देखो मैकेनिज्म है, कहते पूरी आज नई ब्रांच डेवलप हो रही है मेडिसिन की, जिसको कहा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि कैसे साइकिक फैक्टर्स है वह ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं और इन टर्न वो इम्यून सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। नहीं, इम्यून सिस्टम वो एक हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है।
0: बार बार बीमार जो हम पड़ते हैं, मतलब हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि बार बार बीमार
2: पड़ते हैं, तो नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, और साथ साथ इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर भी निर्माण कर सकती है।
0: अच्छा,
2: जो कहीं कैंसर होते हैं ना, कहते पता नहीं क्यों कैंसर हो गया, कि वो तो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ठीक से एक्सरसाइज कर रहा है, वेट भी ठीक है, डाइट ठीक है, तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गई। इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। वास्तव में बॉडी को ये है कि भाई ये मेरी बॉडी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, लेकिन इम्यून सिस्टम अगर रिकॉग्नाइज नहीं करे, जैसे नहीं हमारे सोल्जर है वो हमारे लोगों को मारने लगे, रिकॉग्नाइज नहीं करे कि दे आर अवर ओन पीपल, तो है ना, ऐसा इम्यून सिस्टम में होता है।
0: Okay.
2: और इसके कारण कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
3: अपने ही डिफेंस मैकेनिज्म को अटैक कर दिया,
2: कर दिया नहीं, क्योंकि वो फॉल्टी हो गया और रिकॉग्नाइज नहीं करने लगा।
0: वही जैसे कंप्यूटर है, उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई वायरस ऐसा आया, तो उसका पूरा वो कोलैप्स ही हो गया।
3: नहीं, अच्छी वैल्यूएबल फाइल्स को ही
0: डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय,
2: नहीं सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है।
0: अच्छा, ये जो कॉर्टिसोल था, क्योंकि किडनी के बारे में बात की आपने, ये डायबिटीज को एक्टिवेट करने में भी क्या ये रिस्पॉन्सिबल?
2: कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन है जिसकी काफी इफेक्ट है। जैसे कॉर्टिसोल इज एन एंटी इंसुलिन हार्मोन, वो इंसुलिन से अपोजिट काम करता है, तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन सप्रेस होगा और डायबिटीज पर भी उसकी इफेक्ट होगी। एटलीस्ट जो कंट्रोल है डायबिटीज का वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक जो बात गहराई से समझने की है कि जो अभी भी साइंस अब मानने लगा है, 100% नहीं मान रहे हैं, वो यह कि हमारे विचार भले यह कोई मैकेनिज्म न भी हो, अब तक तो डॉक्टर्स यही सोचते थे कि भाई मन में जैसे गुस्सा आया तो क्या मैकेनिज्म होगी ताकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, लेकिन अब तो ये मानने लगे कि विचार है वो भल मैकेनिज्म न भी हो, जो कनेक्शन है फिजिकल कनेक्शन न हो तो भी बॉडी पर इफेक्ट कर सकते हैं। एक होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन, कि मन एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर कैसे इफेक्ट करेगा, उसका कनेक्शन एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी इफेक्ट होती है।
0: एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करता है?
2: डायुरेटिक हार्मोन है कि जो अपने जो बॉडी में पानी है उसका बैलेंस रखता है। अगर नहीं, पानी ज्यादा हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, तो वो जो बैलेंस है वो ये हार्मोन करता है, और टॉक्सिक इमोशन से एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है।
0: तो वो वाटर रिटेंशन जो होती
2: हो जाएगा, या तो एक्सेस नहीं, ज्यादा यूरिन होगा और वाटर है वो शरीर के बाहर निकल
0: और कई बार स्वेलिंग हो जाती है, ज्यादा रिटेन हो जाता है,
2: रिटेन होने से स्वेलिंग होगी।
0: हाँ।
2: तो अब तो ये मानने लगे कि वो फिजिकल कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है, मन बॉडी पर डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है।
0: अमेजिंग शिवानी, मतलब दिस इज समथिंग, इट्स अ रेवोल्यूशन। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आज बात कर पा रहे, व्हाट डू यू से, आई एम लाइक
3: I yeah. think it gives a big hope to all of us that we don't need to live with these diseases. That's a big hope. कि जैसे परिस्थितियां मैं अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ, रिश्तों को कंट्रोल में ला सकता हूँ। हमने इतनी बार इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि रिश्ता, चाहे उसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, हम अपने सोच को ठीक कर लें, रिश्ता ठीक हो जाएगा। आज हमें समझ में आया, हम अपने सोच को ठीक कर लें, शरीर ठीक हो जाएगा, तभी तो कहीं एनर्जी इन्वेस्ट होगी। सिवाय अभी लुकिंग एट इट शॉर्ट टर्म, हमें ये पता है अगर लाइफ में बॉडी ठीक नहीं चली तो जो भी चीज़ें हम अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सकते। तो आज उल्टा इट्स अ होप, इट्स फैक्ट, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि एक और चीज़ मेरे कंट्रोल में आ गई है। था पहले मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आ सकता है, मेरे रिश्ते मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, आज ये कि मेरा शरीर भी मेरे कंट्रोल में आ सकता है। नहीं तो अभी तक कह रहे थे वो बीमारी हो गई, या अब बीमारी हो गई तो अब ये रहेगी। आज हमें ये पता चलता है बीमारी भी मैंने क्रिएट की थी, ठीक भी इसको मैं ही करूँगा। और अगर अभी कोई बीमारी नहीं है तो मैं अगर ठीक चलूँ यहाँ, तो यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। दिस इज लाइक वंडरफुल न्यूज़ फॉर ऑल। और
2: मैसेज तो एक इम्पोर्टेंट ये है कि भी डरने की बात नहीं है, ये सब जान के आप लोग डरते भी हैं।
3: जैसे आपको नॉलेज मिलती है कि सब कंट्रोल में आ गया है, तो एक्चुअली तो अच्छी बात है ना कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में।
2: पॉजिटिव समझो कि दिस इज इम्पोर्टेंट।
0: नो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जिस्ट कर रही है, आज जो बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, हम उनको ठीक करने के भी रिवर्सल प्रोसेस भी कर पाएंगे।
2: डेफिनेटली वी कैन डू इट।
0: सोच को अपनी चेंज करके, डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी तक जिंदगी के कई, जैसे आपने कहा कि रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे परिस्थितियों में, अपने आप अपनी थॉट को चेंज करके, लेकिन आज अगर इन बीमारियों को भी हम रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को, तो उससे बड़ी तो कोई मिरेकल नहीं हो सकता। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: सचमुच आज जो हमने बात की है, हाँ थोड़ी थोड़ी घबराहट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक जैसे रियलाइजेशन होता है, जैसे हमें पहली बार समझ में आया था कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं, बहुत डिफरेंट लगा था। सिमिलरली हमारे ही द्वारा क्रिएट किए गए ये थॉट्स और फीलिंग्स मेरे शरीर के जितने भाग हैं, जितनी बीमारियों से आज मैं जूझ रही हूँ, उनको क्रिएट करने में सहायक हुए हैं। इनफैक्ट उनके द्वारा बहुत हेल्प मिली है ये बीमारियाँ क्रिएट होने में। पहले ये पता चला, अब हम उसको रिवर्स करने के प्रोसेस को भी जानेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से आप एक्सेप्ट करें, समझें, जानें कि क्या क्या हो रहा है आपके शरीर में। और जैसे हमने थॉट्स को देखा, शायद अगर शरीर के बारे में सोचना शुरू करेंगे, हमें ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। कोई बात आपके मन में है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं ईमेल पर या फिर फ़ोन पर। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे करें। अगर ये थॉट्स मुझे इन बीमारियों की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो यही थॉट्स, यही इमोशन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इन बीमारियों को ठीक भी तो कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर, पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए है हमारे साथ।
3: नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज के इस शो में हमारे साथ दो विशेष गेस्ट हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। आर के सिंह सर हैं जो इंजीनियर हैं, और आपसे बातें होंगी कि कैसे हम इंजीनियर बन सकते हैं, करियर इन इंजीनियरिंग के बारे में। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित
1: बर्तरिया
0: जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातें होगी। आप आईटी सेक्टर में खास काम करते हैं तो आपका अनुभव भी हमारे लिए काम आएगा, क्योंकि करियर करते वक्त हम लोग जो हैं, आज किसी भी फील्ड में आप एक्सेल करते हो तो आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है, और हर सेक्टर में आईटी का जो है विशेष अहम भूमिका रहती है। तो आप साइमेंटेनियसली हम लोग आईटी में किस तरह से जॉब्स है उसके बारे में आपसे जानेंगे, और आप कैसे आईटी से जुड़े वो भी आपसे सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से विशेष सिंह सर का और सुमित सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। नमस्ते सिंह जी, कैसे हैं?
2: नमस्कार, बढ़िया
0: जी। जी, आप अपने बारे में बताइए हमें।
2: जी, मेरा पूरा नाम रविंद्र कुमार सिंह है
0: जी,
2: और मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंदौर GSITS से करी थी।
0: अच्छा।
2: इसके पश्चात मैंने फिर वहाँ पर मास्टर्स करी प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के अंदर
0: जी, जी, जी।
2: एक उस समय तत्काल उस समय काफ़ी नई फील्ड हुआ करती थी, क्योंकि उस समय लगभग 1985 में प्लानिंग से रिलेटेड काम अप्लाई काफ़ी कम हुआ करती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और उसके पश्चात फिर मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ MP में MPPSC के थ्रू मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं वहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर अभी हूँ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश शासन में।
0: वाह, क्या बात है। तो मैं चाहूँगा कि आपका इंजीनियरिंग से कैसे जुड़ना हुआ
2: जी?
0: क्या आपने पहले से सोच के रखा था या बाद में 12th के बाद कुछ ऐसा इंसाइट मिला आपको और फिर जुड़े आप?
2: नहीं, सही मायने में बोला जाए तो बचपन से ही सिविल मतलब इंजीनियर बनने का शौक था। हालांकि मेरे पिताजी वेटनरी डॉक्टर थे।
0: अच्छा।
2: वो खुद भी साइंटिस्ट थे।
0: Oh.
2: तो मैं अक्सर उनके साथ उनके लैब्स वगैरह में भी जाया करता था, क्योंकि वहाँ पर एनिमल के लिए वैक्सीन्स बना करते थे।
0: अच्छा अच्छा।
2: लेकिन उसके बाद भी इतना जाता था और अपने पिताजी को काफ़ी रिसर्च के काम करते हुए देखता था, लेकिन पता नहीं मुझे कभी उस फील्ड में इंटरेस्ट आया नहीं, और कभी भी बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट लेने की मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो ऐसा लगा कि शायद बाबा को मुझे इंजीनियर ही बनाना था। तो मैंने फिर उसके पश्चात बचपन में ही, उस ज़माने में ना तो TV होते थे ना मोबाइल
0: जी,
2: होते थे
0: जी।
2: और घर में खेलने के लिए कुछ अपने को खुद अपने साधन जुगाड़ करना पड़ती थी, सही मायने में बोला जाए तो उस समय हम लोग मिट्टी के घर बनाया करते थे बचपन में खेलने के लिए, जो आज भी गाँव में बच्चे लोग बनाते हैं। तो बचपन से थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग के प्रति मेरा रुझान था, और उसके पश्चात धीरे धीरे जब पढ़ाई करना शुरू करी और 10th और 12th पास करी, तो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम हुआ करते थे और 12th में मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे थे। इस कारण से मुझे इंदौर का, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, GSITS, वहां पर मुझे एडमिशन मिला।
0: बिल्कुल।
2: और उसके पश्चात मैंने वहाँ से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करी। उसके पश्चात फिर उस ज़माने में जैसे कि डॉक्टर्स लोग तो काफ़ी PG का कोर्स करते थे, लेकिन इंजीनियरिंग में PG करने का फैशन नहीं था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: क्योंकि लोगों को लगता था कि अननेसेसरी इतनी पढ़ाई की आवश्यकता है नहीं।
0: जिन
2: लोगों को टीचिंग में जाना होता था वो ही अक्सर उसमें मास्टर्स डिग्री, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया करते थे, और उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन को अपना अडॉप्ट करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो मुझे भी बचपन से ही टीचिंग का थोड़ा शौक था। तो मैंने उस दृष्टि से फिर मास्टर्स किया इंदौर से ही, और वो एक फील्ड उस समय तो काफ़ी नई थी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में जो हम आज सारे बड़े सिटीज़ का जो सीन देख रहे हैं, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की कितनी प्रॉब्लम है, वो आज की स्थिति में तो बहुत अच्छी फील्ड है, मैं यही कहूँगा इसको। फिर मैंने कुछ समय GSITS में करीब लगभग 4 से 5 साल एक रिसर्च प्रोजेक्ट और टीचिंग का काम भी किया।
0: अरे
2: वाह। हाँ, और जिसमें काफ़ी मुझे मज़ा भी आया और मेरा जो बचपन का सपना था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जुड़ना है, तो मेरे को एक मौका मिला और उसमें मैंने काफ़ी मेहनत से और बच्चों को जो मैं, और सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं जिस कॉलेज से निकला था उसी कॉलेज में मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला।
0: अरे वाह।
2: तो वो मुझे अपने आप में एक अलग खुशी मिलती थी कि कल तक मैं जिस कॉलेज में एक स्टूडेंट था, आज मैं उसी कॉलेज में अपने छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, तो एक अलग प्रकार की खुशी मुझे प्राप्त हुई इस प्रोफेशन से।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: फिर उसके बाद मेरा प्रोफेशन धीरे धीरे कुछ अलग परिस्थितियाँ बनी। मैंने इस प्रोफेशन को तो अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर लगा कि इस प्रोफेशन में फील्ड में काम करने का मौका मुझे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आप सिर्फ शिक्षा का दान करते हैं और फील्ड से रिलेटेड वर्क नहीं कर पाते हैं। हालांकि आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक कागजी टाइप की ही होती है। लेकिन अगर आपको मौका बृहद रूप से कार्य करने का मौका फील्ड में ही मिल पाता है, तो फिर मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ एमपी में पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की एक पोस्ट होती है वहाँ पर टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में,
0: जी, जी,
2: उसका एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। और उसके पश्चात मैंने मध्य प्रदेश शासन में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पद से अपना सेवा की शुरुआत करी।
0: बिल्कुल।
2: और
0: बिल्कुल।
2: अभी मैं ज्वाइंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जबलपुर में हूँ और अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर किया किस तरह से आप इंजीनियर बने और अलग अलग सेवाओं को आपने किया जिससे आपको खुशी मिले। तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में इंजीनियरिंग में जो टेक्नोलॉजी का योगदान है उसके बारे में आपका इंसाइट क्या है वो बताएं।
2: कि समय के साथ में तो हर एक फील्ड में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, और जहाँ तक इंजीनियरिंग फील्ड है इसमें भी अब पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करना जैसे डॉक्टरी के अंदर या और अन्य फील्ड्स में जरूरी हो गया है, ऐसा स्पेशलाइजेशन का योग यहाँ पर भी आ चुका है।
0: जी,
2: अब आप देखेंगे तो पहले कोई भी डिग्री जो होती थी बैचलर्स डिग्री काफ़ी सफिशेंट होती थी, लेकिन जब से ये स्पेशलाइजेशन का दौर आया है
0: जी,
2: तो उसमें लोगों को ऐसे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की आवश्यकता होने लगी है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे इसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं। और मैंने जब कोर्स किया था वो है मेरा अर्बन प्लानिंग के अंदर, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अंतर्गत। ये प्लानिंग का फील्ड जो है, जैसा कि अपन देख रहे हैं कि शहरों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, शहरों के अंदर अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ी से गाँव से शहरों में पलायन हो रहा है और अर्बनाइजेशन जो है शहरीकरण वो बहुत तीव्र गति से हो रहा है, जिसके कारण शहरों पे एक एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, जिससे कि अंदर उसके कारण उसका विकास एक सुनियोजित विकास किया जाना बहुत आवश्यक हो गया है। तो इसलिए ये अब समय की आवश्यकता है कि हम प्लानिंग रिलेटेड जो पढ़ाई है, इंजीनियरिंग छात्र जो सिंपल एक डीबी की डिग्री करा करता था, अगर वो प्लानिंग के फील्ड में अगर अपने आप को आगे ले जाना चाहता है तो उसे बहुत सारे अर्बन प्लानिंग होता है, रीजनल प्लानिंग होता है, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग होता है, एनवायरमेंटल प्लानिंग होता है, ये सारे फील्ड्स में वो अपनी प्लानिंग से रिलेटेड डिग्री कर सकता है। और इनके स्कोप भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो स्मार्ट सिटी का मिशन चलाया है उसमें भी काफ़ी प्लानर्स की आवश्यकता हुई है, और हमारे शहर जो हैं अब वो फॉरेन कंट्रीज़ के शहरों के बराबर विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे। तो भविष्य में इन प्लानर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी इस राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि हमारे शहर पूर्व से जो थे वो इस लोड को लेने के लिए बने नहीं थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर

0: जी कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है, और क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है कहा गया है, तो समय के साथ साथ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं और वो चीज़ें सुचारू रूप से हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। जैसे आज से अगर 50 साल पहले या 20-30 साल पहले अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में मोबाइल था ही नहीं
1: जी जी
0: और आज मोबाइल के बिना कुछ नहीं,
1: जीवन नहीं
0: है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है समय की अनुसार चीज़ें बढ़ती जाती हैं, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। और मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ इम्प्रूव होती है और जैसे जैसे प्लानिंग के अनुसार अगर चीज़ें हो जाती हैं तो वो बहुत ही अच्छा जो है सुविधाजनक होता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे शहर ऐसे हैं मास्टर टाउन प्लान के अनुसार बनाए जाते हैं ताकि उसमें पर्यावरण का भी विशेष योगदान रहे, क्योंकि अंधाधुंध अगर शहर बस जाते हैं ऑटोमेटिकली तो उसमें पर्यावरण का जगह नहीं रहता है। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आप देखेंगे बीच बीच में पानी का छिड़काव करना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है
1: जी जी
0: तो वो चीज़ें न हो। और उसी तरह एक सैम्पल अगर हम लोग देखें चंडीगढ़ को, तो चंडीगढ़ एक बसा बसा शहर है जहाँ पर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए एक पैरामीटर के साथ आप जो है बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना सकते हैं, वहां पर छोटी बिल्डिंगें बना सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर तक आपको जो है लाइसेंस मिल जाता है, उसके ऊपर आप बना नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण और लोगों की सुविधा के अनुसार और चौड़े बड़े रोड्स होते हैं और सब चीजें जो है प्लांट है, तो इसीलिए कहा जाता है जब प्लांट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग जाते हैं तो सुविधाएं भी अच्छी हो जाती हैं और मुश्किलें कम होती हैं और जीवन सुचारू रूप से हम लोग जी सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग बात करने वाले हैं सुमित सर से थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छी बातें आपने सुना, राजेंद्र सिंह जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कैसे वो इंजीनियर बने और घर के सारे लोग अलग फील्ड में थे और इनको कभी भी वो चीज़ जो है अपील नहीं किया, तो उन्होंने फिर इंजीनियरिंग में अपना जो है करियर बनाकर एक अच्छा पोजिशन पर आज हैं और अच्छी बातें उन्होंने बताई है। तो आइए ऐसे ही हमारे साथ आज के दूसरे मेहमान सुमित जी हमारे साथ हैं जो आईटी फील्ड में अपनी सेवा देते हैं। तो सुमित सर बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आपका आईटी सेक्टर में कैसे जुड़ना हुआ उसके बारे में बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरा पूरा नाम सुनीत भरतरिया, मैं बेसिकली इंदौर से ही हूँ अब तो, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन एक राजगढ़ शहर हुआ करता है वहाँ पर हुआ, क्योंकि मेरे फादर प्रिंसिपल थे और मेरा जो दादाजी और फादर मदर ये सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। तो उनका भी कभी ये नहीं था मन कि मैं कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाऊं क्योंकि पूरी फैमिलीज के सभी लोग ऑलमोस्ट सभी उसमें थे। तो वो चाहते थे कि मैं भी इंजीनियर बनूं। मेरी भी अंदर से जो इच्छा थी वो यही थी इंजीनियर। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो है UPSC की प्रिपरेशन करना चाहता था, बट कुछ कारणों से वो हो नहीं पाया। तो मैंने 12th करने के बाद में फिर मास्टर्स किया यहाँ से DIVV से, और उसके बाद में मैं दिल्ली चला गया। करीबन 8 साल वहाँ पर रहा मैं SL टेक्नोलॉजीज़ में, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर कम बैक टू इंदौर। और प्रेजेंटली मैं एक UK बेस्ड कंपनी है RWS, उसमें एज ए सीनियर मैनेजर कार्यरत हूँ।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आपका आईटी सेक्टर में जुड़ना हुआ। और मैं चाहूँगा कि आईटी सेक्टर में हमारे विद्यार्थी मित्र अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनकी क्या मानसिकता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे सुनते हैं कि आईटी में जो है टाइम बाउंड नहीं है वरना जैसे दूसरे फील्ड में 8 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। आप एक शिक्षक है तो सवेरे आप गए और 1-2 बजे वापस आ गए, लेकिन आईटी में ऐसा टाइम बाउंडिंग नहीं रहता, तो उसमें आप किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं और विद्यार्थी मित्रों को क्या बताना चाहेंगे?
1: या डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कमिटमेंट आजकल हर फील्ड में चाहिए, एंड IT एक ऐसा फील्ड हो गया है खासतौर से। क्या IT में क्या हो रहा है कि इंडिया में तो अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन मेजॉरिटी जो अपॉर्चुनिटीज़ है फॉरेन कंट्रीज़ में है, और उनको कहीं ना कहीं वो चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए जैसा थोड़ा सा इंडिया में रहता है कि ठीक है यार चल जाएगा ऐसा चलता है ऐसा, बट वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ 100% कमिटमेंट चाहिए। और डेफिनेटली मतलब US की बात करूँ, जैसे मेरे सारे कस्टमर US के हैं, तो 10 to 11 hours का टाइम डिफरेंस है, एंड हम लोगों को जो है कम से कम 5 to 6 hours का ओवरलैपिंग उन लोगों के साथ में करना पड़ता है। और जब भी हमारे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम आती है, तो वेदर इट इज़ लाइक मिडनाइट, राइट, नाइट में 1 बज रहा है 2 बज रहा है, दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू बी देयर टू रिजॉल्व देयर इशू। सो सबसे पहले जो है मतलब IT प्रोफेशन यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि वो लग्जरी वो कंफर्ट आपको नहीं मिल पाएगा कि नहीं मैं अपना डे जो है 6:30 क्लोज कर दूं या फिर 7 तक कर दूं मैं, तो वो आपको अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा। आप डेफिनेटली पैसा भी है उस हिसाब से, बट उतने चैलेंजेस भी हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आपको चैलेंजेस को ओवरकम भी करना पड़ेगा, और साथ में जो है अपना मतलब मेरे को बोलना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली की भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती हैं, और उसमें जो है कहीं ना कहीं मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसे मैं भी जो है 14 साल से ज्ञान से बाबा के ज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मेरी वाइफ जो है ज्ञान में आए थे और वो मेरे को लेके आए इस ज्ञान में जब मैं दिल्ली में था और कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी मतलब मेरे भी जॉब्स रिलेटेड। तो हम लोग मतलब मेरी वाइफ जो है सिस्टर शिवानी को सुना करती थी।
0: अच्छा,
1: और उस समय मेरी वाइफ ने मेरे को सजेस्ट किया आप भी सुनिए इनको, और फिर मैंने सुना। फिर जो है वापस मैं इंदौर आया क्योंकि मेरे फादर की थोड़ी सी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी। तो फाइनली यहाँ पर आकर फिर हम लोग फुली मतलब यहाँ पर जुड़ गया मैं। तो बाबा का ज्ञान भी जो है कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स व्हाट इज़ हैपनिंग कि सीनियर मैनेजमेंट का प्रेशर है, टीम का प्रेशर है कि आप मुझसे ज़्यादा मत काम करवाओ, ठीक है, और कस्टमर ऑन साइट पे है वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो डिलीवरी चाहिए क्योंकि आपने कमिट किया है। तो एज ए मैनेजर आप जो है कहीं ना कहीं एज ए सैंडविच बन रहे होते हो इन मैनी केसेस एक्चुअली। तो आपको अपने आप को उस स्ट्रेस से बाहर निकालने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: वो स्ट्रेस मैं ये कहूँगा कि आप यदि कनेक्टेड हो ज्ञान से, और इसमें जो बाबा के ज्ञान से मैं कनेक्टेड हूँ, उसने टाइम टू टाइम मेरे को बहुत हेल्प किया है। और स्पेसिफिकली
0: बिल्कुल
1: मेरे फादर की किडनीज फेल हुई थी, और उस समय मेरा प्रोजेक्ट इतना क्रिटिकल कंडीशन में था, तो वो बैलेंस मेंटेन करना मेरे लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट था, और इट कुड हैपन बिकॉज ऑफ बाबाज ज्ञान।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम लोग टाइम डिफरेंस के वजह से जो ओवरलैपिंग टाइम हो रहा है उसको आप माइनस नहीं कर सकते, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको तो आपको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है। तो ऐसे में आपका स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप एक्स्ट्रा जो है टाइम हो जाता है तो नेचुरली मन के ऊपर उसका असर होता है। तो उसको बैलेंस रखने के लिए राजयोगा का जो जिक्र किया है सुमित जी ने, तो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हेल्प करता है आपको कि कैसे है आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। तो इसमें राजयोगा का कैसे आप प्रयोग करते हैं, क्या सोचते हैं, थोड़ा सा बताइए हमें।
1: राजयोग का प्रयोग ऐसे करता हूँ कि अब हम लोग मुरली में भी सुनते हैं बाबा की,
0: जी
1: जो
0: जी
1: लोग
0: जी
1: अवेयर हैं उन सब चीज़ों से,
0: बिल्कुल
1: कि परिस्थितियाँ आएंगी, परिस्थितियों का काम में आना, और वो आएंगी। अब आपको ये देखना है कि आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि टीम आपकी है, काफ़ी बड़ी टीम है, सभी की अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इसके बाद में हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिर कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं कि बंदा ज़्यादा अप्रेजल एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको और मनी चाहिए, राइट, बट कंपनी इज़ नॉट गिविंग, ही इज़ ट्राइंग टू डिलीवर बट ही इज़ नॉट गेटिंग दैट मच अप्रेजल। तो इस टाइप की चीज़ें में आती हैं, तो टीम्स की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आता है, और क्लाइंट्स की तरफ से तो प्रेशर ही रहता है। लेकिन उस केस में यदि आप हर घंटे थोड़ा सा, एक से 2 मिनट के लिए अपने आप को बिंदु रूप में स्थित करें और परमात्मा को याद करें, तो मेरे हिसाब से जो है काफ़ी चीज़ें आपकी जो है नॉर्मलाइज हो जाती हैं, जो आपको लग रहे होती हैं कि ये बहुत पहाड़ की तरह है, और वो फिर फाइनली जो है वो एक बहुत छोटा रूप ले लेती हैं और निकल जाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया कैसे जो है राजयोग का आप प्रयोग करते हैं, ये आपने बताया। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और आप सुन रहे हैं सुमित जी को कि किस तरह से आईटी सेक्टर में कैसे काम करते हैं वो, और आईटी सेक्टर का जो चैलेंज है उसके बारे में उन्होंने बातें की। आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बातें हो रही हैं राजेंद्र सिंह और सुमित जी से। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, तो आशा करूंगा आपको कहीं ना कहीं इनसाइट मिल रहा होगा आईटी सेक्टर के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से उनको जोड़ना चाहूँगा, लेकिन एक गीत के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो राजेंद्र सिंह जी, मैं फिर से आपको जोड़ना चाहूँगा, और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर हमारे विद्यार्थी मित्र आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
1: इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ तो रोज़ बढ़ी रही हैं।
0: जी जी जी।
1: और जहाँ तक सवाल है, अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स जहाँ से, जैसे कि IITs हैं या नेशनल जो कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, मैनेट जो कहलाता है, जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहलाते हैं, और इन सारे अच्छे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपको इनमें एडमिशन्स मिल सकता है। लेकिन ये सारे एडमिशन्स आपके इंस्टीट्यूट्स के उस आधार पर ही होंगे जब आपका मेरिट में आपका नंबर जिस प्रकार से आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे प्रथम तो लोगों की, हर इंजीनियर की एक इच्छा होती है, हर छात्र की इच्छा होती है कि उसे IIT मिले, लेकिन IITs में एडमिशन्स काफ़ी टफ होते हैं। तो अगर IITs में अगर आपको ना भी मिले तो फिर आप रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहने लगे हैं आजकल, NITs कहलाती हैं, वो सेकंड लेवल की हैं, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप स्टेट के, जिस भी स्टेट में आप हैं, उनके जो प्रतिष्ठित या बेस्ट कॉलेजेस होते हैं उनमें आपको एडमिशन्स मिल सकता है। और आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, और इसके बाद में अगर आप चाहें तो PG भी कर सकते हैं। PG के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं अब इंजीनियरिंग के अंदर, और इसके लिए आपको एक जॉइंट वो गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग कहलाता है, उसमें अपियर होना पड़ेगा, जिसके माध्यम से ही आपको इन सारे कॉलेजेस जिसके मैंने नाम आपको सुनाए हैं, बताए हैं,
0: बिल्कुल
1: इनमें एडमिशन्स आपको मिल सकता है। और प्लानिंग का जिस प्रकार से मेरा स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IIT लेवल के 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जिन्हें कहा जाता है, जो दिल्ली में है, उसके पश्चात अब भोपाल में भी एक इंजीनियरिंग, एक SPA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और एक विजयवाड़ा। ये भी एक तरह से प्लानिंग के क्षेत्र में IIT स्तर के कॉलेजेस हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अगर कोई छात्र बैचलर्स करने के बाद भी इस फील्ड में अगर जाना चाहता है तो इन फील्ड्स में, इन कॉलेजेस में अपने एडमिशन्स ले सकता है, और उसमें वहाँ पर अपनी एक विशिष्ट स्पेशलाइजेशन की डिग्री जो कि प्लानिंग से रिलेटेड है, चाहे वो एनवायरमेंटल प्लानिंग हो, अर्बन प्लानिंग हो, रीजनल प्लानिंग हो, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग हो, ये सारी डिग्रियों को किस अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ प्राप्त कर सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को इंजीनियरिंग करने के लिए किस तरह से आपको जो है ध्यान देना है, वो सारी बातें आपको राजेंद्र सिंह ने अपने अनुभव के साथ साझा किया है। तो आइए फिर से मैं सुमित सर से आपको जुड़ना चाहूँगा। सुमित जी, IT सेक्टर में अगर हमारे विद्यार्थी मित्र जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह की मानसिकता बनानी है और कैसे वो इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं?
2: IT का अभी स्कोप काफ़ी है और फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है। हालांकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से जॉब्स पे इम्पैक्ट आ रहा है।
0: हाँ।
2: बट मेरे को लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में कुछ ना कुछ AI की वजह से भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐसी आएंगी और नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
0: AI प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं।
2: लेकिन जहाँ तक बात है करियर ऑप्शन, सॉरी इंजीनियरिंग की IT में ज्वाइन करने की, तो इंजीनियरिंग आप किसी ब्रांच से कर रहे हो, वेदर इट इज़ ए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, यदि आप साथ में कोई 2-3 सब्जेक्ट लेकर एडिशनल डिप्लोमा या साथ में पढ़ते चलते हैं, लाइक C++, जावा, राइट, और एक डाटाबेस ले लेते हैं आप, सो इट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ कम्प्लीशन ऑफ योर डिग्री, कि आपको कैंपस में कंपनीज आएंगी और अलाउ करेंगी, और उसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छी करियर ग्रोथ और करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। और साथ में कोई ना कोई AI से रिलेटेड, यदि आजकल की जनरेशन की बात करूँ तो AI से रिलेटेड जितने चल रहे हैं चीज़ें, ट्रेंड्स चल रहे हैं, उस पर भी यदि हैंड्स ऑन कर लेंगे तो आगे आपको काफ़ी हेल्प करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपके ऊपर है कि आप जितना अच्छा सीख लेते हैं उसका उपयोग कर पाते हैं, उतना ही वो आपको सपोर्ट भी करता है। बहुत अच्छी बात आपने बताया। सुमित जी, इसमें चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं IT में?
2: आईटी में चैलेंजेस का जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये यूएस के यदि कल्चर की बात करूं मैं यूएस करीबन जो है 1 से 1.5 साल रहा हूं, 3 बार मैंने विजिट किया हुआ है। मेरे पास में अपॉर्चुनिटी भी थी कि मैं फाइनली वहां सेटल हो जाऊं, बट कुछ ना कुछ ये बाबा का ज्ञान था कि मेरे को वहां का कल्चर पसंद नहीं आता था और मेरे को वो मतलब वहाँ का जो ओवरऑल चीज़ें हैं आई डोंट लाइक इट, क्योंकि मैं खाना भी खुद ही बनाता था।
0: क्या बात।
2: तो उन सब चीज़ों की वजह से मेरे को पसंद नहीं था। लेकिन एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगा कि मैंने जैसे तो बोला कि टाइम का जो डिफरेंस है, दूसरा चीज़ क्या है कि यूएस का कल्चर ये है कि हायर एंड फायर।
0: बिल्कुल
2: राइट। आज जरूरत है तो वो आज आपको वट एवर यू विल आस्क दे विल गिव। राइट। वही कल्चर अभी इंडिया में आ रहा है तो जनरेशन को सबसे पहले तो क्या है, अपने आप को बहुत स्किल्ड करके चलने की जरूरत है। ठीक है। और उसमें यह भी ऐड करना चाहूंगा कि स्किल करने के साथ में यदि आज आपको कोई बहुत हाई पैकेज पर रख रहा है तो डोंट एज्यूम कि यू आर द मोस्ट लाइक स्किल्ड पर्सन। टुमारो दे में से लाइक हियर इज द डोर। राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है और ऑन डेली बेसिस यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ।
0: बिल्कुल।
2: अपडेट योर सेल्फ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया सुमित जी, थैंक यू सो मच अपना इंसाइट शेयर करने के लिए। आइए एक छोटा सा मैसेज के साथ हम लोग पूरा करते हैं और राजेंद्र जी मैं चाहूँगा कि एक मैसेज विद्यार्थी मित्रों को क्या बताना चाहेंगे आप।
1: मैं तो अपने जितने भी युवा छात्र हैं उन सबको ये कहूँगा कि अपना कैरियर का चुनाव अपने मन के हिसाब से करें, जो उनकी रुचि हो। किसी के कहने में ना आए और जिस चीज़ में उनका क्षेत्र में उनका रुचि है उसी फील्ड में अपने आप का कैरियर बनाएं, वो उसमें वो अवश्य रूप से सफल होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये बहुत आवश्यक है। थोपा हुआ रुचि आपके ऊपर कभी आपको सफलता नहीं दिलाएगी।
0: सही बात, सही बात, बहुत अच्छी बात आपने बताया। राजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे विद्यार्थी मित्रों को अपना अनुभव और मैसेज देने के लिए। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, करियर में कभी भी आप किसी और को देखकर या किसी ने बताया इसलिए आप उसे कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल देता है। आपकी रुचि को ही आप जो है पहला प्रेफरेंस रखें और उसी में काम कीजिए, ये आपने बताया। आइए मैं सुमित सर से भी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में, जो आपने IT सेक्टर के बारे में बताया, चैलेंजेस के बारे में बताया और समय के साथ साथ चीज़ें कैसी मैनिपुलेट हो जाती हैं वो भी आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी मित्रों का भी जाते जाते एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे।
2: मैसेज के तौर पे यही बोलना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले अपनी इनर वॉइस सुने।
0: बिल्कुल।
2: राइट। कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। एंड एक चीज जरूर मान के चले बिल्कुल, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। डोंट ट्राई टू अप्लाई एनी शॉर्टकट।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया सुमित जी कि कभी भी आपको सफल होना है या सफलता पाना है तो इसके कोई शॉर्टकट्स नहीं है और हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। तो हमेशा आप हार्डवर्क कर रहें और अपडेट रहें और सफलता पाने के लिए आपको जो है जो विधि है विधि से ही आपको सिद्धि मिलेगा। शॉर्टकट्स में कहीं भी कुछ चीज़ें हो सकता है कि जल्दबाजी में चीज़ें हो सकता है, आप US चले गए और अपॉर्चुनिटी कुछ मिल गया, शॉर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही, लेकिन वो सब टेम्प्रेरी ब्रिंग के लिए रहता है। क्योंकि लाइफ टाइम में आपको अगर संतोषजनक जीवन जीना है तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कहीं ना कहीं भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रॉपरली आपका डिसीशन आपका सोच ही काम आता है। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा अपग्रेड भी करते रहें और हर चीज़ के बारे में सोचें, लोगों का मेंटेलिटी क्या है वो भी आप देखिए और आप कितना लंबा उसको कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा देखना है। और IT सेक्टर में हमेशा ये एक फ्लैक्चुएशन रहता ही है और नई नई चीज़ें रोज़ आती हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करके रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज के इस एपिसोड में राजेंद्र सिंह जी को और सुमित जी को आपने सुना, दोनों सेक्टर इंजीनियरिंग के बारे में भी आपको पता चल गया, IT सेक्टर के बारे में भी आपको इनसाइट मिल गया है। तो निश्चित तौर पर आप अपना जो है दिल की बात सुने और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी कलेक्शन जो है आज ईजी है, आप एक गूगल पे जाएंगे तो आप सब चीज़ें आपको करियर में क्या क्या प्राइमरी जो ज़रूरत है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन रेडियो के माध्यम से जब हम लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करते हैं तो आपको उनकी एक्सपीरियंस के जो अनुभव आपको मिल जाता है वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है। तो इसीलिए हम लोग ये सारी बातें एक्सपर्ट से करते हैं ताकि आप अपने करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकें। तो आशा करूँगा कि आप राजेंद्र सिंह और सुमित जी को सुन के बहुत सारी बातें आपने सीखी होगी। तो फिर से एक बार राजेंद्र सिंह और सुमित सर को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं अपने अनुभव को साझा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।
2: धन्यवाद।
0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपने करियर को थोड़ा टाइम देकर अच्छी तरह से फ्रेम करें, जो रुचि हो उस पर काम कीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच. हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं. जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
1: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर अपोआप फिरकतं. त्याच सोबत
2: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
3: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
5: रेडियो पुनीरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो. प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन.
6: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM. हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है कर्मों की गति. चलिए मैं आपसे अपना चिंतन शेयर करता हूं कर्मों की गति के ऊपर. मनुष्य के जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व होता है. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे. कर्मों की गति अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी होती है. यह सत्य है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है. कर्मों का प्रभाव जीवन में तात्कालिक भी हो सकता है और दीर्घकालिक. यह आवश्यक नहीं कि हमें अपने कर्मों का फल तुरंत मिले, लेकिन समय आने पर यह अवश्य मिलता है. आइए अब हम समझते हैं कर्मों का महत्व क्या होता है. भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है और यह हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है. यदि हम सत्कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलता है और यदि पाप कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है. अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनका भाग्य ही सब कुछ तय करता है, लेकिन वास्तव में भाग्य भी कर्मों का ही परिणाम होता है. यदि किसी ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका भाग्य अच्छा होगा और यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसका भाग्य भी प्रतिकूल होगा. भाग्य केवल पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब होता है, लेकिन वर्तमान के कर्म ही भविष्य का भाग्य निर्धारित करते हैं. इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए. आइए अब हम समझते हैं कर्मों की गति का क्या रहस्य होता है. कर्मों की गति को समझना बहुत कठिन है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करने के बाद भी सुखी है, जबकि कोई इंसान दुखों का सामना कर रहा है जिसने कि हमेशा अच्छे कर्म किए हैं. लेकिन यह कर्मों की जटिल गति का ही प्रभाव होता है. अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब सही समय आता है तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है. इसी प्रकार बुरे कर्मों का दंड भी देर सवेर अवश्य मिलता है. अच्छे और बुरे कर्मों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है. आइए अब समझते हैं कि अच्छे कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है. सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना आदि, ऐसे कर्म करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है और अगले जन्म में भी सुखद जीवन प्राप्त होता है. बुरे कर्म जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, ईर्ष्या और द्वेष रखना, लालच करना आदि, ऐसे कर्म करने से व्यक्ति को मानसिक अशांति मिलती है, समाज में तिरस्कार मिलता है और अगले जन्म में भी कष्ट भोगने पड़ते हैं. इस चिंतन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर्मों की गति को समझना आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है. हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे ही हमें सफलता, सुख और शांति प्रदान करते हैं. यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है. इसलिए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए हमें सत्कर्म की राह पर चलना चाहिए. धन्यवाद दोस्तों, ये था मेरा आज का चिंतन. फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ. बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से. खुश रहें, खुशियां बांटें.
5: रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।
6: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: टेंशन में सिगरेट पीता हूँ, कोई प्रॉब्लम आए तो पीता हूँ, तो उस इफेक्ट को ठीक करने के लिए पीता हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो मेडिटेशन है उससे वो सिचुएशन ही नहीं आ रही है जिससे वो पीऊं।
1: ब्यूटिफुल,
0: वो जो स्ट्रेस ही नहीं आ रहा है,
1: ब्यूटिफुल,
0: तो उसका कारण ही नहीं आ रहा है ना।
1: yes. क्योंकि अब क्या हो रहा है, परिस्थिति को हम फेस ही अलग तरह से कर रहे हैं। पहले स्ट्रेस यहाँ क्रिएट हो रहा था ना,
0: तो मैग्नीफाइड आता था,
1: मैग्नीफाइड आता था। अच्छा, अभी भी अगर
0: अभी भी वही परिस्थिति, वही स्ट्रेस छोटा लगता है,
1: छोटा लगता है। अच्छा, अब अगर बात आती भी है, कुछ थॉट्स चलती भी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारी कोई नेगेटिव या वेस्ट थॉट नहीं चली, चलती भी हैं, लेकिन अब हम उसको सोल्यूशन कैसे देते हैं? क्योंकि अब हमें ज्ञान से सोल्यूशन देते हैं ना। स्ट्रेस क्रिएट हो भी सकता है, कोई बड़ी बात आ जाए, छोटी बातों का अब नहीं क्रिएट होता, कोई बड़ी बात आ जाए, स्ट्रेस क्रिएट हुआ मीन्स अनकम्फर्टेबल थॉट्स क्रिएट हुई। अब हम उस अनकम्फर्टेबल थॉट्स को साइलेंस करने के लिए क्या करते हैं? हम ज्ञान को यूज करते हैं, मेडिटेशन की पावर को यूज करते हैं, वो परमानेंट रिजॉल्व हो जाता है। जब हम सिगरेट को यूज करते थे, अल्कोहल को यूज करते थे, टेलीविजन को यूज करते थे, शॉपिंग को यूज करते थे, फोन पे लोगों से बात करने को यूज करते थे कि मुझे अपने माइंड को शांत करना है, आई हैव टू डू समथिंग, थोड़ी देर के लिए होता था। कोई कहेगा कॉफी पी लो, कुछ भी, कोई एक्सटर्नल चीज चाहते थे, कोई भी एक्सटर्नल
0: गोली खा लो,
1: गोली खा लो, या सी
0: लो को हाई करने के लिए भी गोलियां, तो फील हाई।
1: यस, सो वी वर यूजिंग एक्सटर्नल सब्सटेंसेस टू क्रिएट दैट फीलिंग। नाउ वी आर यूजिंग इनर मेथड टू क्रिएट दैट सेम फीलिंग, इनफैक्ट अ मोर एलिवेटेड, हायर, प्योर फीलिंग। और ये फीलिंग हम इटर्नल पकड़ सकते हैं, और ये फीलिंग किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एक वायरिंग नहीं क्रिएट हो जाएगी अंदर? अब ये वायरिंग इतनी स्ट्रांग हो गई आपकी कि अब अगर कोई और ले रहा है तो वो स्मेल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अब हमारा सिस्टम, हमारे संस्कारों से वो चीज बिल्कुल निकल चुकी है। लेकिन ध्यान,
0: बचपन में भी स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, बिफोर आई स्टार्टेड, अब आई हैव कम बैक टू दैट बचपन,
1: वी हैव कम बैक टू द ओरिजिनल संस्कार,
0: बीच में जो गया गया,
1: वी हैव कम बैक टू द ओरिजिनल संस्कार। अब हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमने जो ज्ञान और मेडिटेशन का मेथड यूज किया है, ये हमेशा चलना चाहिए। रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होती,
0: दूसरी चीज रिकॉर्ड हो जाती है,
1: दूसरी चीज रिकॉर्ड होती है। अगर आपने 6 महीने मेडिटेशन की, आपको वो पावर मिली, वो चीज छूट चुकी है, 6 महीने से नहीं ली, 2 साल बीत गए नहीं ली, अब धीरे धीरे चलते चलते कहीं आपने मेडिटेशन करना छोड़ दिया, ज्ञान रोज स्टडी करना छोड़ दिया, मतलब वो अनुभव क्रिएट करना छोड़ दिया, वो नॉलेज जो इंटेलेक्ट को मिली थी वो छोड़ दी, 6 महीना 8 महीना बीते, हम वापस वो ऑर्डिनरी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने में चले गए, आज कोई बात आई, कोई क्राइसिस आया, कोई सिचुएशन आई जहां हमने स्ट्रेस क्रिएट कर लिया, हाथ जाने का चांसेस उस चीज पर काफी हाई हो जाता है।
0: मेरे साथ हुआ था, जब मैं बीमार हुआ तो आर्टिफिशियली छूटा था, डॉक्टर ने बोला था, तो 1 महीना 2 महीने करते करते उसने बोला 5-6 महीने तक तो नहीं, तो 6वें महीने में कुछ स्ट्रेस आया, सिचुएशन आई, एंड मैंने बॉटल खोली, स्मेल किया, इतनी गंदी लगी इसमें।
1: अच्छा,
0: लगने के बावजूद भी, क्योंकि वो बाहर से ही हुआ था, उसके बाद भी 15 मिनट सोचा, आधा घंटा सोचा, 1 घंटे तक लड़ता रहा अपने आप से, लेकिन आई वेंट बैक अगेन।
1: व्हाई डिड वी गो बैक अगेन दैट टाइम? अगर वो सिचुएशन ना आती तो शायद हम उस पर वापस ना जाते, लेकिन जीवन में सिचुएशंस तो आनी ही है। उस दिन ना आती, अगले दिन आ जाती, फिर कोई और आ जाती। अब आपने कहा मैंने 1 घंटा लगाया, ये 1 घंटा किस में बीता? माइंड ने थॉट्स क्रिएट की, लो नहीं लो, नहीं लो, लो माइंड ने कहा 6 महीना नहीं लिया, छूट चुकी है, डॉक्टर ने भी बोला है नहीं लेना, फिर इधर से माइंड ने लिया, ये इतनी जो टेंशन है, ये मन शांत कैसे होगा? फिर माइंड ने कहा सो जाओ, ठीक हो जाएगा, फिर माइंड ने कहा नींद कैसे आएगी? क्योंकि पुराना अनुभव क्या है, नींद कैसे आती है जब माइंड स्ट्रेस्ड है, कोई सब्सटेंस

0: लेना है उसको साइलेंस करने के लिए। ये जब माइंड ये सारी थॉट्स क्रिएट कर रहा था, उस दिन इंटेलेक्ट ने क्या डिसीजन ले लिया,
1: चलो भी ले लो,
0: एक दिन लेने से कुछ नहीं होगा। एक दिन लिया, वायरिंग शुरू हो गई, और वो थी बहुत स्ट्रांग बहुत सालों की,
1: तो फिर ऑटोमेटिक मोड पे आ गया।
0: फिर सेकेंड डे ही ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएंगे।
1: आ गया था
0: नहीं, ऑटोमेटिक मोड पे आ गए वो कैसे पता चलेगा कि सेकेंड डे एक घंटा नहीं लगेगा डिसीजन लेने में?
1: ना,
0: नहीं
1: लिया। सेकंड डे तो वो टाइम हो, शाम का टाइम होते अपने आप हाथ क्लास में चला गया।
0: सी द डिफरेंस, फर्स्ट डे एक घंटा लगा, सेकेंड डे कोई टाइम नहीं लगा, मतलब क्योंकि वायरिंग पुरानी थी, सेकेंड डे पर माइंड और इंटेलेक्ट का रोल बंद हो गया, वो फायरिंग हो चुकी है, वी वेंट बैक टू इट। कितना इम्पोर्टेंट है सस्टेन करना।
1: फिर मैं ऐसे डॉक्टर ढूंढता था जो कि बोले कुछ नहीं होता ले लो।
0: सी
1: ये हाल था कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के पास गया, सब बोले नहीं नहीं नहीं ये बीमारी के बाद तो नहीं लेना चाहिए। कोई कुछ बोले, कोई फिर एक ने बोला कुछ नहीं होता है, इसमें क्या है, तुम गिल्ट फील करके ले रहे हो, वो जो स्ट्रेस से नहीं पीने का वो ज्यादा तुमको तकलीफ दे रहा है, ले लो, आई एम हैप्पी, चलो ले लो।
0: अब ये जो नॉलेज मिली, क्योंकि इंटेलेक्ट किस आधार पर डिसीजन लेता है, इंटेलेक्ट में जो नॉलेज हम भरते हैं, क्यों ज्ञान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भाई बहने सेंटर पर आते हैं, कहते हमें सिर्फ मेडिटेशन करनी है, हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइलेंस में बिठाओ, मेडिटेशन कराओ, एक्सपीरियंस कराओ, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जो ज्ञान होगा ना अंदर, उस आधार से डिसीजन लेंगे। आपने जैसा
1: बहुत काम करता है ज्ञान, ये तो मैंने मेरा अपना
0: ज्ञान नॉलेज, आपने जैसे ही उस डॉक्टर से ये नॉलेज लेकर अंदर भरी कि कुछ नहीं होता, गिल्ट क्रिएट करना ज्यादा नुकसानदायक है, अल्कोहल उतना नहीं नुकसान करता, ये भी एक नॉलेज थी। ये नॉलेज से इंटेलेक्ट ने आगे के लिए क्या डिसीजन ले लिया, इट्स ओके, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दिस इज नॉट डैमेजिंग फॉर मी, इतना लो और गिल्ट क्रिएट करो दैट इज डैमेजिंग। नॉलेज, राइट नॉलेज इज नीडेड फॉर द राइट डिसीजन, फॉर द राइट संस्कार टू गेट क्रिएटेड।
1: राइट,
0: फिर वो मेहनत करनी पड़ी, इसलिए ज्ञान भी बहुत ध्यान से लेना चाहिए कि कौन सा ज्ञान हम ले रहे हैं जो मेरे लिए सही है। अब ये तीन स्टेजेस जब हमने देखी, मन, बुद्धि, संस्कार, एक बार वो संस्कार बन गया तो वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया, मतलब थॉट, इंटेलेक्ट, संस्कार, जैसा संस्कार वैसी थॉट, इट्स साइकिल, और जब संस्कार में चला गया, फर्स्ट टू स्टेजेस आर लॉस्ट। अब ये हमने स्थूल आदतों पे देखा कि सिगरेट, अल्कोहल, कोई भी हैबिट, सेम लॉ विल अप्लाई टू हमारी सूक्ष्म आदतें, हमारे सोचने के तरीके, हमारे पैटर्न्स, हमारे बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका, वो भी तो एक रिकॉर्डिंग ही बन रहा है। लेकिन वो जो आपने लास्ट टाइम आर्टिकल पढ़ा, वो हमें एक कन्विक्शन देती है, कोई भी संस्कार, एंड कोई भी मींस कोई भी संस्कार, कितना भी पुराना हो, कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी कड़क हो, इट कैन बी चेंज्ड। हम कोई भी संस्कार के लिए ये नहीं कह सकते ये आदत तो मेरी
1: छोड़ नहीं सकती,
0: चेंज नहीं होती, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ दोज फ्यू डेज, और उसमें अगर अपने आप को राइट नॉलेज और पावर दी मेडिटेशन से तो वो चेंज करना।
1: यू हैव टू मेक इट योर बिलीफ,
0: यू हैव टू हैव फुल फेथ इन दैट, यू हैव टू वॉन्ट इट, आपको चाहिए वो परिवर्तन, फिर उस परिवर्तन के लिए आप ज्ञान लेते हैं, आप मेडिटेशन से आत्मा की ताकत बढ़ाते हैं, फिर आप सारा दिन में अटेंशन रखते हैं, फिर थोड़े दिन में वायरिंग चेंज हो जाएगी।
1: मैं क्या कहता था, छोड़ना छोड़ना छोड़ना छोड़ना छोड़ से बोलता था, वांट नहीं था, लेकिन वांट वाली डिजायर ही नहीं थी कि
0: right.
1: छोड़ना है, वांट करना है, और आता भी नहीं था
0: कॉन्शियसनेस में, नहीं
1: पहली बात तो ये सब चीजें लाना ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में,
0: ये सब चीजें लानी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। हाउ ट्रू कि कोई ऐसी आदतें,
1: तो थॉट लेवल से अगर शुरू से चले जाओ इस पे, ये ज्ञान में आप जो बता रही हैं, शुरू से बच्चों को या थॉट लेवल से ही सिखा दें यहाँ, तो पूरा आगे जाके ना पहले इसको ऐसी आदतें पकड़ेंगे, ना फिर छोड़ने में इतनी तकलीफ होती, छोड़ेंगे
0: तो हमारे आज के बच्चों को लेकिन ये सीखने की जरूरत है ना कि पीयर प्रेशर में आकर, दोस्तों को देखकर, वातावरण को देखकर कोई ऐसी बात शुरू ना करें।
1: आप बोल रहे आज के बच्चे,
0: हाँ।
1: मैं बोल रहा हूँ हम अबव 50 हम लोग हमारी ग्रुप में जब मैंने बोला कि मैंने कुछ व्रत रखा हुआ है कि थोड़े दिन तक मैं खाली टोमेटो जूस पीऊंगा, तो बैठ के जब जूस पीता था तो एक तो मेरे पीछे पड़ गया, कब तक होगा यार एक और कितने दिन तेरा व्रत है? है। बाद में उन्होंने रूल पास कर दिया जो हमारे साथ शाम को ड्रिंक नहीं पिएगा, हमारे साथ नहीं खेलेगा।
0: That's okay, yeah.
1: That's peer pressure. आप बोल रहे स्कूल में peer pressure मेरी एज में पड़ा मुझे।
0: उस टाइम बुद्धि सही निर्णय ले, दिस इज द रोल ऑफ द इंटेलेक्ट।
1: फाइनली आई तो लेफ्ट देम,
0: नो दैट्स व्हाई फॉर ऑल ऑफ अस, दैट्स व्हाट फॉर ऑल ऑफ अस
1: छोड़ दिया मैंने।
0: बुद्धि उस टाइम सही निर्णय ले कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड्स। कई लोग कहते हैं करियर के लिए
1: होगा कि जो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है,
0: नहीं कई लोग कहते हैं करियर में हमारे इसमें करना पड़ता है, यू नो सम रीजन द माइंड विल गिव एन इंटेलेक्ट विल टेक इट एंड मेक अ डिसीजन। कोई ऐसा निर्णय ना ले जो ऐसा संस्कार बन जाए जो फिर संस्कार बदलने में इतनी उसको मेहनत करनी पड़े।
1: करियर में सिस्टर मैंने भी देखा है, कई लोग बोलते हैं हमको उनके साथ ड्रिंक लेनी पड़ती है, हमको एंटरटेन करना पड़ता है, लेकिन जब आप उन्हीं लोगों को बोलते हैं बिजनेस पीपल को कि आई एम अ वेजिटेरियन, तब क्यों नहीं लेना पड़ता है? वो लोग थोड़ी रोकते हैं आपको।
0: राइट राइट।
1: इफ यू से कि आई एम जस्ट अ टीटोटलर, तो वो तो बिजनेस से मतलब है उसको।
0: ये हमें मालूम है सब कुछ, लेकिन माइंड थॉट्स अलग अलग क्रिएट करेगा ना।
1: आपका अच्छा प्रोडक्ट हो तो वो आपको ड्रिंक करते हुए नहीं करते देखेगा, या वो अच्छे रेट पे आप दे रहे हो अच्छी चीज दे रहे हो वो देखेगा।
0: राइट। तो ये माइंड को ये सारी थॉट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, फिर इंटेलेक्ट को सही डिसीजन लेना पड़ता है, फिर उसको कर्म में लाना है। एक बार संस्कार बन गया फिर करियर में कोई भी बातें आए, फ्रेंड्स कुछ भी कहे, लोग आसपास कुछ भी कहें, कोई ऐसी बात भी हो जहां सारी दुनिया एक तरफ हो हम अकेले हो। ये तो सिगरेट अल्कोहल तो छोटी बातें है ना, जीवन में कोई ऐसी बातें भी आ सकती हैं जहां ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जहां हम अकेले खड़े होंगे, लेकिन आत्मा में उतनी ताकत होगी कि वो कर सकती है, क्योंकि वो इस छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों को क्रॉस करके विल पावर को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। अब अगर हमारी कोई चीज संस्कार बन चुकी है, हमें ऑप्शन की स्टेज पर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा उस दिन ऑप्शन आए, थॉट्स फिर से क्रिएट हुई, इंटेलेक्ट को फिर से डिसीजन लेना पड़ा, और फिर उस दिन हमने फिर वो कर लिया। मतलब अब संस्कार को चेंज करने के लिए थॉट्स में ऑप्शंस फिर से क्रिएट करनी पड़ेंगे। जब तक थॉट्स में फिर से ऑप्शंस नहीं क्रिएट होंगे वो उसी तरह से चलता जाएगा। जैसे सपोज आप रोज सुबह आप रोज सुबह उठने के बाद अगर चाय पीते हैं, ये आप सपोज पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, ठीक है, आप रोज सुबह चाय पीते हैं। आज आपके घर एक नया स्टाफ मेंबर आया, आपने उसको बताया कि मुझे 7 बजे चाय देनी है, तो वो पहले दिन आपको पूछेगा साहब क्या लेकर आऊं, चाय कॉफी क्या लेकर आऊं आपके लिए, तो आप कहोगे चाय। तो उस दिन वो स्टाफ ने आपको ऑप्शन दी थी कि चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, नींबू पानी लाऊं, कोकोनट वाटर लाऊं, वो ऑप्शंस देगा। उस दिन इंटेलेक्ट ने क्या डिसीजन लिया, चाय। मतलब आपने डिसीजन दिया चाय। सेकेंड डे वो फिर पूछेगा सर क्या लेकर आऊं, सेकेंड डे भी आपने कहा चाय। कितने दिन पूछेगा?
1: उसको मालूम है फिर सब चाय पीते तो अपने आप ले आएगा।
0: उसको मालूम है। अब अगर वो तीसरे चौथे पांचवे दिन फिर पूछता रहे तो आप उसको क्या कहेंगे?
1: मैं बोलूंगा कितने दिन बताओ, आपको मालूम नहीं है टाइम पे
0: हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, वो रोज 7 बजे चाय लेकर आएगा। कितने दिन तक वो रोज सुबह 7 बजे चाय लेकर आएगा?
1: जब तक आप मना नहीं करेंगे।
0: जीवन भर ला सकता है, मतलब जब तक आप मना नहीं करेंगे, विच मीन्स इस केस में जो आपका स्टाफ मेंबर है वो मन है जो आपको ऑप्शन देता है, सर चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, नींबू पानी लेंगे, 3-4 दिन ऑप्शन देता है। आप जो हैं वो बुद्धि है जो निर्णय देती है चाय, सेकेंड डे फिर कहती है चाय, थर्ड डे फिर कहती है चाय, फिर आपने कहा वो पूछना बंद कर देता है, तो आपका भी बोलना बंद हो जाएगा ना कि चाय चाय, बोलना ही नहीं है। अब क्या होने वाला है, चाय का कप ऑटोमेटिकली 7 बजे टेबल पर पहुंच जाएगा। आत्मा का संस्कार बन गया, ठीक बन गया। ये अब जीवन भर चलेगा, कि 7 बजे चाय आ जाएगी टेबल पर, अनलेस एक दिन आपको नई पीस ऑफ नॉलेज मिले, न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ने कहा टी इज नॉट गुड फॉर यू, स्टार्ट अनदर ऑप्शन. अब आपके पास ऑप्शन है ग्रीन टी, आपके पास ऑप्शन है हर्बल टी, आपके पास ऑप्शन है नींबू पानी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लेकिन इतने साल हम ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हमारे संस्कार में बन गया था. अब आज आप घर जाते हैं और अपने उस स्टाफ को कहते हैं कल सुबह 7 बजे नींबू पानी, तो ये लुक सेट यू, सर चाय नहीं पीनी. वो ऐसे ही नहीं है कि वो इमिजिएटली मान जाता है नींबू पानी लाने के लिए, ये तो चाय नहीं पीनी, रोज तो आप चाय पीते थे. तो कहोगे नहीं, कल से नींबू पानी. अगले दिन मॉर्निंग में 7 o'clock ही विल डेफिनेटली आस्क यू वंस,
1: आर यू श्योर
0: सर क्या लेना है, चाय या नींबू पानी. वो नहीं लाएगा नींबू पानी इस तरह से सीधा,
1: सही बात,
0: पूछेगा वो. उस दिन बुद्धि को क्या रहना पड़ेगा,
1: स्ट्रॉन्ग
0: नींबू पानी. ठीक है, एक दिन वो पूछेगा, फिर 2 दिन वो पूछेगा, 3 दिन वो पूछेगा. किसी दिन ये हो सकता है आपका थोड़ा सा सर दर्द होगा, वो देखेगा, कहेगा सर चाय नहीं पीना इसलिए सर दर्द हो रहा है, लाऊं चाय. बुद्धि को कहना होगा
1: नहीं.
0: कितने दिन,
1: थोड़े दिन
0: के बाद वो नींबू पानी आपके टेबल पर 7 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाएगा. ना वो पूछेगा, ना आपको डिसीशन लेना पड़ेगा. अब नींबू पानी आपकी वायरिंग में, आपके संस्कार में फिट हो गया, जीवन भर नींबू पानी चलेगा. कितने दिन लगने वाले हैं, बट वी हैव टू,
1: सर दर्द भी बंद हो जाएगी.
0: वो तो बंद हो ही जाने वाला है, लेकिन थोड़े दिन सर दर्द होगा. मतलब कोई भी संस्कार हम चेंज करना चाहेंगे, कुछ दिन मन पूछेगा गुस्से के बिना कैसे काम चलेगा, वापस नहीं बोलेंगे तो हम कमजोर हैं क्या, मतलब इसका मतलब वो आए वो बोल के चले गए, हमने कुछ बोला ही नहीं ऊपर से. ये मन, वो स्टाफ मेंबर आके बोलेगा सर ऐसे कैसे चाय नहीं पीनी, वो सब बोलेगा. बुद्धि को उस टाइम डिसीशन लेना है, न्यू वे ऑफ लिविंग, हैप्पियर एंड हेल्दियर वे ऑफ लिविंग नहीं करना, नहीं उल्टा जवाब देना है. ये थोड़े दिन चलेगा. अब जब आप वापस जवाब नहीं देंगे, थोड़े दिन अनकंफर्टेबल भी अंदर लगेगा, मन कहेगा बोल देना चाहिए था, थोड़ा तो बोल देना चाहिए था, ऐसे कैसे वो इतना आकर बोल के चले गए. ये स्टेज को हमने क्रॉस करना है,
1: करके चले गए और आप चुप रहे
0: करके चले गए. हाँ सी, ये मन सब बोलेगा अंदर,
1: मन भी बोलेगा, लोग भी ताने मारेंगे.
0: तो ये सब स्टेज हमें क्रॉस करनी है. ये सब, दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स. विड्रॉल सिम्टम कोई सिर्फ चाय कॉफी अल्कोहल के नहीं होते, विड्रॉल सिम्टम हर संस्कार को चेंज करने के होते हैं, बिकॉज वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग. लेकिन वो 5-6 दिन 8-10 दिन आपको स्ट्रोंग होकर बुद्धि को वो ही निर्णय देना पड़ेगा, नींबू पानी नींबू पानी नींबू, हो गया उसके बाद वायरिंग चेंज. अब आपके आसपास सब लोग चाय पिए, कुछ भी हो, आपका सर भी दर्द हो रहा हो, नींबू पानी आपके जीवन का हिस्सा, आपका संस्कार बन गया है. सो वी ओनली हैव टू पॉज एंड पे लिटिल अटेंशन दोस फ्यू डेज ऑफ संस्कार परिवर्तन. उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में नई रिकॉर्डिंग हो गई, उसी के थ्रू वर्क होगा वो.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर, नई रिकॉर्डिंग हम अगले एपिसोड में करेंगे.
0: थैंक यू शांति,
1: थैंक यू सो मच.
2: When we give up an addiction, the recording of that habit is still in our sanskars. When we are with people or in places which become a stimulus for us, sometimes the recording gets triggered and we may go back to the addiction. So, for some time, we need to keep away from the stimulus. Neurons that wire together, fire together. The soul has a recording of the experience it had with that particular addiction. In the presence of the stimulus, the desire for the same experience might take the soul back to the addiction. So, we need to give the soul a blissful experience through meditation, so that it does not seek that experience elsewhere. We use addictions only to experience happiness temporarily, to feel energized, to distract the mind away from stress, hurt, and negative emotions. When we use spiritual knowledge and meditation to heal our negative emotions, we will not need the addiction to feel better. Knowledge is information we take in. As will be the quality of information, so will be the quality of thoughts. Intellect will also take the decision based on the information it has, and the sanskar will get created. Spiritual knowledge enables the soul to create pure thoughts and take the right decision to create elevated sanskars.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

देखो देखो वो आ गया।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ये गीत तो आप सबने सुना होगा। सच में सारे जग में दूसरा हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि यहाँ की विभिन्नता भी एकता का प्रतीक है। इन्हीं विभिन्नताओं से होते हुए आइए चलते हैं आज जानने तमिलनाडु को। ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को कई भागों में बांट दिया गया, जिसके फलस्वरूप मद्रास तथा अन्य राज्यों का उदय हुआ और 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के तमिल तथा नाडु, जिसका शब्दार्थ घर या वास है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तमिलों का घर या तमिलों का देश।

चलिए अब आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां आपका इंतजार कर रहा है तमिलनाडु का अनुपम इतिहास। तमिलनाडु का इतिहास बहुत पुराना है, यद्यपि प्रारंभिक काल के संगम ग्रंथों में इस क्षेत्र के इतिहास का अस्पष्ट उल्लेख मिला है, किंतु तमिलनाडु का लिखित इतिहास पल्लव राजाओं के समय से ही उपलब्ध है। यह कुछ स्थानों में से एक है जो प्रागैतिहासिक काल से आज तक आबाद है। प्रारंभ में यह तीन प्रसिद्ध राजवंशों की कर्मभूमि रही है, जो थे चेर, चोल तथा पांड्य। तमिलनाडु के प्राचीन साहित्य में यहाँ के राजाओं, राजकुमारों तथा उनके प्रशंसक कवियों का विवरण मिलता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह साहित्य ईसा के बाद की कुछ प्रारंभिक सदियों का है। तमिलनाडु में स्थित है उत्तर मेरु ग्राम, जहां से पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। चोल पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक मुख्य अधिपति रहे। इनमें प्रमुख नाम करिकाल चोल है, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार कांचीपुरम तक किया। चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध में पल्लवों का वर्चस्व कायम हुआ। उन्होंने ही द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला का सूत्रपात किया। 11वीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल, पांड्या जैसे अनेक राजवंशों का शासन रहा। इसके बाद के 200 वर्षों तक दक्षिण भारत पर चोल साम्राज्य का आधिपत्य रहा। तमिल का संगम साहित्य चेर, चोल वंश और पांड्य वंशों के शासन काल में फला और फूला है। चोल राजाओं ने वर्तमान तंजावुर जिला और तिरुचनापल्ली जिले तक अपने राज्य का विस्तार किया। इस काल में चोल राजाओं ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। काल भ्रो को 6वीं सदी तक उत्तरी भाग में पल्लवों तथा दक्षिण भाग में पांड्यों ने हरा दिया। इसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी तमिलनाडु के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ा योगदान दिया है, जिसमें से प्रमुख है सी सुब्रमण्यम, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चिदंबरम पिल्लई, टीएसएस राजन, कसीन थूनी नागेश्वर राव, के कामराज, के संतानम, मिंजुर भक्तवत्सलम आदि।

கம்பர்க்கின் நவுடத்தித் தாவிழும்

जानते हैं कुछ तमिलनाडु के भूगोल के बारे में। तमिलनाडु राज्य प्राकृतिक रूप से पूर्वी तट पर समतल प्रदेश तथा उत्तर और पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच विभाजित है। पूर्वी मैदान का सबसे चौड़ा हिस्सा उपजाऊ कावेरी के डेल्टा पर है और आगे दक्षिण में रामनाथपुरम और मदुरई के शुष्क मैदान हैं। राज्य के समूचे पश्चिमी सीमांत पर पश्चिमी घाट की ऊंची श्रृंखला फैली हुई है। पूर्वी घाट की निचली पहाड़ियाँ और सीमांत क्षेत्र जो स्थानीय तौर पर जावड़ी, कालरायन और शेवराय कहलाते हैं, प्रदेश के मध्य भाग की ओर फैले हैं। यहाँ महत्वपूर्ण नदियों में कावेरी, पुन्नेयार, पलार, वैगई और ताम्रपर्णी शामिल हैं। ये सभी नदियों अंतरस्थलीय पहाड़ियों से पूर्व की ओर बहती हैं। कावेरी और इसकी सहायक नदियाँ तमिलनाडु के जल एवं विद्युत का महत्वपूर्ण स्रोत है। नदियों के डेल्टा की जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता के साथ साथ यहाँ की मुख्य मिट्टियों में चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली और लाल मिट्टी पाई जाती है। कपास उत्पादक काली मिट्टी रेगुर या रेगड़ के नाम से जानी जाती है और यह पश्चिम में सेलम व कोयम्बतूर, दक्षिण में रामनाथपुरम व तिरुनेलवेली तथा मध्य में तिरुचनापल्ली के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तमिलनाडु राज्य के लगभग 15% हिस्से में वन है। पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखरों वाले पर्वत नीलगिरी, अन्नमलई और पलानी पहाड़ियाँ उप अल्पीय वनस्पतियों को सहारा देते हैं। पश्चिम घाट के पूर्व की ओर तथा उत्तरी एवं मध्यवर्ती जिलों की पहाड़ियों की वनस्पतियों में सदाबहार व पर्णपाती वृक्षों के मिश्रित वन हैं। वनों से प्राप्त काष्ठ उत्पाद में चंदन, पल्पवुड और बांस शामिल है। रबर भी एक महत्वपूर्ण वनोपज है। यहाँ के जलीय पक्षियों का प्रतिनिधित्व वेदांतांगल स्थित पक्षी अभयारण्य करता है, जबकि अन्य वन्य प्राणियों को मुदुमलई स्थित आखेट अभयारण्य में देखा जा सकता है।

तमिलनाडु प्रदेश में कला और संस्कृति का भी बहुत महत्व है। भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम और गायन कर्नाटक संगीत दोनों का राज्य में व्यापक प्रचलन है। यद्यपि चित्रकला एवं मूर्तिकला कम विकसित है, फिर भी यहाँ पत्थर एवं कांस्य की मूर्तियाँ बनाने की कला की शिक्षा के लिए विद्यालय हैं। तमिल साहित्य ने तेजी से लघु कथाओं व उपन्यासों के पश्चिमी साहित्यिक स्वरूप को अपनाया है। सुब्रमण्यम सी भारती जो 1882 से 1921 तक रहे, वे पारंपरिक तमिल कविता को आधुनिक बनाने वाले प्रारंभिक कवियों में से एक थे। यहाँ 1940 के दशक से ही चलचित्र जन मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम बना हुआ है। यहाँ चलते फिरते और स्थायी दोनों प्रकार के सिनेमा घर हैं। भावात्मक और भव्य फिल्मों जिनमें प्रायः हल्का फुल्का संगीत और नृत्य होता है का निर्माण अधिकतर चेन्नई के आसपास स्थित स्टूडियो में होता है। कलाओं का भी तमिलनाडु में एक बड़ा इतिहास है। 580 ईसा के लगभग पांड्य शासक जो मंदिर निर्माण कला में निपुण थे शासन के प्रमुख हो गए और 150 सालों तक वे राज करते रहे। कांचीपुरम उनका प्रमुख केंद्र था। द्रविड़ स्थापत्य उस समय अपने चरम विकास पर था।

नौवीं सदी में चोल राजाओं का पुनः उदय हुआ। राजराज चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल के नेतृत्व में चोल शासन एशिया के प्रमुख साम्राज्यों में गिना जाता था। उनका साम्राज्य बंगाल तक फैल गया। राजेंद्र चोल की नौसेना ने बर्मा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा, मलई तथा लक्षद्वीप तक अधिकार कर लिया। चोल राजाओं ने भुवन यानी मंदिर निर्माण में प्रवीणता हासिल कर ली। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इसका सुंदरतम उदाहरण है। चौथवीं सदी के आरंभ में पांड्य फिर सत्ता में आ गए, किंतु अधिक दिनों तक सत्ता में रह ना सके। उन्हें उत्तर के मुस्लिम खिलजी शासकों ने हरा दिया था, पर उसके बाद मुसलमानों ने भी धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिससे 14वीं शताब्दी के मध्य में बहमनी सुल्तान कायम हुई। लगभग उसी समय विजयनगर साम्राज्य ने भी तेजी से अपनी स्थिति मजबूत बना ली और समूचे दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। शताब्दी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य दक्षिण की सर्वोच्च शक्ति, किंतु 1564 में तालिकोटा की लड़ाई में दक्षिण के सुल्तानों की सामूहिक फौज से वह पराजित हो गया। तालिकोटा के युद्ध के बाद कुछ समय तक स्थिति अस्पष्ट रही, लेकिन इस बीच यूरोप के व्यापारी अपने व्यापारिक हितों के लिए दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे थे। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के लोग एक के बाद एक जल्दी जल्दी आए और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए, जिन्हें उन दिनों फैक्ट्रीज कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम, जो अब आंध्र प्रदेश में है, वहां अपनी फैक्ट्री लगाई और धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय शासकों को आपस में लड़ाकर उनके क्षेत्र हथिया लिए। ब्रिटिश लोगों ने भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में अपनी बस्ती बसाई। उसके बाद सन 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, जिसमें दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्से शामिल थे। बाद में संयुक्त मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया गया और वर्तमान तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में आया। 16वीं सदी के मध्य में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात कुछ पुराने मंदिरों का पुनः निर्माण किया गया। 1670 तक राज्य का लगभग संपूर्ण क्षेत्र मराठों के अधिकार में आ गया, पर मराठे अधिक दिनों तक शासन में नहीं रह सके। इसके 50 सालों के बाद मैसूर स्वतंत्र हो गया। इसके अलावा दक्षिण के राज्य भी स्वतंत्र हो गए। सन 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासन में आ गया था। तमिल सभ्यता विश्व की पुरातनम सभ्यताओं में से एक है। तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषा है और इसे जनक भाषा का दर्जा भी मिला। तमिल भाषा का इतिहास काफी प्राचीन है, जिसका परिवर्तित रूप आज सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है।

तंजावुर के भित्ति चित्र, भरतनाट्यम, मंदिर निर्माण तथा अन्य स्थापत्य कलाएं हैं। संत कवि तिरुवल्लूर का तिरुक्करल प्राचीन तमिल का प्रसिद्ध ग्रंथ है तथा तमिल का विकास 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी तेजी से हुआ। तमिलनाडु हस्तशिल्प कला में समृद्ध है, जिसमें हथकरघे का रेशम, धातु की मूर्तियां, चमड़े का काम, तांबा, पीतल और कांसे की वस्तुएं, लकड़ी का काम, ताड़पत्र का काम और बेंत का सामान प्रमुख हैं। कला के साथ साथ जो बात ज़रूरी है वो है शिक्षा, तो एक नज़र यहाँ के शिक्षा क्षेत्र पर भी डालते हैं। यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च विद्यालय और कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों साथ साथ चिकित्सा महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थाएं तथा औद्योगिक परीक्षण संस्थाएं हैं। तमिलनाडु में 21 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, चिदंबरम में अन्नामलई विश्वविद्यालय, कोयंबतूर में भरतियार विश्वविद्यालय, तिरुचनापल्ली में भारतीदासन विश्वविद्यालय, मदुरई में मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, कोडैकनाल में मदर टेरेसा वीनस विश्वविद्यालय, सेलम में पेरियार विश्वविद्यालय और तंजावुर में तमिल विश्वविद्यालय शामिल हैं। चेन्नई स्थित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और गांधी ग्राम स्थित गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जो क्रमशः हिंदी भाषा और महात्मा गांधी की ग्रामीण उच्च शिक्षा की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में लगे हुए हैं।

चलिए पढ़ाई की बातें तो हो गई, अब जानते हैं तमिलनाडु को और करीब से। यहाँ की संस्कृति त्योहार सब कर रहे हैं आपका इंतजार। यहाँ हिंदू धार्मिक और सेवार्थ विभाग अपने अंतर्गत आने वाले 9300 से भी ज्यादा बड़े मंदिरों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, विशेषकर चिदंबरम, कांचीपुरम, तंजावुर और मदुरई सहित अधिकांश नगरों में गोपुरम यानी द्वार मीनार छाए हुए हैं। यहाँ के मंदिर उत्सव चक्र श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध रथ उत्सव है, जिसमें मूर्तियों से सज्जित रथों की शोभा यात्रा के साथ मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कराई जाती है। तमिलनाडु में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल। ये त्योहार फसल कटाई के समय जनवरी माह में किसान अपनी अच्छी फसल के लिए आभार प्रकट करने हेतु मनाते हैं। पोंगल के बाद दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जल्लीकट्टू, जिसमें तमिलनाडु शैली की सांडों की लड़ाई होती है, मनाया जाता है। तमिलनाडु में अलंगनालूर जल्लीकट्टू के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जबकि चिट्टीराई मदुरई का लोकप्रिय त्योहार है। यह पांड्य राजकुमारी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के अलौकिक परिणय बंधन का स्मृति में मनाया जाता है। तमिल महीने आदि के 18वें दिन नदियों के किनारे आदिपेरुकु पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही नई फसल की बुआई से संबंधित काम भी शुरू हो जाता है। नृत्य महोत्सव मामल्लापुरम भी यहाँ का एक अद्भुत महोत्सव है। समुद्र तट से लगे प्राचीन नगर मामल्लापुरम में पल्लव राजाओं द्वारा 13 शताब्दी पूर्व चट्टानों से काटकर बनाए गए स्तंभों का एक खुला मंच है, जिस पर लोक नृत्यों के अलावा नृत्य कला के सर्वश्रेष्ठ और सुविख्यात कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव में मंदिरों की नगरी चिदंबरम के निवासी सृष्टि के आदि नर्तक भगवान नटराज को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त महामहिम तमिलनाडु का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जो 12 वर्ष में एक बार होता है। यहाँ नवरात्र भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्र पर्व का शाब्दिक अर्थ नवरात्रियाँ हैं, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न रूपों में और अनोखे ढंग से मनाया जाता है। यह पर्व शक्ति, धन और ज्ञान के लिए देवी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए मनाया जाता है।

तमिलनाडु में घूमने के लिए भी कई सुंदर जगह मौजूद है, जैसे कि चेन्नई, मामल्लापुरम, बुम्बुहार, कांचीपुरम, कुंभकोणम, धारावरम, चिदंबरम, तिरुवन्नामलई, श्रीरंगम, मधुरई, रामेश्वरम, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, तंजावूर, वेल्लोर, मधुरानंदम आदि। आप जब चाहे यहाँ आकर ऐसे ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी तमिलनाडु की यात्रा तो यहीं खत्म होती है, पर भारत का सफर अभी लंबा है, तो चलते रहिए हमारे साथ 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा, कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत।
5: दादी भोळी माझी आई,
2: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते, आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
7: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा विषय है महामृत्युंजय मंत्र। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मृत्यु के भय से बचने व लंबी आयु के लिए बहुत से लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, परंतु जीवन का शाश्वत सत्य यह है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य भावी है, अर्थात अटल है। जन्म और मरण जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म है तो मरण भी है, और मरण है तो जन्म भी है। इस जन्म मरण के चक्र से कोई आत्मा छूट नहीं सकती, अर्थात मोक्ष किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता, फिर चाहे वे संत आत्माएं हो, महात्माएं हो या देव आत्माएं। प्रश्न उठता है कि जब महामृत्युंजय मंत्र जपने वाले को भी एक दिन देह त्यागना ही है, तो इस मंत्र की सिद्धि क्या रही? इसका शब्दार्थ इस मंत्र का ही यही है कि हम त्रिनेत्र भगवान शिव को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाए, तो क्या केवल ये शब्द दोहराने से कोई मृत्यु पर विजय पा सकता है क्या? इस मंत्र की सिद्धि के लिए इसका भावार्थ समझना होगा। यह वंदना आलौकिकाल शिव परमात्मा को त्रिनेत्र कहकर की गई है। ज्ञान के सागर शिव परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का तीनों लोकों का ज्ञान देकर हम आत्माओं को भी त्रिनेत्री बनाते हैं। सदा पवित्रता की सुगंध से सुगंधित परमात्मा ज्ञान देकर हमारा अर्थात इस नश्वर देह में विराजमान चैतन्य अविनाशी आत्मा का पोषण करते हैं। जैसे फल पकने के बाद पेड़ की शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही हम आत्मा भी ज्ञान स्वरूप बनकर सहजता से इस देह से अलग हो जाए और पुनः वर्तमान कलियुग की नर्क में पुनर्जन्म में न आए। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है महामृत्युंजय मंत्र। जैसा कि हम सभी देखते हैं, ज्ञान के सागर हमारे परमात्मा द्वारा मिली ज्ञान की वो कौन सी बूंद है जो मनुष्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का काम करती है, जिससे मृत्यु का भय निकल जाता है और मनुष्य निर्भय बन जाता है। वो बूंद है आत्मा का सत्य ज्ञान। हम हैं अमर आत्मा, परंतु इस सत्य को भूल स्वयं को देह समझ बैठे हैं, जिस वजह से देह को छोड़ने का भय बना रहता है। इसके साथ साथ जब तक मनुष्य स्वयं को देह समझता है, उसे मोहवश देह के प्रियजनों के देह त्याग तथा संसाधनों के खो जाने का भी भय रहता है। जब हम सत्य आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब मृत्यु के भय के साथ साथ अन्य अनेक प्रकार के भयों को भी जीत लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पवक न चैनम क्लेदयं त्यापो न शुष्यति मारुता। अर्थात इसका शब्दार्थ है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं और अग्नि जला नहीं सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। जो है ही अमर, उसे न कोई हिंसक औजार नुकसान पहुंचा सकते हैं और न बारूद या मिसाइल्स ही टुकड़े टुकड़े इसके कर सकते हैं। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप अजर अमर अविनाशी हूं। इस सत्यता में टिकने से आत्मा में शक्ति आ जाती है। अतः मृत्यु के भय को जीतने के लिए अपने सत्य आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास निरंतर चलता रहे। आत्मिक भान में स्थित होते ही हमें अपने भीतर सुख शांति पवित्रता की सुखद अनुभूति होनी शुरू हो जाती है और हम अधिकाधिक आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के कारण उसके लिए लालायित होते जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ जो है, हमारे ब्रह्मा कुमारी में आपसी मिलन के समय पर बोला जाने वाला शब्द ओम शांति केवल एक औपचारिकतापूर्ण शब्द नहीं है, परंतु ये वो महामृत्युंजय मंत्र है जो स्वयं कालों के काल महाकाल शिव परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति बोलते हुए यदि हम अपने शांत आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, तो यही है सच्चा सच्चा महामृत्युंजय मंत्र। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इसकी।

जाते हैं कि बिना बीमारी तकलीफ के हम देह त्याग कर दें। दुख दर्द के भय से छूटने के लिए ज्ञान सागर परमात्मा शिव ने आकर हमें कर्मों की गुह्य गति भी समझाई है, जिसके अनुसार जैसा करोगे वैसा पाओगे, आज नहीं तो कल पाओगे, इससे नहीं बच पाओगे। गलती होने पर भगवान हमें माफ कर सकता है, कोई व्यक्ति हमें माफ कर सकता है, हम खुद भी खुद को माफ कर सकते हैं, परंतु गलती हमें कभी नहीं माफ करती। पश्चाताप भी उस गलती की सजा कम नहीं कर सकता। गलती या पाप की सजा मिलके ही रहती है। जब पाप कर्म करने से नहीं डरे तो उसका फल भुगतने से भी नहीं डरना चाहिए। इस सत्य को स्वीकार करना ही है कि हमारे कर्मों का फल हमें सहर्ष स्वीकारना है। दुख दर्द से भी डरना नहीं है, बल्कि दुख दर्द का सामना करते हुए, पुण्य करते हुए अपना भविष्य सुरक्षित अर्थात दुख रहित बनाने का कर्तव्य करते रहने में तत्पर रहना है। श्रीमद् ही हमारे कर्मों को उच्च बनाती है और हमारे वर्तमान और भविष्य को सुखमय और दिव्य बनाती है। किसी बात से घबराए बिना श्रीमद् का हाथ थामे, इस रौरव नरक दुखधाम को पार करते चले। एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे पापों का खाता खत्म हो, पुण्यों का खाता आरंभ हो जाएगा, तब सुख हो और वहां पर सुखी सुख जीवन में आएगा। दुख दर्द या मृत्यु का भय भी हमें नहीं सताएगा। ऐसा सतयुग जल्दी ही आएगा। तब तक श्रीमद् पर चलते ओम शांति के महामृत्युंजय मंत्र में स्थित होकर परमात्मा की याद में निश्चिंत जीवन जीते चले। तो देखा आपने महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है, और इसे सही जानकारी इससे प्राप्त होती है हमें कि महामृत्युंजय मंत्र कब और कैसे बोलना है और उसकी स्थिति को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझना है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमें ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: का सफर आरजे सनी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आए हूं प्रोग्राम खाबों का सफर। जी हां, जहां पर होगी बहुत सारे ओल्ड मेलोडीज हम लोग सुनते हैं 50s 60s के, और उसमें भी खास अल्फाबेट से हम लोग सुनते हैं। तो आज हम लोग बातें करेंगे एस अल्फाबेट के बारे में। एस अल्फाबेट के सारे गाने आपको 60s के और 50s के सुनाने की कोशिश हमारी रहेगी। और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ रूना चौधरी जी हैं, जो एक अच्छे एक्टर और सिंगर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके पास कुछ गानों का कलेक्शन है एस वाले, जो 60s एंड 70s और 50s के हैं। तो हम उनसे भी कुछ गाने जरूर सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से आज के इस एपिसोड में खाबों के सफर में रूना जी का बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, मैं रूना जी बोल रही
2: हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: जी जी जी, बताइए अपने बारे में रूना जी, क्या करते हैं वैसे आप?
3: मैं तो बहुत कुछ करती हूँ। मैं गाना गाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर लेती हूँ, कभी आईने के सामने तो कभी थिएटर्स में तो कभी फिल्म में। नौकरी भी करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, कोशिश रखती
2: हूँ
3: कि मैं और ज्यादा अच्छा काम करूँ।
2: जी जी जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात, आपने अपने बारे में बताया। आपको बहुत सारी चीजें आप करते रहते हैं, गाते भी हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं और साथ ही साथ नौकरी भी कर रहे हैं। तो आइए, मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में खाबों के सफर में एक गाना जो आज हम लोग टारगेट किया है एस अल्फाबेट से गाने सुनाएंगे सभी, तो सबसे अच्छा गीत जो एस वाला है 60s में, वो गाना आपको बताना है और उसका थोड़ा सा लाइन हमें हमारे श्रोताओं को सुनाना है।
3: अच्छा, तो एक गाना है आशा जी का गाया हुआ है, सजना मेरा जिया राजा ने। म्यूजिक डायरेक्टर है सपन जगमोहन। मूवी है गुस्ताखी माफ, 1969 का मूवी है, बहुत पुराना है। एक दो लाइन गा के सुनाती हूँ।
2: जी जी जरूर।
3: एस शब्द से शुरू होता है,

जी रूना जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। गुस्ताखी माफ इस एल्बम का आपने गाना सुनाया, 1969 में ये रिलीज हुई था और ये उस समय काफी लोगों ने पसंद किया था इस फिल्म को। तो चलिए हम लोग इसी गाने को एंजॉय करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना गुस्ताखी माफ इस एल्बम से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इस फिल्म की जो कहानी थी वो थोड़ी सी अलग थी। भगवान की दया से एक महिला है, उन्हें दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं और आशा और सीमा नाम उनका रखा जाता है। लेकिन वो उनके नाम जैसा डिफरेंट है, लेकिन उनके चेहरे हाव भाव सब बिल्कुल एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन इस फिल्म के अंदर बताया गया था। और राजकुमार बेदी साहब ने इसे डायरेक्ट किया था और इसे लिखा था राजकुमार बेदी साहब ने ही। और इस फिल्म के कलाकार थे तनुजा, संजीव कुमार, सुजीत कुमार। तो चलिए अब फिल्म के बारे में तो ज्यादा नहीं बताएंगे, अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे गाने की तरफ। और फिर से एक बार रोना जी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: ये गाना है सजना साथ निभाना।
0: अच्छा,
1: सब ऐसे शुरू हो रहा है।
0: हाँ,
1: गाना है आशा जी का गाया हुआ है,
0: जी
1: मोहम्मद रफी, और म्यूजिक डायरेक्टर है रवि मुझे डोली का। ये भी 1969 का ईयर का गाना है।
0: जी जी जी

0: राह में छोड़े ना जाना।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। 1969 का डोली इस एल्बम का है। तो आइए, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के पुराने गाने जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मन को एक तसल्ली मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। गाने सुनकर एक अलग खुशी होती है। और इस फिल्म में जो विशेष रूप से कलाकार थे, राजेश खन्ना, बबीता, प्रेम चोपड़ा, ओम प्रकाश और नाजिमा, इस फिल्म में काम किया था। और फिल्म की कहानी थोड़ी सी अलग बताई गई है। और यहाँ पर अमर और आशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाता है कि आशा को जो है प्रेम से शादी करना पड़ता है। तो इस तरह की कुछ बातें बताई गई हैं और फिर बाद में फिल्म में हैप्पी एंडिंग भी दिखाया गया है। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हुए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ ये गीत की तरफ, डोली इस एल्बम का, जो बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसे रूना जी ने गा के भी सुनाया और आपको लगा होगा कि ये गाना किस तरह का है। तो आइए सीधे गाने की तरफ चलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं एस अल्फाबेट से। आइए, ख्वाबों के सफर में फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा, एक और गीत की तरफ ले चलता हूँ मैं। और गीतों का जो सिलसिला है, जिस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप के गीत सुनते हैं और एक अल्फाबेट से जब सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं शब्दों का जो मेल है वो हर गाने के साथ कहीं ना कहीं शब्द जो है जुड़ते जाता है। जैसे अभी आपने जो गाना सुना सजना साथ निभाना, और उसके पहले जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने गाना आपको सुनाया था, उसमें भी सजना शब्द जरूर था। तो चलिए, अब ऐसे जो हमने सुनाने की कोशिश की है पूरे इस एपिसोड में एस वाले गाने, तो कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रेजेडी आपको आएगा ही, आप भी उसको फील करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि रोना जी, अगला गाना कौन सा है हमारे सभी श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे?
2: ये गाना है समा है सुहाना, किशोर जी का गाया हुआ है। म्यूजिक डायरेक्टर है कल्याण जी आनंद जी, और मूवी का नाम है घर घर की कहानी 1970 की है गाना। तो मैं तो गा के सुनाती हूँ।
1: जी जी, जरूर सुनाइए।

0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, घर घर की कहानी इस एल्बम से, और उना जी ने भी थोड़ा गा के सुनाया और पूरा गाना आपने एंजॉय किया। और ये गाने में अपने आप में एक बहुत ही कशिश है, एक आकर्षण है। गाना सुनने के लिए आप जैसे ही तैयार हो जाते हो तो पूरा गाना सुने बगैर आप रह नहीं सकते, क्योंकि गाने के अंदर वो एक पकड़ है, एक मजबूती है। वही, ये पुराने गाने वैसे भी बहुत मजबूत होते हैं, अपने आप को यानी हम सभी को बांध के रखते हैं, जैसे ये गाना ने हमें बांध के रखा था। तो आइए, आप आगे बढ़ते हुए, मैं जैसे कि उस जिस फिल्म से ये गाना था, घर घर की कहानी, इसमें एक बहुत ही सिंपल स्टोरी थी। दो पड़ोसियों की कहानी बताई गई है, और एक जो पड़ोसी है वो बहुत ही गरीब है लेकिन ईमानदार है, दूसरा जो पड़ोसी है वो अमीर है लेकिन ईमानदार नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पर घर घर की कहानी में बताई गई थी, और इस फिल्म के कलाकार थे बलराज सहानी, राकेश रोशन, निरुपमा रॉय, शशिकला और ओम प्रकाश। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है गानों को सुनकर। अब मैं ले चलता हूँ आपको फिर से रुना जी की तरफ। रुना जी, बहुत ही अच्छे कलेक्शन, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुना रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास।
1: तो अभी जो गाना है ये भी आशा जी का गाया हुआ है और मोहम्मद रफी है, म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता, मूवी है साधना 1958 का, और भी पुराना देख तक तो 1968 70 का गा रहे थे। तो लाइन में कोशिश करती हूँ।

चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया। साधना इस एल्बम का है शायद, ये 1958 में रिलीज हुई थी। सुनील दत्त, वैजंती माला, लीला चिटनीस, राधा कृष्ण और मनमोहन कृष्णन पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। और ये एक प्रोफेसर की कहानी थी, और प्रोफेसर जो है अपने आप में कमाल का व्यक्ति रहते हैं। काफी रिश्ते उनके पास आते रहते शादी के लिए, लेकिन प्रोफेसर साहब का जो है किसी पर भी दिल नहीं आता। आखिरी में रजनी नाम की एक अनजान लड़की से उनका मोहब्बत होता है। तो इस तरह की ये कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए सीधे इस गाने की तरफ चलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा भी लग रहा है कार्यक्रम में। और जैसे कहते हैं कि जीवन जो है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन महान होना चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम जीवन में बहुत ज़्यादा जी भी लेते हैं लेकिन कोई महान कार्य नहीं करते हैं तो वो लंबा जीवन कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम बहुत कम जीते हैं लेकिन महान कार्य करके जाते हैं तो पूरी दुनिया हमें याद करती है। इसीलिए कहा गया है किसी खास व्यक्ति ने, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं, एस अक्षर वाले एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे साथ आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ रूना चौधरी जी हैं, जो बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शंस, बहुत ही खूबसूरत गाने आपके लिए लेकर आई हैं। तो फिर से एक बार उनका स्वागत करते हुए, अब कौन सा गाना है रूना जी आपके पास?
2: अभी जो गाना है वो भी एस से ही शुरू होता है, वो मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मूवी है परशमणि, 1963 ईयर का ये गाना है।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने पारस मनी इस एल्बम से सुना। रूना जी ने भी इसे बहुत ही अच्छी तरह से गा के आपको सुनाया था। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं इस गाने में एक पकड़ है, एक जो है दुआएं मिलती है। जब हम लोग एक दूसरे को दुआ देते हैं, सलामत रहो कहने का भाव यही है कि हम किसी अपने को दुआ दे रहे हैं, तो ये भाव इसमें दिखाया गया है। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। पारस मनी बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही और इस फिल्म के डायरेक्टर थे बाबूभाई मिस्त्री और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रंजीत स्टूडियोज ने इसका निर्माण किया था और इसके कलाकार थे महिपाल जी, अरुणा ईरानी, मनोहर देसाई, हेलन और जीवन कला, ये सारे लोग इसमें काम किया और बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म बनी थी। मैंने देखा कि काफ़ी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने इन फिल्मों को रिलीज़ होते हुए देखा था, उस समय ऐसा कहा जाता था फिल्म के पूरे हफ्ते दो हफ्ते तक जो है उन्हें टिकट नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय थिएटर्स भी कम होते थे और लोग ज़्यादा होते थे फिल्म देखने वाले, तो इस वजह से फिल्म देखना अगर उनको पहली शो देखना हो तो वो बड़ा मुश्किल होता था। तो दो तीन हफ्ते के बाद जब वो फिल्म कंटिन्यू चलती थी उसमें फिर जाके वो देख कर आते थे, तो ऐसा मैंने सुना उनसे। तो मुझे अभी पारस मनी नाम सुनते ही वो कहानी याद आ गई उनकी। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात हो रही है। आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गानों को और रूना जी जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी भी आवाज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, आप आगे बढ़ते हुए एक और गीत की तरफ मैं ले चलूँगा आप सभी को और उसके साथ साथ मैं कुछ बातें आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ। कभी कभी हमारे जीवन

0: अंदाज बदल जाता है थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन एक एनर्जी हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाती है और हम उसको एंजॉय करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से मैं अरुणा जी से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा। अगला जो गाना है आपके पास कौन सा है?
1: अभी मेरे पास जो एस सॉरी एस शब्द से जो गाना है वो है, सिंगर है सुधा मल्होत्रा, म्यूजिक है रोशन जी, मूवी है बाबर, 1960 का गाना है वो। एक लाइन गा के सुनाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ खास मेहमान रूना जी हैं, जिनसे हम लोग बहुत ही खूबसूरत गाने भी सुन रहे हैं और प्ले भी कर रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा आपको ये कॉम्बिनेशन, और एक ही अल्फाबेट के गाने आपको सुना रहे, तो ये भी अपने आप में एक कमाल का कॉम्बिनेशन।

0: नेशन एक कमाल का जो है एपिसोड में रौनक देता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो गाना आपने सुना बाबर 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी भारत में और फिल्मिस्तान प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी ने इसका प्रोड्यूस किया था और हेमंत गुप्ता साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। और इस फिल्म के जो सिलेक्टेड कास्टिंग किया गया था इसमें जो आजरा गजानन जागीरदार शोभा खोटे सोहन कपिला बद्री प्रसाद और जुगल किशोर के रेड्डी साहब और भी बहुत सारे सुलोचना चटर्जी रूप माला रूप लक्ष्मी और प्रताप पंकज इन सभी ने काम किया था। तो उस समय भी ये फिल्म बहुत ही हिट रही और लोगों ने इसे काफी पसंद किया था। एक अलग स्टोरी जो है इसमें बताई गई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ भी जो भी गीत हम लोग सुनते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, एक अलग एहसास है। बस जीवन भी एक एहसास ही है, आप उस एहसास को प्यार का एहसास से जी सकते हैं। कई लोग नफरत के एहसास से भी जिंदगी काट देते हैं, यानी जीते नहीं है लेकिन एहसास हो आपके पास, एक इंसानियत का हो, एक प्यार का हो, एक खुशी का हो, तो जीवन जीने का भी एक आनंद होना चाहिए। वरना जीवन तो सभी लोग जीते हैं लेकिन मानव जीवन मिला है तो उसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसे जानना जरूरी है। कहते हैं जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज और फिर से मैं रोना जी से जुड़ना चाहूंगा। रोना जी कैसे हैं आप?
1: बस रमेश जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: बस आपकी आवाज सुन के हम भी तो बहुत अच्छे हो गए,
1: और भी अच्छे रहे, खुश रहे।
0: जी अगला गाना कौन सा सुनाने वाले हैं आप?
1: ये जो इस लेटर से जो गाना है वो है लता जी ने गाया हुआ है, उसके गाया हुआ है। म्यूजिक डायरेक्टर है रोशन जी और मूवी का नाम है चित्रलेखा 1964 का। एक लाइन में गा के सुनाती हूँ, बहुत ही ओल्डी है पर बहुत ही प्यारा है।

0: बहुत ही पुराना है, हमने इतना हिस्सा इतना ही हमें गा पाई, और बाकी का तो आप सुनाई देंगे सभी को, और भी प्यारा है लता जी का गाया हुआ है, हमने
1: जी जी
0: कोशिश
1: बहुत
0: की
1: ही
0: थोड़ा बहुत एक लाइन गाने के लिए।
1: जी बहुत ही खूबसूरत गाना है, और ये फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर रही, चित्रलेखा जो 1964 में रिलीज हुई थी। और ये फिल्म भी अपने आप में एक अलग स्टोरी रही इसमें, और इस फिल्म के नाम से काफी आप देखेंगे कि रेलवे स्टॉल पे कुछ बुक्स भी हैं इस नाम से पब्लिश हुए हैं, अलग अलग भाषा में भी है, तो इसमें जो कहानियां होती हैं बहुत ही टची होती हैं। आइए अब फिल्म के बारे में बात करें, तो ये एक हिंदी भाषी फिल्म है और भगवती चरण वर्मा द्वारा ये फिल्म लिखी गई थी, और एक उपन्यास था चित्रलेखा, उसी उपन्यास पर आधारित ये फिल्म बनी। और फिल्म के मुख्य कलाकार जैसे अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और महमूद साहब ने काम किया है, और फिल्म के निर्देशन केदार शर्मा जी ने किया था। और इसी नाम से एक फिल्म 1941 में भी आई थी, और फिर उसके बाद ये फिल्म आई 1964 में, और इसी फिल्म का गाना जो है 64 वाला चित्रलेखा फिल्म का गाना अभी आपने सुना। तो आइए इस फिल्म के कलाकारों के बारे में भी हमने जाना, और कहानी थोड़ी सी ऐतिहासिक है, राजा महाराजाओं की जैसे कहानी होती है उस टाइप की थोड़ी सी जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में शिक्षा देने की कोशिश करती है। फिल्म भी एक इंसानियत के तौर पे हमें किस तरह से रहना है वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए अब मैं सीधे आपको गीत की तरफ ले चलता हूँ, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर भी पहुंच रहे हैं। और ऐसा कहते हैं, दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कई बार मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं और काफ़ी बार हम मीडिया में भी आते हैं, सोशल में भी रहते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची सेवा जो है दिखाने की नहीं होती है। आपको खुशी हो रहा है और सामने वाले को खुशी हो रहा है तो वो एक दूसरे का जो है एनर्जी रिसीव और गिव एंड टेक हो रही है, वहाँ पर हम दोनों भी चार्ज हो रहे हैं, दोनों भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को अच्छी बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सच्ची सेवा है। बाकी अगर हम लोग काम के मतलब से बात करके और फिर ख़त्म हो जाते हैं तो वो दिखावा है, उस पर ना जाइए। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से रोना जी से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा। हेलो, नमस्कार रोना जी, कैसे हैं आप?
1: बस नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बस आपकी आवाज सुन के और अच्छे हो गए, एवरग्रीन हो गए हम।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी आवाज भी अच्छा सभी को लग रहा है।
0: जी,
1: पता नहीं, मैं सभी को खुश थोड़ा सा एक दो लाइन गा के जो अच्छा लग रहा होगा सभी को।
0: जी, आप कौन सा गीत है आपके पास?
1: अभी जो गाना है वो एक गजल है, आशा जी का गाया हुआ है, म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम अली है, मूवी है मिराजे गजल। ये गाना तो मुझे याद नहीं है, बट ये गाना है, एस से शुरू होता है, सलोना सा सजन है, सिंगर है आशा जी का, आशा जी ने गाया है ये गाना, और म्यूजिक डायरेक्टर है गुलाम अली, और मूवी का नाम है मिराजे गजल। आशा जी का गाना है, सुनिए।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना जो है आपने याद कराया। ये गाना नहीं, गजल है जो आखिरी में हम लोग आपको सुनाएंगे, और एक एल्बम से है, मिराजे गजल नाम का एल्बम है, उस एल्बम में ये जो गजल है एस अक्षर से शुरू होता है, जिसे रूना जी ने बताया, सलोना सा साजन है और मैं हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत गजल है ये, साहिब अब्बास जी का लिखा हुआ है, आशा भोसले ने गाया है, गुलाम अली साहब ने संगीत से सवारा है। तो चलिए, मुझे लगता है एक गजल जो है एक मैसेज देता है हम सभी को, उस मैसेज को अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करते हैं। और आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि बस इतना ही, आगे फिर हम लोग कुछ इसी तरह के पुराने गाने लेकर आपके बीच आएंगे और आपको खुशी देने का प्रयास करते रहेंगे। आशा करता हूँ आप फील कर रहे होंगे खुशी। और आज के इस एपिसोड में रूना जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा गाना जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो उनके लिए भी ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी दुआएं। थैंक यू सो मच रोना जी।
1: थैंक यू सो मच।
0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और सभी श्रोताओं को ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खबागनी, खुश रहो और खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपको हम वराह नगर स्थित रामकृष्ण मठ की कहानी सुना रहे थे। सीखने सिखाने का दौर कितना कष्टप्रद था वह। उन दिनों की अनगिनत कहानियां विवेकानंद द्वारा रचित साहित्य उनके पात्रों तथा अन्य सन्यासियों के लिए संस्मरण के द्वारा हमें मालूम पड़ती हैं। आज हम उन दिनों की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सच्ची घटनाएं हमें सुदूर अतीत में घटी परिकथाओं सी लगती हैं। आइए उन्हीं दिनों में घटित कुछ और घटनाओं के बारे में जानें और यह कहानियां स्वामी विवेकानंद के चरित्र के विभिन्न पक्षों को उजागर करती हैं।
1: नरेंद्रनाथ उन दिनों अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ आश्रम में अध्ययन आदि करते तथा सुयोग और सुविधा के अनुसार लोक कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते। एक दिन बंगाली पुलिसकर्मी ने उन्हें अपने घर दिन के भोजन के लिए निमंत्रित किया। उस व्यक्ति के साथ पहले से ही नरेंद्रनाथ के घर के लोगों का परिचय था। वो पुलिसकर्मी अंग्रेज सरकार के गुप्तचर विभाग का सुपरिंटेंडेंट था। नरेंद्र ने वहां जाकर देखा कि वहां और भी कई लोग उपस्थित हैं। वो व्यक्ति काफी व्यस्त है। धीरे धीरे सबके चले जाने पर भोजन का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि उस व्यक्ति ने नरेंद्र से कहा,
2: हमें मालूम है आप सब साधु का चोला पहनकर उस मठ में क्यों अड्डा जमाए बैठे हैं।
3: जी, आप ये सब क्या कह रहे हैं?
2: हाँ, ठीक कह रहा हूँ मैं। और मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि आप ही उनके सरदार हैं।
3: देखिए, आपको गलत जानकारियाँ मिली हैं। हम सब रामकृष्ण देव के शिष्य हैं और उस मठ में रहकर रूखी सूखी खाकर समाज की सेवा करते हैं।
2: रहने दो, हमें सब खबर है। हमने बंकिम चंद का आनंद मठ पढ़ा है।
3: तो ये तो अच्छी बात है कि आप पढ़ते भी हैं।
2: बात को घुमाओ मत। अंग्रेज बहादुर को उस किताब से पता चला है कि कैसे सन्यासी बनकर मठों में रहकर लोग सशस्त्र विद्रोह को अंजाम देते हैं। इसलिए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो।
3: महाशय, आपने हमें निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया है और अब यहाँ सब अपमान सूचक बातें कर रहे हैं।
2: अपमान? मैं बिना सबूत के बात नहीं करता।
3: क्या सबूत है आपके पास?
2: आपके मोहल्ले वालों ने हमसे शिकायत की है कि कीर्तन भजन पाठ के बहाने आप जवान लड़कों को इकट्ठा करके उन्हें गुप्त मंत्रणा दे रहे हैं। उन्हें उकसा रहे हैं अंग्रेज बहादुर के विरुद्ध बगावत करने के लिए। उन्हें शस्त्र विद्या भी दी जा रही है।
3: शस्त्र विद्या? अरे, उन्हें तो गठीला शरीर बनाने के लिए कसरत करना सिखाया जाता है और आत्मरक्षा के लिए लाठी के पैंतरे सिखाए जाते हैं।
2: सुनिए, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। सीधे सीधे बता दीजिए कि वहाँ कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं।
3: आपको गलत फहमी हो रही है। आप खुद आकर देख सकते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है।
2: मुझे ना कुछ सुनना है और ना कुछ देखना है। मेरे पास अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं कि आप लोग संत्रासवादी हैं और अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।
3: देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ।
2: सुनिए, अंग्रेज बहादुर बड़े दयालु हैं। इतना सब करने के बाद भी वे आपको माफ करने के लिए तैयार हैं। बशर्ते
3: बशर्ते क्या?
2: आप अगर सब कुछ सच सच बता दें तो हम आपको कोई दंड नहीं देंगे। आपको सरकारी गवाह बना देंगे। आप अपने साथियों के नाम बता दीजिए।
3: आप मुझे खरीदना चाहते हैं?
2: देखिए, नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा। हम तो आपको एक मौका देना चाहते हैं। आपको हम छोड़ देंगे, संरक्षण भी देंगे। सोच लीजिए, आपको फायदा ही होगा।
3: झूठे आरोप, झूठे बहाने से मुझे बुलाकर आपने मेरे और मेरे साथियों के विरुद्ध प्रचुर आरोप लगाए हैं। यही आपका पेशा है। तथापि अपमान सहन करना ही मेरी शिक्षा है। मैं यदि अपराधी और षड्यंत्री होता तो आपके किसी गार्ड के आने के पहले ही मैं आपकी गर्दन मरोड़ देता और कोई कुछ नहीं कर पाता। वे सब बातें रहने दें, मैं आपको निर्विवाद छोड़े जाता हूँ।
1: साथ साथ दरवाजा खोलकर उन्होंने विदा ली। उस क्रुद्ध वीर मूर्ति के दर्शन से पुलिस अधिकारी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए।
0: सन्यासियों की कर्मशीलता केवल पठन पाठन तर्क विवेचना तक ही सीमित नहीं थी। एक और वस्तु का अंकुर उसी समय से दिखाई पड़ता था और वह था सेवा धर्म। उन दिनों भी स्वामी जी के उपदेशों से सन्यासीगण स्वयं न खाकर भी भूखे पीड़ित दरिद्र और विपदाग्रस्तों के प्राण प्रण में सेवा भाव और सहायता करते। उन लोगों में कोई कोई तो कुष्ठ के रोगी तक की सेवा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते थे।
1: मठ के गुरु गंभीर परिवेश और एकांतिक आध्यात्म साधना के बीच भी मुक्त मन और निर्दोष हास परिहास के लिए यथेष्ट अवसर था। रसरंग प्रेमी नरेंद्र नाथ अनन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी सबके पथ प्रदर्शक थे। इसके अतिरिक्त तारकनाथ, योगींद्र एवं दूसरे कोई कोई विचित्र कथा वार्ता एवं अद्भुत भाव भंगिमा और क्रिया कलापों के द्वारा हंसी का फव्वारा छोड़ते। लाटू ने उन दिनों की बातों का स्मरण कर भक्तों से कहा था, हम लोगों में से तारक दादा बड़े आमोद प्रिय थे, केवल लोगों की नकल करते और कहते, तुम लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, इसके लिए तुम लोग क्रोध नहीं करना भाई।
0: समय समय पर ग्रही भक्तगण भी मठ में उपस्थित होकर के श्री रामकृष्ण के जीवन के बारे में तथा धर्म संबंधी चर्चा किया करते थे। अनेक परिचित व्यक्ति भी कौतूहलवश कोई तर्क करने अथवा कोई परीक्षा लेने वराह नगर के मठ में आया करते थे। नरेंद्र के युक्तिपूर्ण उत्तर के सामने बहुधा वे ठहर नहीं सकते थे। साधारण व्यक्ति की अविशिष्ट समालोचना से भी बिना किसी प्रकार उत्तेजित हुए नरेंद्र कहते,
3: अरे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, लोग तो मानो कीड़े हैं, इसका मतलब जानते हो ना? कामिनी कंचन के कृतदास लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, उस पर ध्यान न देना। सन्यासियों को उससे विचलित होना उचित नहीं।
1: पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के ज्ञाता संदेहवादी नरेंद्र नाथ ने लगातार 6 वर्षों तक श्री गुरुदेव के साथ बहस की थी, पर आज उनमें ये कैसा अद्भुत परिवर्तन है। आज वे सन्यासी हैं, रामकृष्ण संघ के नेता हैं। उपनिषद या वेदांत को समझने के लिए उन्होंने किसी विशेष भाष्यकार का अनुसरण नहीं किया, करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। वे स्वाधीन भाव से शास्त्र चर्चा में प्रवृत्त हुए थे। उन्होंने बाद में कहा था,
3: विधाता की इच्छा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति का साथ प्राप्त हुआ था जो एक ओर जैसे घोर द्वैतवादी थे, दूसरी ओर ठीक वैसे ही घोर अद्वैतवादी थे। जो एक ओर जैसे परम भक्त थे, दूसरी ओर ठीक वैसे ही परम ज्ञानी थे। उनकी शिक्षा के फल से ही मैंने उपनिषद तथा अन्यान्य शास्त्रों को केवल आंखें बंद करके भाष्यकारों का अनुसरण करते हुए नहीं, वरन स्वाधीन भाव से उत्कृष्ट रूप से समझना सीखा है।
0: सन 1886 ईस्वी का दिसंबर महीना आया। श्री रामकृष्ण के अन्यतम बाल सन्यासी शिष्य स्वामी प्रेमानंद या बाबूराम घोष की माता के निमंत्रण पर एक दिन सन्यासी गण उनके गांव आठपुर में एकत्र हुए। रात में मकान के बाहर वाले प्रांगण में विराट धुनी जमा कर नरेंद्र गुरु भाइयों के साथ ध्यान में बैठे। थोड़ी देर बाद नरेंद्र ने आंखें खोली और ईसा मसीह के जीवन की चर्चा करने लगे। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का उस अपूर्व आत्मदान एवं पुनरुत्थान की कहानी की जीती जागती भाषा में वर्णन करते करते श्री रामकृष्ण का प्रसंग आया। ईसा और श्री रामकृष्ण ईसा के देह त्याग के साथ उनके शिष्य साधु पाल ने किसी दृढ़ विश्वास के साथ नर्व धर्म का प्रचार किया था। उत्साह और आवेग से अधीर नरेंद्र को मानो उन लोगों के जीवन का पथ उसी आलोक में दिख पड़ा था।
3: जब भारतवासी आदर्श को विभक्त, खंडित और आंशिक रूप में देखते हुए एक दूसरे के साथ विवाद में रत थे, जब विषमता और भेद के बीच सारे उच्च आदर्श नष्ट बुद्धि से विकृत और भ्रष्ट चरित्र के द्वारा कलंकित थे, ऐसे दिनों में श्री रामकृष्ण ने सभी समस्याओं की मीमांसा करते हुए सभी विभिन्न और विशिष्ट साधनाओं को एक समन्वय के बीच में यथा योग्य स्थान देकर आदर्श के परिपूर्ण रूप को अपने जीवन में प्रकटित किया। ये प्राचीन देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर नर रक्त से नहाकर जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, उस बहुप्रार्थित बहु इच्छित महासमन्वय के संदेश का प्रचार हम करेंगे। हम जो कि रामकृष्ण की ध्वजा वहन करने वाले सर्वत्यागी शिष्य हैं।
1: नरेंद्रनाथ धीरे धीरे पूरी तौर पर आश्रमवासी होते गए। गुरु भाइयों का साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें सिखाते पढ़ाते, व्यायाम सिखाते, सेवा धर्म का महत्व समझाते और एक विशिष्ट शिक्षा वे हमेशा देते, वो था नारी जाति का सम्मान करना, उनकी पूजा करना। कहते थे, अगर तुम नारी मात्र में अपनी माँ को देख सको तभी तुम्हारी साधना पूरी होगी। हमारे देश में समाज मन व्यथित होता था।
0: नारी के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा उन्हें बचपन में अपनी माँ से मिली थी। दत्त परिवार में किसी स्त्री की अवमानना नहीं होती थी। स्वयं भुवनेश्वरी देवी अत्यंत स्वाभिमानी महिला थी। अपने घर परिवार तथा परिचित जनों को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि घर में यदि स्त्रियों का अगर अपमान किया जाता है तो वह परिवार जल्दी ही नष्ट हो जाता है।
1: स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे गुण विरासत में मिले थे। उनके पिता और माता दोनों लिखते थे। पिता ने एक उपन्यास लिखा था और माता कविताएं लिखा करती थी। भुवनेश्वरी शिक्षित महिला थी। सिर्फ बंगला ही नहीं, अंग्रेजी का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने घर पर एक अंग्रेज महिला से अंग्रेजी सीखी थी और नरेंद्र सहित अपने दूसरी संतानों को भी अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। सिस्टर निवेदिता के साथ वे अंग्रेजी में बात भी करती थी।
0: सौभाग्यवती वे सुदर्शना होते हुए भी उन्हें पति की अकाल मृत्यु के बाद अत्यंत दुखी जीवन बिताना पड़ा था। गरीबी, मुकदमा, बड़ा बेटा नरेंद्र का संन्यास ग्रहण और एक बेटी के द्वारा आत्महत्या करना आदि दुखों को उन्हें झेलना पड़ा।
1: नरेंद्र नाथ अपनी माँ से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने कहा था, वे जो कुछ भी हैं, सब माँ के प्रभाव के कारण संभव हुआ। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो हम देखेंगे कि संसार के सभी महापुरुष मातृभक्त थे। शंकराचार्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वयं विवेकानंद इसके उदाहरण हैं।
0: जब वे अमेरिका गए तो यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि वहाँ लोग अपनी माँ को नाम लेकर पुकारते हैं। वे अमेरिका में अक्सर अपनी माँ की बातें किया करते थे। कहते थे कि उन्हें याददाश्त की क्षमता अपनी माँ से मिली है। भुवनेश्वरी एक बार सुनकर ही रामायण गा सकती थी। पुत्र को भी यह गुण मिला था।
1: विवेकानंद अमेरिका में एक और बात पर हैरान हो जाते थे। वहाँ किसी महिला को माँ कहलाना पसंद ना था। शायद उन्हें लगता था कि माँ कहने पर उनकी अधिक आयु का पता चल जाएगा। विवेकानंद इस बात का बड़ा ही आनंद लेते थे।
0: सिस्टर निवेदिता और दूसरी महिलाओं के द्वारा लिखे संस्मरणों से पता चलता है कि स्वामी जी अक्सर उन लोगों को अपनी माँ की बात बताते थे। इस महान माँ के महान बेटे को नमन करते हुए हम वराहनगर मठ के दिनों में वापस चलते हैं।
1: वराहनगर मठ में कुछ दिन बिताने के बाद सन्यासियों के हृदय में तीर्थ भ्रमण की आकांक्षा प्रबल हो उठी। दो एक सन्यासियों को ये आशंका हुई कि शायद बाहर जाने की आज्ञा ही ना मिले, इसलिए नरेंद्र नाथ को सूचित किए बिना ही वे मठ छोड़ तीर्थ भ्रमण को निकल पड़े। एक दिन नरेंद्र नाथ को किसी विशेष कारण से कलकत्ता जाना पड़ा। वहां से लौटकर उन्होंने सुना कि सांसारिक ज्ञान से वंचित बालक शारदा प्रसन्न माँ गुप्त रूप से मठ छोड़कर चले गए हैं। उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि ये बालक ना जाने किस विपत्ति में पड़ जाए। उन्होंने राखाल को बुलाकर कहा,
3: तुमने उसे जाने क्यों दिया? देखो राजा, मैं किसी विकट स्थिति में पड़ गया हूं। घर द्वार छोड़कर यहां आया और यहां एक नई माया का संसार जोड़ बैठा हूं। इस लड़के के लिए प्राण बड़े व्याकुल हो उठे हैं।
0: इसी समय एक व्यक्ति ने उनके हाथ में एक पत्र दिया। शारदा प्रसन्न जाते समय उसे लिखकर छोड़ गए थे। उसमें लिखा था, मैं पैदल वृंदावन जा रहा हूं। यहां पर रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। कौन जाने किस समय मन की गति बदल जाए। मैं बीच में माता पिता, घर सजन आदि के स्वप्न देखता हूं। मैं स्वप्न में मूर्तिमती माया द्वारा प्रलोभित हो रहा हूँ। मैंने काफी सहन किया है, यहाँ तक कि प्रबल आकर्षण के कारण मुझे 2 बार घर जाकर के स्वजनों से मिलना पड़ा है। अतः अब यहाँ रहना किसी भी तरह उचित नहीं है। माया के पंजे से छुटकारा पाने के लिए दूर देश में जाने के अलावा कोई गति नहीं है। पत्र पढ़कर स्वामी जी का मुखमंडल गंभीर हो गया। राखाल ने कहा, अब समझा शारदा क्यों मठ छोड़कर के चला गया है। उन्होंने चिंतित होकर उत्तर दिया, हाँ मैं भी वह अनुभव महसूस कर रहा हूं।
3: पर अब तो सभी तीर्थ भ्रमण के लिए आग्रह कर रहे हैं, इससे तो मठ का नाश ही हो जाएगा। ठीक है, मैं कौन हूं जो मेरा आदेश मानकर ये सदैव चले। नहीं, इस मधुर माया के बंधन को भी मुझे तोड़ डालना होगा।
1: शारदा प्रसन्न के पत्र ने उन्हें बड़ा चिंतित कर दिया। सोचने लगे कि सभी एक साथ रहकर धीरे धीरे माया के बंधन में बंधते जा रहे हैं। अतएव उन्होंने भी मठ छोड़कर दूर चले जाने का संकल्प कर लिया। अंत में एक दिन गुरु भाइयों के सारे अनुरोधों की उपेक्षा करते हुए और मन ही मन माँ को प्रणाम कर नरेंद्र नाथ परिव्राजक के वेश में मठ को छोड़कर निकल पड़े।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जब भी हम हमारे जीवन की ओर देखते हैं, कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिनके बगैर जीवन आगे बढ़ता ही नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये बातें हमने सुनी जरूर हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो शायद सबसे ज्यादा जरूरी रोटी ही होती है। भोजन, वो हमारे जीवन का केवल एक अभिन्न अंग ही नहीं, जीवन को चलाने वाला एक बहुत ही अभूतपूर्व और बेशकीमती साधन है। सारा जीवन चक्र, सारा कार्य व्यवहार, हमारा पूरा समाज ही भोजन के इर्द गिर्द घूमता है। और ये भोजन को उगाने वाले हमारे किसान, इसलिए उन्हें अन्नदाता कहा जाता है, उन्हें देवता का स्थान दिया गया है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में एक ऐसे ही अन्नदाता की कहानी लेकर आया, जिन्हें भारत सरकार ने हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इन्हें नवाजा गया है नव अनाज के नायक के टाइटल के साथ। आज हमारे बीच में है नेक राम शर्मा जी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में आज नेकराम शर्मा जी जुड़े हुए हैं। नेकराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है।
4: जी धन्यवाद, धन्यवाद जी।
3: नेकराम जी, आज आपने समय निकाला है, मुझे पता है कि आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं और जगह जगह आपको जाना पड़ता है, कई ऐसे जगहों पे भी आप जा रहे होते हैं जहाँ पर की कनेक्टिविटी नहीं होती है, फिर भी आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: धन्यवाद जी।
3: नेकराम जी, आपके नाम में ही नेक शब्द जुड़ा हुआ है और आपने नेकी का काम करना बहुत पहले से शुरू किया, थोड़ा आप अपने जर्नी के बारे में बताएं, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या आपको प्रमोट करता है, कौन सी वो बातें थी जिनकी वजह से आज आप जो काम कर रहे हैं उस पर आप टिके हुए हैं?
4: देखिए, मेरा तो ये सफर काफी लंबा, और मैं बेसिकली तो किसान का बेटा हूँ और किसानी हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है, वो बचपन से ही सीखते जाते हैं माँ बाप दादा दादी के साथ साथ। और मैं जब अपना पढ़ाई लिखाई फारी करने के बाद, मुझे शौक था अपना खेतीबाड़ी से सबसे ज़्यादा। मेरे माँ बाप चाहते थे मैं नौकरी करूँ, मगर मैंने नौकरी के लिए कुछ प्रयास भी किए, परंतु वो कहीं ना कहीं मैं उसमें सफल मैं नहीं रहा, जबकि बहुत मैंने जगह पर टॉप किया इंटरव्यू में, कई जगह भर्तियों में, मगर फिर भी मेरे हाथ नौकरी नहीं लगी। और उसी वक्त मुझे मन में लगा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे अपना काम करना है। तो इसके चलते मैंने अपना खेतीबाड़ी शुरू किया, और जिसमें कि मेरे माता पिता भी मुझे खुश नहीं थे कि मैं अपना खेतीबाड़ी करूं, और मैंने बहुत सारा सीजनली सब्जियां, अपना लोकल चीज़ें, वो सब तैयार करना शुरू किया। उसी बीच में मुझे एक घटना ऐसे हुई कि हमारे वहाँ, क्योंकि सभी लोग किसान हैं और वो पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, मगर पशु के लिए जो चारा है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मेरा जहाँ पर गांव है, गांव के दोनों तरफ जो है ना ऊपर को पहाड़ियाँ थी, और जिसमें जब बरसात में फ्लड आते, बारिश आती, तो पूरा फ्लड उसमें पत्थर, कंकर, मिट्टी सब नीचे खेतों तक पहुँचते हैं, और घरों में भी कई बार बड़ा डर रहता था, बड़े नाले आते बहुत। तो मैंने सोचा ये तो बहुत गड़बड़ है और हमें ये जंगलों को, इसको कुछ तरह से संरक्षण देना चाहिए। लोग कई बार ये आग्रह वन विभाग से भी करते रहे हैं, वन विभाग क्या करता है कि कोई चेकडैम लगाता है, तो मुझे लगा ये तो बहुत गलत है, अनसाइंटिफिक है कि चेकडैम बांधा नाले में, उसमें जो पक्के पत्थर है उनको तोड़ा और जाके कच्चा सा एक डैम बना दिया हल्का, और जब फ्लड आता है तो वो डैम समेत सब नीचे जाता है। मैंने कहा वो तो तरीका नहीं है, इसको टोटल कंजर्वेशन होना चाहिए। तो मैंने अपने गांव में ये मीटिंग करना शुरू किया। ये लगभग बात थी 1990 के आसपास में, दिसंबर जनवरी का महीना रहा इस बीच में। तो हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत होती है, और मैंने तब तत्काल क्या किया, लोगों के साथ मीटिंग करके खासकर महिलाओं को उसमें जोड़ा कि वो घास के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, महिलाओं को साथ मीटिंग किया और उनको काफी अच्छा भी लगा, मगर सवाल यही था कि उस वक्त विभाग, वन विभाग और लोगों के बीच में काफी सारा एक था, एक मैं खाई कहूँ कि वो विभाग जो है जनता को उसमें जो सहभागिता होना चाहिए, जो जोड़ना चाहिए, उनको उसके संसाधनों के प्रति जागरूक करना चाहिए, वो सब बात नहीं होती थी। सिर्फ बजट आता और उस बजट को खर्च करने के लिए गांव के लोगों को लेबर के रूप में लगाया जाता, और बस इतना सा ही रिश्ता था। और उसके बाद वो गांव के लोग भी परवाह नहीं करते, तारें टूट गई, पशु चले गए, सब वो सब चलता जाता था, तो बजट खत्म हो जाता। तो हम लोगों को बोला कोई तार बार नहीं लगानी, हम लोग सोशल फेंसिंग करेंगे और इसमें हम लोग कुछ वन महोत्सव करेंगे और वन देवता को हम लोग पूजा करेंगे, फ्लड ना आए करके फिर लोग जुड़े और वो जंगल में हमने गतिविधि करना शुरू किया। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये कैसे हो सकता है ऐसा, वो तो वन विभाग करेगा, ये जंगल तो वन विभाग के हैं। हमने कहा वन विभाग नौकरी करता है, वो 2 साल होगा, 1 साल होगा गार्ड वहां पर, उसके बाद वो दूसरी जगह जाएगा, लोग गांव के लोग परमानेंट है, तो हमें अपना समस्या को जो है ना खुद उसको निपटारा करना है, वन विभाग हमारी मदद करे जो भी वो कर सकता है। तो हमने दूसरी तीसरी मीटिंग में वन विभाग के गार्ड को भी बुलाया, परंतु वो भी हमारे से बहुत खुश नहीं थे, तो कहते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये जंगल में ऐसे नहीं कर सकते, वो तो सरकार का है और हम लोग उस पर करेंगे। हमने कहा हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और तुम भी उसको बचाने का प्रयास ही करते हैं, जब हम और आप मिल करके ये सब करेंगे तो सफलता मिलेगी ना। तो ऐसे करके अभी उनको, क्योंकि उनके बड़े ऑफिसर जब तक ना बोले तो छोटे वाला मदद नहीं करता, तो मैंने जाकर के वहां के जो DF होते उनसे बात करी, उनको भी लगा कि लोग कैसे कर सकते हैं, लोग तो जंगल में चोरी करते हैं, वो तो नुकसान करते हैं। हमने कहा नहीं, लोग नुकसान इसलिए करते हैं कि उसमें उनका भागीदारी नहीं है, जिस दिन वो खुद पेड़ लगाएंगे बिना पैसे के लगाएंगे उसमें, और आप पेड़ मुहैया कराओ, हमें दिहाड़ी नहीं चाहिए, वो जंगल हमारा है और उसमें हमारी जरूरत के पौधे लगाइए, घास के पौधे लगाइए, उसमें बहुत सारा जो वाइल्ड लाइफ के लिए हम लोग उसमें लगाएंगे, कुछ पौधे लगाएंगे, ऐसा करके करेंगे। तो उनको कुछ समझ आया तब जाके थोड़ा विभाग भी जुट गया। और ऐसा करते हुए
3: ये जो आपने कहानी बताई ना, यहाँ पर मुझे आपको रोक करके ये जानने का और ज्यादा मन कर रहा है कि जो आपने ये बात कही कि भाई जब तक लोगों को अपनी भागीदारीता नहीं दिखती किसी प्रयास में, जब तक लोगों को उसमें उनका फायदा नहीं दिखता किसी प्रयास में, तब तक उनको उस चीज के साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तो वन विभाग वालों को तो चलो फिर भी समझाना आसान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो उसी विषय से जुड़े हुए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझते होंगे। लेकिन गांव वालों को ऐसा नहीं लगता कि ये किन क्या बातें कर रहे हो भाई, हम चाहते हैं पैसा कमाना, धन कमाना, आप कहाँ हमसे मुफ्त में पौधे लगवा रहे हो। तो वो जो मानसिकता है गांव वालों का, उसको तोड़ने में आपको क्या मेहनत लगा?
4: देखिए, जो गांव के लोग हैं, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर का मेरे पास अनुभव है, लोग वनों को देवता मानते थे, लोग जगह जगह पौधे लगाते हैं, बैठक स्थल है वहां पौधे लगाते हैं, पानी देते हैं, बचाते हैं, मगर जंगल में वो इसलिए नहीं लगाते कि जंगल में जो वन विभाग का जो आदमी होता है फॉरेस्ट गार्ड, वो पूरा पुलिस की तरह डंडा लेकर के खड़ा होता है, और वहां क्या होता है कि जो हमारी जरूरतें हैं जंगल से, उसके लिए वो क्या होता था कि वो रोकते थे हमारी जरूरतें, जंगल हमारा है। जब तक वो सारी चीज, वो विभाग से पहले लोगों में बहुत सारी यहाँ की कथाएं हैं कि लोग वृक्ष, फलदार वृक्ष नहीं काटते थे, लोग जहाँ 2-3 पेड़ हैं उसमें से पेड़ नहीं काटते थे, जंगल में अकेला पेड़ नहीं होना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे गीत हैं लोगों के प्रचलित हैं यहाँ, और जंगल पेड़ पौधे का लोग बहुत पूजा करते थे। मगर विभाग के आने के बाद, वो विभाग के साथ जब वो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहा, सहभागिता नहीं कि हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे लिए मददगार हैं, तो ये सब ना हो करके, तो जो जंगल वाला जो पार्ट है उसमें वो नुकसान कर सकते थे, मगर वहीं दूसरी तरफ अपनी जमीन में, अपनी घासनियों में बड़े अच्छे ढंग से पौधों का लॉपिंग करना, पौधों को बचाना, उनकी रक्षा करना। तो ये धीरे धीरे हिमाचल सरकार को भी समझ आया और कुछ महीने के बाद यहाँ शुरुआत हुई हमारे वन लगाओ रोजी कमाओ योजना की, भाई जंगल तुम पौधे लगाओ पैसा भी बनेगा तुम्हारे को। तो उसमें बहुत सारी सफलता मिली। 1990 के आसपास में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक कार्यक्रम आया और उसमें लोगों को रोजगार भी और लोगों को बोला कि इससे जो भी उत्पाद होगा वो सब तुम्हारा है। तो हम लोगों ने भी जंगल में बहुत सारा आंवला, दाड़ू, हरड़, भेड़ा, ये नाना प्रकार के पौधे, घास के पौधे वो लगाए। ये सब जब लोगों ने देखा कि ये हमारा इनकम का सोर्स है, तब लोग जंगल में जो जाते एक दिन वन महोत्सव मनाते, सीड सोइंग करते, इतना ही समय लगना, ज्यादा समय नहीं, उनको पता हो गया कि वो हमारा इनकम का एक सोर्स बन रहा है। उसमें जो ये दाड़ू है, दाड़िम अनारदाना, वो कई जगह पे हमारे लोग हजारों रुपया कमाते हैं वो दाड़ू अनारदाना बना करके, आंवला बेच करके। तो ये सब जंगल में है, तो वो उसको वो अपनी संपत्ति जब मानेंगे तो उसमें वो मदद करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, आज ये स्थिति है, अगर जंगल में कोई आग लगाता है, वैसे तो डर के मारे कोई लगा नहीं सकता, जंगल में कोई जो है ना ग्रीन फैलिंग नहीं कर सकता, वो गार्ड के डर से नहीं, लोगों का डर है कि कोई मुझे देख लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो डर लोगों का होना चाहिए, विभाग का डर नहीं होना चाहिए। तो ये जो चेक है गांव के अंदर आ गया, अब अगर जंगल में आग भी लगती हो तो लोग तुरंत जाकर के उसको बुझा भी देते हैं। परंतु वही थोड़ा सा एक सवाल होता है जो विभाग है उस पर, कि जो समय रहते विभाग को जो कार्रवाई करनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम, वो सब नहीं हो पाता है, वहां बहुत कमी है विभाग की। और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जंगलों में आग लगती है और जब आग लगती है तब जाकर के विभाग जाकर के बोलेगा कि अब आग बुझाने, मगर वो सब काम तो उससे पहले होना चाहिए। पंचायतों को जिम्मेवारी दें, उनको चिट्ठी जाए, कुछ अवेयरनेस का कार्यक्रम हो, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है मगर वो कहीं दिखता नहीं है। तो इस तरह से फिर लोगों को भी लगता है कि वो अपना गांव के पास का जंगल तो बचा देते हैं मगर जो बाहर है कहीं पर वहां के लिए फिर उतना ध्यान नहीं रखते। जी
3: जी, मतलब ये जो कहानी आपने बताई, मैं समझता हूँ केवल हिमाचल की कहानी नहीं होगी, ये और भी पहाड़ी इलाकों की कहानी हो सकती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: लेकिन भाई साहब, मुझे ये भी जानना था कि जैसे जो रास्ते आपने अपनाए या हिमाचल के लोगों ने अपनाए या सरकार की भी जो प्रेरणा मिली, मदद मिली आपको इस चीज को करने के, जैसे आपने कहा कि भाई एक अच्छा पार्टनरशिप तैयार हुआ, क्या आपको लगता है सेम चीजें दूसरे जगह की पहाड़ियों पर भी किया जा सकता है? क्योंकि मैं खुद माउंट आबू से जुड़ा हूँ, रेडियो मधुबन माउंट आबू में है, यहाँ पर भी हमारे आसपास में कुछ ऐसा ही वातावरण है कि पेड़ जो है पहाड़ियों पे कोई लगाता नहीं है।
4: हमारा जो बातचीत करने का ढंग है वो एक बार हमें ये समझना पड़ेगा कि गांव के लोगों का जरूरतें क्या है, उनको जंगल से क्या कोई उनको आवश्यकता है, उनकी क्या निर्भरता उस जंगल पे है। तीसरी बात यह है कि वो सब लोगों को कुछ मालूम भी है कुछ नहीं भी है। एक गांव की एकता जो इस बात के लिए सोचे कि ये सारा जो क्लोरोफिल है हरियाली, ये जंगल से आती है, ये ऑक्सीजन है ये जंगल से आता है, ये अच्छा सा वातावरण ये जंगल से होता है, तो सेहत के लिए वो अच्छा है। तो हम लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, मुझे 1995 के बाद बहुत जगह विभाग के बड़े अधिकारियों ने बुलाया और बड़े बड़े कार्यक्रम हुए जिसमें हमने ये सारी बात लोगों के जहन में बिठाई और बहुत छोटे छोटे संगठन बनाए, वन समितियां बनाई और उनको उसकी जिम्मेवारी दी, उनको कुछ बजट दिया कि ये पैसा है तुम इससे जो भी करना है करो और ये जंगल को बचाओ। बहुत सारे महिला मंडल को हम लोगों ने विभाग को मोटिवेट किया और हमने कहा कि ये महिला ग्रुप है उसका ये जंगल है 10 हेक्टेयर, 15 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर है और इनको तुम कुछ मदद करो, 10,000, 20,000, 40,000 एक चेक दे दो मगर ये इतना जंगल बच जाएगा। उसमें प्लांटेशन करने का जरूरत नहीं है, वो नेचुरली उसमें बहुत सारे वहां की जो स्पीसीज है जो वहां पे होता है वो स्वतः ही उगाता है और उसमें कभी सूखा भी नहीं पड़ता और ये सब जगह संभव है। सवाल ये है कि हम किस तरह से गांव वालों की उनकी जो उनको कैसे समझते हैं पहले, और उसके बाद वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि हाँ हमें ये करना है, और वो एक अभियान के रूप में शुरू होता है कार्यक्रम, और उसमें विभाग आता है। हमारे यहाँ सब लोग धार्मिक सद्भावना के लोग हैं, हमारे जंगल हैं उसको देवता मानते हैं लोग, और उसको भगवान मानते हैं लोग, प्रकृति भगवान है। ऐसे करके कोई भी आदमी हरा पेड़ को काटने के लिए आगे नहीं आता, मगर जब कोई दुष्ट आदमी ऐसी हरकत करता हो, उसको अगर सजा नहीं मिले, विभाग सजा नहीं देता है, तो धीरे धीरे वो जो गलत प्रवृत्ति है वो फिर फैलती जाती है, उसको रोकना होता है। जिसके लिए जरूरी है एक गांव के लोगों का अच्छा सा संगठन, उसमें महिलाएं, हिमाचल प्रदेश में तो महिलाएं बहुत आगे आई हैं, और आप कभी भी आकर के यहाँ आप आए, आपका कोई ग्रुप आए यहाँ देख सकते हैं। हमारे यहाँ तुरंत 100-200 महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और बहुत सारी बातें होती है, और बरसात में और सर्दी के दिनों में वन महोत्सव की प्रक्रिया ऐसे शुरू होती है। वो जंगल में जाकर के हलवा बनाते हैं, देवता के नाम से वो चढ़ाते हैं, भगवान के नाम से, प्रकृति के नाम से वहाँ सबको प्रसाद बांटते हैं और जंगल को बचाने की कसम खाते हैं। और इस बार तो हम लोग, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, वैसे तो मैं पिछले 8-10 सालों से कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल पे, जहाँ भी कहीं हमारा वन महोत्सव होता है, हम लोग जंगल में जा करके जो हमारे मिलेट्स हैं, फिंगर मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, उसको महिलाओं के हाथों ही उसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ताकि वो उसमें उगेगा, वो चिड़िया का भोजन होगा, और उसके लाभ ये हैं कि चिड़िया किसान के सेब में नहीं आएगी, टमाटर के खेत में नहीं आएगी, और उसमें जंगल का ये लाभ है कि सॉइल कंजर्वेशन होगा और पशु के लिए चारा भी होगा। तो ये सब संभव है, ये हो सकता है। जी
3: आपने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया कि कैसे वन महोत्सव के द्वारा आपने सबके जीवन में परिवर्तन लाया, ना केवल इंसानों के लेकिन पशु पक्षियों के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन आपने एक सवाल भी रखा कि क्या मैं समय निकाल करके ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, कौन सी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। अगर ये हम पता लगा लें तो उस जगह की समस्या का समाधान करना सरल हो जाता है। तो साथियों, जो भी आज आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन यशस्वी भारत कार्यक्रम, नेकराम जी का ये मैसेज आप जरूर ध्यान रखिए कि आपके आसपास में जो भी गरीब लोग रहते हैं, जो भी लोग पहाड़ों में रह रहे हैं या आदिवासी चंचल एरिया में रहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, पहले उसको समझने का प्रयास करें, तभी मैं या आप उनको सही मदद पहुंचा पाएंगे या उन तक सही मदद पहुंचा पाएंगे। नेकराम जी, ये अभी आपने मिलेट्स की बात कही तो अब उसी विषय पे आते हैं। इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है मिलेट्स के लिए। मिलेट्स को हिंदी में जैसे जो हमारे मोटे अन्न होते हैं उनको हम मोटे अन्न कह देते हैं, बट एक्चुअली उसका बहुत सुंदर नाम रखा है भारत सरकार ने, श्री अन्न कहा जाता है, श्रेष्ठ अन्न कहा जाता है। तो ये श्री अन्न के बारे में थोड़ा सा आप बताएं।
4: देखिए, ये हमारे यहाँ जो ये सब जो पौष्टिक अनाज है, हम तो इसको बोलते हैं पौष्टिक अनाज, मूल अनाज, हमारे परंपरागत अनाज, ये मेरे जो समझ है, मैं तो पिछले 30 वर्षों से इन सब कामों में जुटा था। पहले गांव का जंगल बचाया, उसके बाद पूरा पंचायत का जंगल बचाया, फिर उसके बाद पूरा अपना जो हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है वहां पर हमने लगभग 70-80 महिलाओं के ग्रुप बनाए, उनके साथ भी ये सब जंगल वाला काम किया। उसके बाद शुरुआत हो गई थी 1991-92 में कि जो हमारे ये परंपरागत अनाज है, जो कभी 50 साल भी रखो तो उसमें कीड़ा नहीं लगता, वो कितना बलवान वो अनाज है, और वो जो है उसको कभी कोई खराबी नहीं आती, कोई कीड़ा नहीं खाता। और मैं ये समझा हूँ कि ये जो हमारे पौष्टिक अनाज हैं, ये सिर्फ हमारा भूख नहीं मिटाता, ये हमारे शरीर को वो पोषक तत्व देता है जिससे कि हमारे सारे रोग मिट जाते हैं, कोई रोग ही नहीं आता, और ये औषधि का काम करते हैं हमारे शरीर में। और हमारा भूख तो मिटाते ही मिटाते हैं, मगर हमें ये जरूर जानना चाहिए कि ये हमारे बीमारियों को भी मिटाते हैं और किसी भी रोग को आने नहीं देते। रोग हो भी जाए तो भी उसको खत्म कर देते हैं। ये जो श्री अन्न है, मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस बात के लिए। और क्योंकि इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हो रहा है, मुझे तो अति प्रसन्नता है इस बात की। और इसी साल ही मुझे ये सब सम्मान भी मिला, पद्मश्री से मुझे सम्मानित किया गया। और क्योंकि मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे स्टेटों में भी जा करके कई जगह कई संस्थाओं को मैं इसके बारे में ट्रेनिंग देता था कि ये खाएं और ये उगाएं, इसके बहुत बड़े लाभ हैं। एक तो ये रेनफेड एरिया में होगा, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, पानी आ भी जाए तो भी नुकसान नहीं है। दूसरा, ये मिक्स क्रॉप के रूप में होते हैं, इसमें 9 तरह के अनाज का जो मैंने बात कही उसमें बहुत सारे इसमें अनाज होते हैं, कुछ इसमें दालें होती हैं जो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, कुछ इसमें तिलहनी चीज़ें लगती हैं, तो वो भी हमारा अपने रसोई की जरूरत को पूरा करता है। तो इस तरह से 9 अनाज खेती हमारा खरीफ में और 9 अनाज खेती हमारा रबी में, इस तरह से साल में 18 तरह के जो अनाज हैं वो हमारे रसोई में आता है और हमारे शरीर के सारा कोई भी डेफिशिएंसी है वो नहीं होती फिर, क्योंकि वो जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो इन 18 तरह के अनाजों में होता है। तो ये 2 सीजन हमारे यहाँ होते हैं, रबी और खरीफ। और इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि एक तो ये मिश्रित रूप में खेतों में उगते हैं, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं करते और बल्कि कुछ जमीन में छोड़ जाते हैं। और तीसरा लाभ एक ये है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड और ये जो रसायन है उसमें डालने की आवश्यकता नहीं रहती, ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी पैदावार देते हैं और इससे जो हमारा पर्यावरण है उसको भी बहुत लाभ होता है। और सबसे बड़ा लाभ जो मैं समझ पाया हूँ आखिरी में, वो ये है कि वो हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से औषधि है। और ये जो आज हम हॉस्पिटल में भीड़ देख रहे हैं, अगर मेरे देश में सभी लोग ये श्री अन्न का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है ये हॉस्पिटल का भीड़ कुछ ही समय में ये बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम बीमारियां आएंगी, लोग स्वस्थ रहेंगे और लोग ये खाने से खाना भी कम पड़ेगा। क्योंकि सुबह अगर हम लोग 2 रोटी खा लेंगे तो लंच तक भूख नहीं रहेगी, हमको शाम को ही भूख आएगी, शरीर को पूरा पौष्टिकता प्रदान होगी और हमारा और भी खर्चा बचेगा, हमारा समय बचेगा, हम लोग मजबूत होंगे, ऐसा मेरा मानना है श्री अन्न के बारे में।
3: नेकराम जी, आपने कितनी सारी बेनिफिट्स हमें बताई, कितनी सारी पौष्टिकता की बात कहें या स्वास्थ्य की बात कहें या पर्यावरण को जो मदद मिलती है इन श्री अन्न को उगाने और खाने से, इन सब के बारे में आपने बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपको पर्सनल क्या बेनिफिट हुआ है, आपको व्यक्तिगत रूप में, क्या आप मिलेट्स का ही उपभोग करते हैं, क्या आप वही भोजन करते हैं, आपकी दिनचर्या का कैसा है मिलेट्स के साथ कनेक्शन?
4: देखिए, मैं आपको बताऊं बात कि मेरे घर में पिछले 15 साल से चीनी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, मेरे घर में पिछले 15 साल से चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं होता है। चाय बनाते हैं हम लोग, मिलेट टी बनाते हैं। आपको कभी मौका मिले, हमारा हिमाचल में तो ये चाय प्रसिद्ध हो गई, हमने काफी पहले से इसको शुरू किया था और कोविड के दौरान तो हमने बहुत सारे लोगों को इसको पिलाया, डॉक्टरों को पिलाया, हॉस्पिटल में जा करके हमने थर्मस में इसको डाल करके लोगों को बोला, डॉक्टरों को बोला ये पियो, ये बहुत सारा कैल्शियम इसके अंदर है, 344 मिलीग्राम कैल्शियम है प्रति 100 ग्राम, आप ये 2 कप पी लीजिए, आपको ब्रेकफास्ट करने का जरूरत नहीं है, ये आपके शरीर को पूरा एनर्जी देगा और आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और ये आपके शरीर को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसका बढ़ाएगा। मेरे घर में सुबह चाय बनती है तो ये सब जो हमारा अद्भुत अनाज है, हमारा जो फिंगर मिलेट बोलते हैं इसको, रागी बोलते हैं शायद आपके राजस्थान में, हमारे यहाँ मंडुआ बोलते हैं, कोदरा बोलते हैं, तो उसी का हम लोग बनाते हैं, ये सब चाय बनती है और बहुत घरों में आज सैकड़ों घरों में यही चाय बनना शुरू हो गई। और इससे ये सारे लाभ हैं कि हम लोग जो दूसरा चाय जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है, गैस्ट्रिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ये सब अनाज है श्री अन्न है ये खाने से हमें लाभ होगा, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग कूट करके डाल देते हैं और बाद में बिना छाने उसको पी लेते हैं। और मेरी उम्र 60 साल है, मैं आज भी लगभग 14 से 16 घंटे काम करता हूँ, लगातार सफर में रहता हूँ और

0: भगाने के लिए हमारे पास बहुत सारी औषधियां हैं, जिनको हम लोग जो काऊ यूरिन है उसमें उबाल करके उसका स्प्रे करते हैं। मेरा अपना आम का बगीचा है, लीची है, अनार है, सब्जियां लगाते हैं, उसमें सब ये हम लोग स्प्रे करते हैं और पौधों को बहुत ताकत मिलती है। और ये बेनिफिट हैं सभी जो मुझे इससे मिले हैं। जी,
1: आपने जितने सुंदर तरीके से चित्रण किया आपके बगीचे का, आपके अनाज का, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं अभी पहुंच जाऊं। और मुझे लगता है हमारे श्रोता साथियों को भी ऐसा मन करेगा कि कभी ना कभी हिमाचल जाए और नेकराम जी के बगीचों का जरूर दौरा करे।
0: मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी
1: नेकराम जी, ये जो एक आपने भी बात कही कि इसमें लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहता है आदि आदि, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना भी करूंगा कि आपके परिवार में इसी प्रकार से निरोग बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे आपके परिवार में। लेकिन ये चीज हर घर तक कैसे पहुंचे, हर घर तक, हर युवा पीढ़ी तक, बच्चों तक कैसे पहुंचे, जिनको आज पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग और ऐसे फास्ट फूड खाने की आदत पड़ गई हो, उनको श्री अन्न तक लाने के लिए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए हमें?
0: देखिए, एक तो ये चीज जो है ये सरकार का करने का काम है। ये हमारा बच्चों का पढ़ाई के सिलेबस में आना चाहिए, पहली बात। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर ये जो है उसमें प्रैक्टिकली रूप में इसका शिक्षा दी जानी चाहिए, उनमें क्यारियों में स्विंग होना चाहिए। मैं पिछले 15 सालों से इन सब कामों में लगा हूँ। मेरा कॉलेज में मैं जा करके वॉलंटियरली प्रिंसिपल से बात करके टीचर्स को, लेक्चरर को, बच्चों को ये सब बातें करता कि कैंसर क्यों हो रहा है, हमारा डायबिटीज का लेवल यहाँ भी बहुत बढ़ रहा है हिमाचल में, डायबिटीज क्यों हो रहा है। तो मैं बारीकी से जो पूरी तरह से ये साइंटिफिक है वो मैं बच्चों को बताता हूँ। उसमें बहुत सारे जो हमारे टीचर्स लोग हैं उन्होंने इस जो श्री अन्न है उसको उगाना शुरू किया। अभी इस साल बहुत सारे स्कूलों के अंदर अभी तक मैं ये श्री अन्न के जो बीज हैं मैं बांट चुका हूँ, 1-2 घंटा लेक्चर बच्चों के साथ कर चुका हूँ। मुझे अब बहुत सारे स्कूलों से बुलाते हैं, मॉर्निंग असेंबली में, दिन में बच्चों से बात होती है, और काफी स्कूलों में वो जो है हफ्ते में 2-3 दिन मिलेट खाना बनेगा, ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई है। और वो मुश्किल काम कुछ भी नहीं है, ये सब संभव है। सवाल यही है एक सरकार का आदेश हो जाए, ये करना है। हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें ये मैंडेटरी होना चाहिए। हमारा जो ICDS है, बच्चों को जो भोजन मिलता है छोटे बच्चों को, वहां पर ये होना चाहिए। क्योंकि वहां पर मुझे बहुत दुख होता है कि जो तेल हम लोग पिछले 10-15 सालों से छोड़ दिया है वो तेल ICDS में आ रहा है। जो चीजें, जो बिस्किट, जो मैदा वाला है हमने 15 साल पहले छोड़ दिया, वो छोटे बच्चों को उसमें दिया जा रहा है। ये सब बैन होना चाहिए धीरे धीरे। और उसमें हम लोग जब छोटे थे, हम लोग पढ़ते थे तो हमें चना दिया जाता था, तो चना को भून करके ऐसे करके स्कूल में आता था, दालें, कुछ दालें उनको रोस्ट करके स्कूल में दिया जाता था। तो ये सब हो सकता है और ये सरकार के करने का है काम। अगर सरकार इसको ऐसे करें, हम लोग तो अवेयरनेस ला सकते हैं जनता में, मगर सरकार अगर आदेश करे तो ये सारा पालन, ये सारी संस्थाएं। कल भी मेरा जो लेक्चर था उत्तराखंड स्टेट के, वहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी एक संस्था है, उन सबको मैंने ये सारी बात कही कि यूनिवर्सिटियों को भी आगे आना चाहिए, सरकार स्कूल में दो, और इस तरह से इसका पब्लिसिटी होगी और कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। मगर ये शिक्षा हमारी खत्म हो गई है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, परंतु मैंने जब तक पढ़ाई फारग की तो मैं सब पूरा गंद खाता रहा। बाद में जाकर के मुझे समाज में ये लोगों से कुछ प्रेरणा मिली, बुजुर्गों से, वो शिक्षा मेरी जिंदगी में काम आई और तब जाकर के मैं इधर को मोड़ा। और आज मेरी 60 साल मेरी उम्र है, मैं कभी थकता नहीं हूँ और मेरा जो ऊर्जा है वो कम नहीं है। जी
1: नेकराम जी, ये जो आपने बताया कि सरकार की तरफ से इस पे बहुत बड़ी पहल होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है घरों में जो सरकार है उनकी भी इसमें बहुत बड़ी पहल होनी चाहिए। और घरों का सरकार मतलब मैं हमारी माताओं बहनों के ओर ध्यान खींचवाना चाहता हूँ, क्योंकि घर का जो चूल्हा होता है, जो घर का इंजन होता है, वो माताओं बहनों के हाथ में होता है। और राशन पानी क्या आना है घर

0: में नहीं आना है, वो भी उनके हाथ में होता है। अगर उन तक ये बात पहुंच जाए कि ये खाने से आपका परिवार ज्यादा सेहतमंद रहेगा, बच्चे ज्यादा सेहतमंद रहेंगे, तो शायद ये चीज, ये परिवर्तन जल्दी हो सकता है, ज्यादा सरल तरीके से हो सकता है। जैसे आपने भी
1: बहुत
0: बताया कि
1: आसान है।
0: आपके गांव में किस प्रकार से महिलाओं ने मुहिम को समझा और उसमें योगदान दिया, मैं समझता हूँ ये भी जो है महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है अपने घर में स्वास्थ्य को वापस लाने का, आरोग्य को वापस लाने का।
1: इसमें देखो ना, बहुत आसान है। हमारे पास अच्छा सिस्टम है, हर जगह पे पंचायत है और वहां पे ग्राम सभाएं होती है ना, और वहां पे एक सरकारी आदमी भी होता है। अगर ये गवर्नमेंट का ऊपर से सख्ती से आदेश हो जाए, ये उसमें एजेंडे में हो कि भैया ये ग्राम सभा में ये एजेंडा भी रहेगा कि जो सीरियन है उसको खाने के क्या क्या लाभ है, ठीक है, वो सब जब वहां एजुकेशन दी जाएगी, बहुत सारे जो महिला मंडल हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, काफी सारे और FPO हैं, FPC हैं, कितनी सारे, हम लोग तो ये सब कर रहे हैं लगातार, परंतु जब ये कोई आदेश उसमें आ जाएंगे ना, एजेंडे के रूप में आ जाएंगे, तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, तो तब वो वहां पर पूरा इसका प्रचार। कई बार हमने ये देखा, मैं किसी पंचायत में गया, वहां ग्राम सभा है, हमने कहा भैया मुझे कुछ ये बात करनी है, कुछ सीट भी देने हैं, तो कई बार ये होता है कि अरे भैया नहीं, अभी हमारे एजेंडे में नहीं है, हमें तो ये जो एजेंडा है ये बात करनी है। तो इसलिए ये सब एजेंडे के अंदर आना चाहिए, और वहां से जब ये ऑर्डर होगा तो नीचे उनको फॉलो करना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है ये सारी चीजें। और मैंने कहा ना कि ये जो हमारा PDS है डिपो में, ये मिलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाए तो लोग खाएंगे इसको। अब तो लोग जागरूक हो रहे हैं और काफी सारी जागरूकता हमारे देश में आ गई है, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत सारा इस पर बात करते ही रहते हैं, और उससे काफी बदलाव आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बदलाव नहीं आएगा, वो आएगा, बस थोड़ा सा एक और धक्का देने की आवश्यकता है।
0: जी, ये जो आपने कहा कि जरूर बदलाव आएगा, ये उम्मीद मैं भी रखता हूँ और मैं समझता हूँ जो हमारे श्रोता साथी हैं वो भी रखते होंगे। लेकिन श्रोता साथियों, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि थोड़ा जानकारी हासिल करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा पूछें, और ये मिलेट्स का हमारे जीवन के साथ क्या ताल्लुक है इसको समझें। हो सकता है केवल आपके चुनाव मात्र से, आपके प्लेट की सजावट मात्र से आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे समाज में ला सकते हैं। नेकराम जी, मुझे आपसे ये जानना था, ये जो आपको टाइटल मिला है नव अनाज के नायक, इसमें ये नव अनाज कौन कौन से हैं, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल। इसमें देखो ये जो है पांच तो हमारे जो पॉजिटिव मिलेट हैं है ना, जिसमें आपका कोडो मिलेट है, और दूसरा रागी है, तीसरा आपका कंगनी है, चौथा आपका इसमें बार्नयार्ड मिलेट है, पांचवा आपका प्रोसो मिलेट है, और इसके अलावा दूसरे मिलेट में आपका जवार है, अब बाजरा है, उसके साथ साथ इसमें जो एमरेंथस है जिसको रामदाना कहते हैं वो हो गया, और उसके साथ में एक दाल, कोयसा दाल, जो उसमें सहफसल के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और कुछ एक इसमें तिलहन भी बीच में हम लगाएं। तो इस तरह से ये 8, 9, 10 इस तरह के अनाज हैं, उसमें से कोई एक आध मिस हो सकता है, परंतु 9 अनाजा हमारे यहाँ पर क्या होता था कि 9 तरह के अनाज के ग्रंथियां भी बनाते थे, और जब बच्चों का जन्मदिन होता था तो उस दिन भी उसका इस्तेमाल हुआ करता था, और ये हमारे हमारे कल्चर है, हमारे कल्चर के अंदर भी ये चीजें रही हैं।
0: इन 9 अनाजों में से आप जो इनको आप यूज भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, आपका सबसे प्रिय अनाज कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट?
1: सबसे प्रिय मेरा है बार्नयार्ड मिलेट, जिसको शिव चावल कहते हैं, मेरा सबसे फेवरेट है, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे मेरा फॉक्सटेल है,
0: ओके,
1: कांगनी,
0: लेकिन
1: जो
0: इन
1: पूरी तरह से
0: खासियत क्या है?
1: एंटीटॉक्सिन है,
0: ओके, फॉक्सटेल जो है
1: इसका खासियत
0: एंटीटॉक्सिन है।
1: जो शिव चावल है ये पूरी तरह से बहुत ही सुपाच्य है, और ये थोड़ा सा खाने से आदमी रच जाता है, और ये देर तक भूख नहीं लगती, इसका बहुत बड़ा ये लाभ है। और जो ये फॉक्सटेल मिलेट है, जिस वक्त चिकन पॉक्स जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो गांव में हमारे जो वैद्य लोग हैं इसी का ही मीठा भात गुड़ डाल करके खिलाते थे और तब बोलते थे कि अच्छा अब ये सारा बीमारी बाहर हो गई। तो हम लोग भी बचपन में जब बीमार होते थे तो बोलते थे शरीर में छोटे छोटे दाने बाहर आ गए, तो बोला बस अब ये नहीं मरेगा, अब ये बच जाएगा। तो बिस्तर पे अभी छिड़कते थे उसको, तो हमारे यहाँ इसको बहुत ज्यादा और स्टोर करके रखते थे पहले। और आज भी कई घरों में 50 साल पुराना फॉक्सटेल मिलेट है और फिंगर मिलेट है और एमरेंथस है, ये अभी भी बचे हुए हैं घरों में।
0: ये जानकर के ताज्जुब होता है कि 50 साल से भी रखा हुआ जो अनाज है उसको यूज किया जा सकता है। भारत देश की महिमा का क्या वर्णन करे समझ ही नहीं आता। ये वही देश है जहाँ पर ये श्री अन्न बाहुलता में एक समय पे उगाया जाता था, धीरे धीरे वैश्वीकरण और पश्चिम की देखा देखी हमने हमारे श्री अन्न को एकदम अनदेखा कर दिया और आज हम वापस से उस राह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेकराम जी, आप बहुत जगहों पे जाते हैं, आपने कहा आप कई राज्यों का भ्रमण भी करते हैं, लोगों से मिलते भी रहते हैं, आप अलग अलग भारत देश के प्रांतों में जाते हैं, लेकिन क्या कोई एक ऐसी बात है अलग अलग प्रांतों में जो भारत को भारत बनाती है, जो आपको लगता है कि ये बात जो है ना वो सारे देश में एक ही जैसी है, वो कौन सी एक बात होगी?
1: आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं भी इस बात को समझता हूँ। मैंने बहुत जगह जा जा करके एक चीज देखी कि हमारे यहाँ जो अपना जो हमारा संस्कृति रही है वो जो किसी तरह का बच्चों का बच्चे पैदा होना उसके बाद उनका कुछ करना क्या करना, गीत हैं अलग अलग तरह के और अलग अलग तरह का हमारा जो खाने का जो हमारा कल्चर रहा है और जो हमारे एग्रीकल्चर का जो सिस्टम रहा है वो आप चाहे आप कहीं भी चले, आप दक्षिण में चले जाओ तो दक्षिण में भी आपको रागी का जो है डोसा मिलेगा, हमारे हिमाचल में रागी का चिलड़ा मिलेगा, नाम अलग है मगर वो बात एक ही है। और इसके साथ साथ ये सारी चीजें हमारा कुछ हमारा धार्मिक संस्कृति के साथ भी जुड़ा हुआ है, हर जगह पे देवता हैं, देव गांव के हैं अपना, ऐसा कुछ भी मैंने देखा। और जब भी कोई अनाज पैदा होता है उसकी बालियां पहले अपने किसी भगवान को वहां पे उसको अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ पर मैंने देखा पूरा हिंदुस्तान भर में जो धरती माँ है उसका पूजा होती है सभी जगह, और जो हमारा गाय है गाय की पूजा होती है। ये मैंने चीजें बहुत सारी चीजें देखी और हमारा जो कुछ कल्चर है वो भले ही भाषा अलग है मगर वो जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी प्रेरणादायक उसमें बातें होती थी जो आज बहुत हद तक खत्म हो रही है वो नहीं है। और ये मैंने देखा बाहर भी जाकर के, हम नेपाल जाएं हम भूटान जाएं तो हम लोग वहां भी देखते हैं, वहां पर भी जो है ये सब जो हमारे देश के साथ मिलते जुलते राज्य देश हैं उनमें भी इसका प्रभाव है। और आपके मैं राजस्थान में मैं कई जगह गया हूँ तो मेरे बड़े मित्र भी हैं वहां से, तो हमने देखा कि वहां भी ये सब जो पूरा देश के अंदर जो हिमाचल में है कहीं ना कहीं वो चीजें राजस्थान के अंदर भी मानी जाती हैं। वैद्य लोग हैं तो राजस्थान में भी थे हिमाचल में भी थे, बीमारियों का इलाज ढूंढते थे तो वो सब सब जगह है। तो ये सारी चीजें जो है हमारा देश को एक करती हैं, ऐसा मेरा मानना है।
0: देश को एक करने की जो आपने बात कही कि संस्कृति, जीवन शैली, प्रकृति के प्रति जो सम्मान है, जो आदर है, सत्कार है, सद्भावना है, ये पूरे देश को एक करने वाला एक सूत्र आपको लगता है। लेकिन हमें लगता है देश को एक करने वाला एक और सूत्र है और वो है आपके जैसे ओजस्वी तेजस्वी देश के नागरिक जो पूरे देश की प्रगति के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आपके सामने समस्याएं भी बहुत आई होंगी जिनका आपने पहले भी हमारे साथ जिक्र किया। मुझे एक चीज आपसे ये जानना था कि जब भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया
1: जी,
0: तो क्या आपके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ गई, आपके लिए क्या जीवन थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गया है, या आपको अभी भी लगता है कि आप वही वाले पुराने नेकराम जी हैं? क्या है अभी के नेकराम जी में और तब के नेकराम जी में फर्क?
1: नहीं, फर्क कुछ नहीं आया, मैं वही नेकराम हूँ, मैं किसान हूँ और पूरा बिल्कुल धरती में ही हूँ। और जब मुझे ये सम्मान मिला, मैं तो इससे पहले भी बहुत मेरा ये शौक था कि मैं अपनी जिंदगी में एक तो ये जो हमारा जो मूल अनाज है पौष्टिक अनाज है इसको मैं कितना फैलाऊंगा वो मुझे बहुत खुशी थी। और मैं अपने जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, लोगों में ये भावना पैदा करूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका जो महत्व है वो मैं लोगों को ये सारी चीजें मैं बताऊं। और ये मेरा ऐसा कुछ था, परंतु जब से ये मुझे ये सम्मान जो ये अनाउंस हुआ है 25 जनवरी 2023 के शाम जब ये अनाउंस हुआ और मुझे हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है उनका फोन आया और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका फोन आया मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं जो काम कर रहा था और मेरे काम को सिर्फ मेरे कुछ ही जो गुरुजन लोग हैं वो बहुत मेरी वो करते थे, मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे कि तुम ठीक कर रहे हो, बाकी तो बहुत सारे लोग बोलते थे ये पागल है, ये ठीक नहीं है, वो हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है और दुनिया तो चांद पर जा रही है। जब मुझे ये सम्मान मिला इससे क्या हो गया, अभी मैं जनवरी जो 25 जनवरी से अभी मैं अपने घर में नहीं रह पा रहा हूँ। पहले अगर मैं 12 घंटे लगभग काम करता था तो अब मुझे 14-16 घंटे करना पड़ रहा है काम। और मैं कल भी रात तक हम लोग मीटिंग में थे, सुबह आज मैं 4 बजे जागा हूँ और 4 बजे से मैं चला हूँ और रास्ते में दो जगह दो ग्रुप के साथ हम लोग मीटिंग किया, लोगों को पता चल गया कि मैं इधर आया हूँ और तब उन्होंने कहा कि यहाँ भी आप रुकें और हमें कुछ आइडिया दें, तो वहाँ पर बात हुई और मेरे पास तो सीड मेरे साथ रहता है कुछ कुछ और दो दो मुट्ठी बीज हम लोग बांटते रहते हैं और वो मैंने दिया, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। तो बस यही बदलाव आया है कि मेरी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई और अब जो लोग ये श्री अन्न को अच्छा नहीं ज़्यादा मानते थे अब वो लोग भी बोलने लगे कि नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया है, हम भी उगाएंगे, क्योंकि अब वो एक मोर लग गई तो इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ।
0: आपकी तपस्या ने न केवल लोगों के विचारधारा में बदलाव लाया लेकिन पूरे विश्व के स्तर पे भी आज इस श्री अन्न का नाम हो रहा है, उसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, इसके लिए आपकी तपस्या बहुत मायने रखती है। लास्ट में मैं नेकराम जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका अगर कोई एक ऐसा मैसेज है, कोई एक ऐसा संदेश है जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे, क्या होगा वो एक संदेश?
1: जी मेरा संदेश यही है कि अभी हम लोग जहाँ पर पहुंचे हैं है ना, वो जो है हम लोग सही नहीं है, खतरा है, हमने पानी गंदा कर दिया, हमने हवा गंदी कर दी, मौसम में बदलाव ला दिया, हमने नेचर को हमने डैमेज कर दिया पूरी तरह से, और खाने की तो बात छोड़ो, हमारी थाली में जो भोजन आ रहा है वो अच्छा नहीं है, मगर हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। मेरा एक ही सुझाव है जो मेरे भाई लोग हैं और जो खास करके जो हमारा आने वाली पीढ़ी है कि बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, हम लोग नेचर से जुड़ें, हम लोग ये जो श्री अन्न है हमारे पौष्टिक अनाज हैं, हम इनको समझें, ये हमारे अनाज ही नहीं है ये हमारी संस्कृति भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा खान पान अच्छा होगा तो हम शारीरिक तौर से स्वस्थ होंगे, मानसिक तौर से भी स्वस्थ होंगे, अगर हमारा खान पान सही नहीं होगा तो हम शारीरिक तौर से भी बीमार और मानसिक तौर से भी हम लोग बीमार होंगे और हम देश की तरक्की में कोई योगदान नहीं दे सकते, इसलिए हमें वापिस आना पड़ेगा अपने जो परंपरागत हमारे जितनी भी चीजें थी जो हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके खोज खोज करके ये सारी बातें कही थी वो आज भी सत्य है, इसलिए हमें उन सब रास्तों पर चलना चाहिए, अपना जो हमारा प्रकृति है हमें उसको संवारना चाहिए और सबसे जरूरी है हमारा स्वास्थ्य, हम उसका ध्यान रखें, हमारा बड़ा महल ना हो, हम झोपड़ी में ही रहें मगर हमारे पेट में जो अन्न जाए वो पूरी तरह से सजीव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और इस तरफ सब लोग आगे मुड़ें और यही बहुत बड़ा हमारा शायद धर्म भी होना चाहिए कि हम सबको ये शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें और अच्छा जो अनाज है उसका बीज हम लोग बांटें, अच्छा पर्यावरण होगा तो हम लोग सब अच्छे होंगे, ये मेरा संदेश।
0: नेकराम जी आपने अपने संदेश में पूरे समाज को कवर कर लिया, हर एक के लिए कुछ ना कुछ इसमें था, किसानों के लिए था कि आप श्री अन्न उगाएं, तो दूसरे नागरिकों के लिए था कि श्री अन्न को अपनाएं, जैसे मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ये एक छोटा सा रेजोल्यूशन लिया है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन मैं केवल श्रीअन्न का उपभोग करूंगा, तो उससे मैंने देखा है कि मेरे पर्सनल लाइफ में भी चेंज आया है और ऐसा लगता है कि मैं देश की प्रगति में थोड़ा सा हाथ बटा रहा हूँ। श्रोता साथियों, बहुत बड़ा कुछ अगर नहीं कर सकते तो केवल अपने प्लेट में जो भोजन आ रहा है उसके चुनाव का बदलाव कीजिए। केवल श्रीअन्न को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा हिस्सा दीजिए। 7 दिन 3 बार आप भोजन करते हैं, उसमें से कोई 1 दिन डेडिकेट कर दीजिए श्रीअन्न के लिए। तब मैं समझूंगा कि आपने इस एपिसोड से बहुत बड़ा फायदा लिया है और देश के सेवा में भी ये आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। बाकी नेकराम जी, जाते जाते आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उसका जवाब देना होगा। तो आप तैयार हैं?
1: चलिए, ठीक है,
0: बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। श्री अन्न क्या है?
1: वो एक हमारा संस्कृति है।
0: वाह, श्री अन्न हमारी संस्कृति है, बहुत बढ़िया। सेवा क्या है?
1: सेवा हमारा धर्म है।
0: हिमाचल प्रदेश क्या है?
1: हिमाचल प्रदेश हमारा एक भौगोलिक इकाई के हिसाब से वो एक राज्य है और जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश।
0: और भारत क्या है आपके लिए?
1: बहुत सारा हमारा जो राज्य है उनको मिला करके हमारा एक भारत है और उसमें हम सब लोगों की शक्ल दिखती है।
0: तो आईना है आपके लिए भारत जिसमें हर एक की शक्ल दिखती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत सुंदर। शांति क्या है आपके लिए?
1: शांति एक वो चीज है जो जिसको पास आ जाए, मिल जाए, वो सबसे बड़ा धनवान मैं उसको मानता हूं।
0: तो शांति आपके लिए वैभव है, धन है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा चीज है, बहुत
0: कीमती है, बेशकीमती है,
1: कीमती है, बिल्कुल जी।
0: प्रकृति क्या है?
1: प्रकृति एक परमात्मा का एक रचा हुआ ऐसा एक भौगोलिक एक ऐसी इकाई है जिसमें भगवान ऊर्जा देते हैं, उसमें हरियाली आती है, वहीं से हमारे लिए फ्यूल आता है और हमारी गाड़ी चलती है, वो प्रकृति।
0: तो इसका मतलब प्रकृति आपके लिए परमात्मा का दिया वो तोहफा है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आखिरी सवाल आपसे, नेकराम कौन है?
1: ये तो मेरा एक नाम है जिससे मुझे जाना जाता है, परंतु ये सब ईश्वर का ही एक, मैं छोटा सा कण हूँ, एक अंश हूँ और मुझे वहीं जाके वापिस मिलना है। नाम तो सिर्फ मेरा इस मृत्यु लोक में एक मेरे पहचान के लिए नाम है मेरा, ऐसा मेरा मानना है।
0: नेकराम जी, आपने बहुत आध्यात्मिक रीति से अपने बारे में बताया कि आप एक अविनाशी सत्ता हैं जिसपे नाम तो केवल टेम्पररी लगाया गया है, इसी नाम पद पदवी इनके ऊपर आपका इतना ध्यान नहीं जितना आपका ध्यान आपकी सेवा पर है, आपके कर्तव्य पर है। ये मैसेज आपने जो हमारे सभी श्रोताओं को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेकराम जी। मैं समझता हूँ कि हमारे सभी श्रोता साथी आज बहुत खुद को धनवान समझ रहे होंगे कि नेकराम जी ने अपने कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला।
1: आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि ये सब जो मुझे समझ है ये सब आप जैसे बड़ों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है और मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ और ये सब ईश्वर की कृपा है। आप सब जो बड़े लोगों का एक सहयोग है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद है तो ही मैं हूँ, अदरवाइज मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। श्रोता साथियों, अब तक आप सुन रहे थे एक बहुत सुंदर बातचीत नेकराम शर्मा जी, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं और उन्हें कहा जाता है नव अनाज के नायक। नव अनाज के नायक ने आज हम सभी को नायक बनने का एक मौका दिया है। छोटे छोटे बदलाव करके हमारे जीवन में, हमारे प्लेट में कौन सा भोजन आ रहा है उसका चुनाव करके हम भी देश के आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभा सकते हैं। मिलेट्स को अपना करके, श्री अन्न को अपना करके हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, सेहत को सुधार सकते हैं। नेकराम जी की ये उम्मीद, ये आशा और उनका ये परिश्रम मैं समझता हूँ आपके दिल तक पहुँच रहा है। यशस्वी भारत कार्यक्रम का ये परिश्रम भी आपके दिल तक पहुँच रहा है। और अगर आपने अपने प्लेट में एक भी बदलाव किया आने वाले कुछ हफ्तों में, तो मैं समझूंगा आज का ये एपिसोड हमारा सफल रहेगा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा साथियों। एक और एपिसोड में हम आपके बीच में आएंगे एक और हस्ती के साथ। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, श्री अन्न के मजे लेते रहिएगा। मैं इजाजत लेता हूँ आरजे शांतनु आपसे, दोबारा फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।

हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का, नजर ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आंख

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और उसमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हो सकती है, कौन सी हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, तो जब अपनी तरफ देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले है, तो उसमें बहुत सी बातें सामने आई कि किस तरफ मैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैं लेकर जाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी को, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी जिम्मेवारी है। जहाँ मैंने अपनी चॉइस की तो जिम्मेवारी भी मेरी ही होगी। आगे और बढ़ाते हैं इस बात को और देखते हैं कि किस तरह से ये अनफोल्ड होता जाएगा, खुद को मैनेज करने का प्रोसेस। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से पिछली कड़ी में हमने देखा था कि हर बार हम बहुत से सिचुएशंस में ऐसे कह देते हैं कि आई डोंट हैव एनी चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो कहीं ना कहीं जब हमने बातें की थी तो ये बात सामने आई थी कि जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ उसमें चॉइस मेरी ही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर आ रही थी, कोई भी सिचुएशन है, जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, मैं इसलिए कई बार ये कह देती हूँ कि इट्स नॉट माई चॉइस, आई डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि फिर उसकी जिम्मेवारी मुझ पर आ जाती है।
1: We also, like we realized about the karma philosophy, so many people, most of us, in fact, I can say almost all of us, हम लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना जीवन में, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब हमें क्या होता है जब परमात्मा से ये ज्ञान मिलता, या हमने पहले भी कार्मिक फिलॉसफी समथिंग जो हमने बचपन से सुना था, तो एक तरफ से कार्मिक फिलॉसफी हमें कहता कि हम जो करते उसी का रिटर्न मिलता, लेकिन हमारी अपनी बिलीफ ये कहती कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो समवे वी नीड टू थिंक कि जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी होती हुई चीज़ें हमें गलत लगती हैं, लेकिन करती हुई चीज़ें हमें गलत नहीं लगती हैं। सी, होती हुई जो चीज़ें हैं, विच इज़ कमिंग द एनर्जी कमिंग फ्रॉम देयर, आई डोंट लाइक इट, लेकिन जो एनर्जी हम यहाँ से भेज रहे हैं थॉट, वर्ड, एक्शन के रूप में, हम कह रहे हैं वो गलत है ही नहीं। हमने जो कल के एपिसोड में डिस्कस किया, इट जस्ट स्ट्रक समथिंग हियर फॉर मी, एंड इट वॉज क्यों हमें ये लगता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। डेफिनेटली हमने गलत किया है, लेकिन जब हम वो कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है। तो क्या होता है, हम गलत करते हुए भी, जैसे हमने कल देखा कि ब्राइब देते हुए भी हम कह रहे होते हैं मैं सही हूँ, सिस्टम गलत है,
0: अपने आप को जस्टिफिकेशन,
1: मैं सही हूँ। हर कर्म के लिए है ना, हर कर्म के लिए हमने अपने आप को कहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ,
0: सिस्टम गलत था,
1: समवन एल्स इज रॉन्ग। तो इसलिए जब वो मेरे पास वापस आता है, आई से मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि गलत करते टाइम भी मैंने क्या सोचकर गलत किया था,
0: ये मैं तो सही हूँ,
1: सही हूँ।
0: इनफैक्ट ये अपने आप को धोखा देने वाली बात जो अभी तक हम कहते थे कि आप किसको धोखा दे रहे हो, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ धोखा दिया, सब कुछ क्लैरिटी से तो कर रहे हैं, लेकिन अगर डीप डाउन तो इनफैक्ट ओ वाओ,
1: मेरा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन है, एवरीवन यूनिवर्सल आई विल फील दिस हैज हैपेंड, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे व्हाटएवर फिजिकल इलनेस में है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन परमात्मा कह रहा है जो आपने किया उसका ही मिल रहा है, तो वेयर इज द फॉर्मूला, सी द फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दैट्स इंपॉर्टेंट।
0: क्योंकि पता है कई लोग ये भी बोलते हैं मैंने जानते हुए कुछ गलत नहीं किया, अनजाने में गलत हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता।
1: हाँ, तो वो तब ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमने लिए ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स में हम एक्चुअली तो गलत ही कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को सही बता कर रहे होते हैं, तो फिर जब हम अपना ही अकाउंट चेक करते हैं, यू नो,
0: ओ अब अगर हम चेक करना शुरू करें तो कितनी,
1: अब जब हम अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं तो मैंने कहा मैंने सब कुछ सही किया, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, परमात्मा ने आकर कहा ये फॉर्मूला वर्क नहीं होता है, जो आपने किया वही मिल रहा है, तो नाउ चेक योर कर्म वाला अकाउंट अगेन, एंड नेक्स्ट टाइम जब कर्म कर रहे होंगे तो थोड़ा सा और अटेंशन के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं गलत करते हुए भी अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसका रिजल्ट मेरे सामने आएगा मैं फिर वही स्टेटमेंट दूंगा
0: कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था,
1: एंड देन इट मेक्स मी फील वेरी पेनफुल इनसाइड, यू नो दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पेन।
0: ओके, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आज अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब और जिसको मैं अभी तक मैं ये कहता था कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है इसीलिए मुझे ये करना है, लेकिन आज मैं ये समझते हुए कि मेरे पास चॉइस है और मैंने ये गलत किया क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम की ज़रूरत ये थी, मुझे इस टाइम पे ये ज़रूरत लग रही थी और मैंने ये गलत किया जानते हुए, तो मुझे तैयार रहना चाहिए समवेयर आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग विच आई हैव डन एंड इट विल हैव इट्स ओन रिपरकशन.
1: स्टॉप टेलिंग माई सेल्फ दिस एवरी टाइम. इट्स जस्ट दैट करते हुए मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ, कर तो मैं ही रहा हूँ, इसीलिए इट्स कमिंग बैक टू मी. सिस्टम गलत है तो ब्राइब देना गलत हुआ क्या? नहीं. अब कल को अगर मेरा कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया फाइनेंशियल, क्योंकि मैंने जो अभी गलत कर्म किया वो फाइनेंशियल था, कार्मिक लॉ विल वर्क इन द सेम वे, तो जहाँ मैंने एक फाइनेंशियल कर्म जो किया वो रॉन्ग था, कहीं मैंने पैसा गलत तरह से लगाया तो कहीं मेरा पैसा गलत तरह से फिर
0: चला गया,
1: जाएगा भी, लेकिन जब वो जाता है
0: बहुत तकलीफ होती है.
1: तो मैंने कहा मैंने तो कुछ गलत
0: क्या
1: नहीं
0: हुआ,
1: किया.
0: क्या किया था मैंने. हाँ,
1: तो बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स. दिस इज नॉट टू स्केयर आर सेल्व्स, दिस इज जस्ट टू बी अवेयर वाइल डूइंग द एक्शन. सो कीप ऑन डूइंग इट हाउ एवर यू आर कंफर्टेबल, बट रिमेंबर लेट्स स्टॉप दिस सेंटेंस एटलीस्ट, क्योंकि ये सेंटेंस भी हमें बहुत हेल्पलेस फील कराता है जब हम कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है. ये भी हमारे जीवन को क्या कर देता है? बहुत कमजोर बनाता है. आज मेजोरिटी हम कहते हैं मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सबने मेरे साथ ही धोखा दिया. हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज जस्ट दैट मीन्स इन द लॉ ऑफ एनर्जी इज नॉट वर्किंग. मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सबने मेरे साथ धोखा दिया, ये कहाँ वर्क कर रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मैं सबके साथ बोलने में बहुत मीठी हूँ
0: अंदर
1: लेकिन अंदर मैं उनके प्रति क्या थॉट क्रिएट कर रही हूँ. फिर जब वो एनर्जी मेरे पास रिटर्न में आती तो किस तरह से आती? तो लॉ ऑफ कर्मा एट एवरी स्टेप आई नीड टू रिमेम्बर. धन तो बहुत छोटा लेवल है लेकिन हर स्टेप पर उस पर देखते जाएं. तो जब हम इस तरह से ध्यान रख कर अपने जीवन को चलाएंगे, जीवन की यात्रा में चलेंगे, तो हमें सबसे पहली पावर ये मिलेगी कि मैं अपना जीवन खुद क्रिएट करता हूँ. हर स्टेप में सीन है, सीन आते मेरे पास चॉइस है क्या रिस्पॉन्स देना. जो मैंने रिस्पॉन्स चूज किया उस समय मेरे लिए वो सीन बना. आप वही सीन में दो अलग एक्टर्स को अलग अलग रिस्पॉन्स देता हुआ देखेंगे, दोनों ने अपनी जीवन अलग अलग उसी टाइम डिसाइड कर ले. समटाइम्स वी टेक वेरी बिग डिसीशंस, उसी सिचुएशन में दो लोग दो अलग डिसीशंस लेते हैं और दोनों की जीवन की यात्रा बिल्कुल ही चेंज हो जाती है. लेकिन क्या वो ये कहेंगे कि ओ इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स? नो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट डिसीशन विच दे टुक दैट टाइम.
0: चॉइस आई मेड.
1: तो हो तो यही रहा, सिर्फ लिव विद दैट अवेयरनेस, ताकि उससे क्या होगा जब हम वो जागृत अवस्था में चलेंगे कि हर स्टेप पे मैं अपना जीवन खुद बना रहा हूँ, तो दैट विल गिव मी अ वेरी नाइस फीलिंग एंड इट इज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम विलिंग टू डू दिस इंस्टेड ऑफ आई हैव टू डू दिस.
0: एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कैन चेंज इट एनी टाइम आई वॉन्ट. सी राइट नाउ इफ आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ विद माई लाइफ, आधे से ज़्यादा तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ अपने आप से. सुबह उठ के रोज़ मैं एक ऐसी ऐसे दिन की शुरुआत करता हूँ जो जिससे मैं कोई खुश नहीं हूँ. मैं नहीं चाहता उस ऑफिस में जाना, मैं नहीं जीना चाहता उस पूरे एटमॉस्फेयर में, मैं खुश ही नहीं हूँ.
1: अब जहाँ तक जैसे आपने कहा मैं नहीं जाना चाहता उस ऑफिस में, तो अभी भी कुछ लोग कहेंगे ये प्रोग्राम सुनते हुए भी, कहाँ मेरे पास चॉइस है? अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं जॉब ही छोड़ देता ना, फिर मुझे नहीं जाना है. ओके सिचुएशन कि आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, ये भी आपका डिसीशन है, ये तो चॉइस है ना कि वो जॉब करते हुए आप फील कैसा करेंगे, क्योंकि वहाँ रहना आपने चूज किया है. सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम कहें मैं मजबूर हूँ वहाँ काम करने से, फिर आप दर्द में काम करते हैं, आप दर्द में काम करते हैं, नफरत से काम करते हैं, व्हाटएवर. लेकिन जहाँ आप कहते हैं मेरी परिस्थितियाँ या कुछ भी, मेरा परिवार, जो भी एक रीज़न है, उनकी वजह से मैं चूज करता हूँ इस ऑफिस में काम करना, तो मेरी चॉइस है, तो अपनी चॉइस को कैसे निभाना चाहिए?
0: बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू पावर.
1: या यू नो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल टेक अ करियर. पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियरिंग करे. अगर बच्चा पेरेंट्स के कहने पर मेडिकल करता है ना, तो वो पढ़ता भी जाता है, प्रोफेशन भी करता है, लेकिन पूरा टाइम उनको ब्लेम करता है, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी, तो देन ही डजंट रियली पुट इन द बेस्ट और इन्जॉय. लेकिन जो प्रोफेशन उसने खुद चूज किया होता है, उस प्रोफेशन में कितने भी हर्डल्स आते हैं, ये नहीं है कि उस प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन चॉइस किसकी थी? वो प्रोफेशन मेरी थी. उस समय वो कंप्लेंट नहीं कर सकता. जहाँ आपकी चॉइस है, आप कंप्लेन नहीं करते. अगर वो बच्चा घर आकर कहे कि मुझे ना बहुत डिफिकल्ट है ये इंजीनियरिंग करना, तुरंत पेरेंट्स क्या कहते? आपने चूज किया था ना.
0: सो तो उसके लिए वी मेक इट वर्क.
1: यस, वी मेक इट वर्क. यू पुट इन योर बेस्ट इनटू इट. तो इसी तरह वो ऑफिस जो आप कह रहे हो कि मेरा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता वहां जाना, लेकिन मैंने चूज किया है वहां जाना, नाउ मेक इट वर्क बिकॉज इट्स योर चॉइस. लेकिन अगर आप मजबूरी समझ के, चाहे ऑफिस या किसी रिश्ते में हैं, आज लोग बहुत सारे रिश्तों में हैं, चूज भी कर रहे हैं लेकिन मजबूरी से रहते हैं, तो दर्द में रहते हैं. यू आर चूजिंग, माई मदर इन लॉ शी इज लाइक दिस, बट आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू स्टे विद हर. ओ, यू आर चूजिंग टू स्टे विद हर, नाउ मेक द मोस्ट ऑफ इट. ये आपकी चॉइस है. अब यहाँ क्या क्रिएट करना है वहाँ रहते हुए उनके साथ, चूज इट. लेकिन जब हम कहें मेरी चॉइस नहीं है, तो हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, और फिर हम कर भी रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर
0: बहुत
1: घुट भी रहे हैं.
0: और वो
1: दिस इज नॉट सेल्फ
0: जेन्युइन होती है. जेन्युइन
1: जेन्युइन घुटन जेन्युइन कैसे हो सकती है?
0: मतलब वो घुटन जो है वो महसूस तो हो ही रही होती है ना,
1: बहुत ज्यादा
0: तकलीफ तो बहुत हो रही होती है.
1: एंड मोस्ट ऑफ अस कैन स्पेंड आवर होल लाइफ इन दिस. वी मीट लॉट ऑफ गर्ल्स, वुमेन नाउ, दो कहेंगे मैं आई वाज अ वर्किंग गर्ल, लेकिन शादी करने के बाद मुझे कहा गया कि आपको जॉब नहीं करना, चॉइस. कहेंगे नो, नॉट माई चॉइस, माई फैमिली मेड मी डू इट. एंड फिर पूरी जीवन कैसे काटेंगे? रहेंगे उसी परिवार के लिए, त्याग भी उनके लिए किया लेकिन अंदर से नहीं किया. ऊपर से त्याग किया, अंदर से दर्द दर्द दर्द. फिर कहेंगे इतना इनके लिए किया, ये अभी भी खुश नहीं है मेरे से. क्यों खुश नहीं है? क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ. तो फिर वो जीवन की पूरी यात्रा कैसे हो जाएगी? आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू. तो हमने एक बहुत अच्छा स्लोगन एक जगह पढ़ा, जस्ट चेंज वन वर्ड, हैव टू की जगह वॉन्ट टू, एंड योर लाइफ विल चेंज. एंड इट वर्क्स. आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस. इवन गेटिंग अप ऑन अ मंडे मॉर्निंग एंड सेइंग आई हैव टू गो टू वर्क एंड आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, दोनों में कितना फर्क है. आपकी एनर्जी लेवल ही चेंज हो जाती है.
0: आई वांट टू मेडिटेट,
1: आई वांट टू मेडिटेट, या आई हैव टू मेडिटेट. तो वो जीवन को आप एंजॉय करने लगेंगे. अब जैसे हम कहते टाइम इज मनी, यू नो, आज दुनिया में भी कहते टाइम इज मनी. तो हमने शुरू ही ये किया था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम मिला है इस क्रिएट करने के लिए. हमें ये नहीं पता कि वो टाइम कितना है, मैं इस कॉस्ट्यूम में कितने टाइम के लिए हूँ, आई डोंट नो. वॉट टू क्रिएट, I will choose. Lekin do I have a clear sense of a goal and aim? Ki mujhe itne samay mein kya karna hai? Jaise time is money kehte, to jitna paisa mere paas hai, mere paas kitna clear ye hota hai, mujhe is paise se kya kya karna hai. Jitna samay mere paas hai, kya mere paas wo clear goal hai, mujhe is samay mein kya kya karna hai? Am I very clear with my goals and aims and objectives? क्योंकि अगर clear नहीं होता तो आप देखो जीवन में चलते चलते बीच बीच में question उठता, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मेरे जीवन का purpose क्या है, why am I here, what am I doing, this is meaning leading a life, लेकिन ये नहीं पता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं. तो जब भी ये मन में क्वेश्चन उठता, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, इसका क्या, मेनी पीपल उनका सबसे बड़ा, उनको पूछो यू हैव एनी क्वेश्चन, दे विल से व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. अ पर्पस ऑफ माय लाइफ, हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स?
0: ओह, वी आर डूइंग दैट, यू नो, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन.
1: हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ? दैट मीन्स आई एम लीडिंग अ पर्पसलेस लाइफ. मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है. तो हम अपने जीवन का कोई गोल, कोई एम, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं सेट कर पाते? क्योंकि दो चीज़ों की कमी है. एक, हमने अपने जीवन का कोई पर्पस नहीं बनाया. गोल इज सेपरेट, पर्पस इज सेपरेट. उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि गोल क्या है, पर्पस क्या है. और दूसरा, हमने अपने जीवन की कोर वैल्यूज़ नहीं डिफाइन की है. एक बार हमारी कोर वैल्यूज़ और जीवन का पर्पस डिफाइन हो जाए, फिर गोल सेट करना बहुत इजी हो जाता है. एंड फिर ध्यान रखना कि जो गोल मैं सेट कर रहा हूँ वो मेरे पर्पस और वैल्यूज के साथ
0: क्लैश ना करे,
1: मैच करे. इस पर मनन भी करना पड़ेगा कि मेरे जीवन का पर्पस और वैल्यूज क्या है. एंड दिस नीड्स टू बी रिटन समवेयर. हर एक के पास ये लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब आपकी लाइफ में कोई द्वंद आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि आजकल कई बार आता कि मैं ये करूँ या ये करूँ, गो पिक अप दैट चिट फर्स्ट जो वहाँ रखा था, क्योंकि ये गोल्स हैं, लेकिन पर्पस और वैल्यूज क्या है?
0: हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको मैनेज करने में अपनी जो ज़रूरतें हैं जी दुनिया भर की या जीवन की जो ज़रूरत है उन्हीं को पूरा करने में हम इतने इन्वॉल्व हैं कि ना हमने पर्पस के बारे में सोचा, ना हमने वैल्यूज़ के बारे में सोचा है, और गोल तो समझ में नहीं आता कि
1: पर्पस के बारे में सोचते भी तो भी क्या पर्पस दिखाई देता? जीना और अपने बच्चों को
0: पालना
1: पालना भर, तो यू नो इट्स अ वेरी एक्सटर्नल पर्पस, तो वो पर्पस नहीं है. फिर हर थोड़े दिन के बाद ये आता,
0: क्या कर रहे
1: क्या
0: हैं
1: कर
0: हम?
1: रहे हैं हम? यू नो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
0: आई नो
1: क्या
0: लॉट ऑफ
1: कर रहे
0: पीपल,
1: हैं हम?
0: हाँ क्या कर रहे हैं हम, वेयर एम आई गोइंग, यू नो मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और उसके बाद फिर उसी डर्रे में चले जाना. आज
1: क्योंकि
0: मैं
1: जैसे
0: डिप्रेशन
1: ही ये
0: में गई.
1: क्वेश्चन अराइज होता है ना, उसको दबा देते हैं. क्वेश्चन आता है, सबके मन में आता है, ये कभी ना कभी हर एक के मन में क्वेश्चन उठता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? लेकिन फिर छोड़ते हैं, छोड़ो ना, काम करो, बच्चों को संभालो, परिवार को,
0: बहुत सारा काम
1: ये
0: है अभी, बहुत
1: क्वेश्चन
0: सारी
1: को, ये
0: चीजें.
1: सब फिर सोचते हैं, जब रिटायर हो जाएंगे ना, स्पिरिचुअलिटी विल गिव अस द आंसर्स फॉर ऑल दिस क्वेश्चन, बट पर्पस ऑफ माई लाइफ इज
0: नाउ
1: थ्रू आउट माई एंटायर लाइफ. आई नीड टू चॉक इट आउट वाइल आई एम ऑन द जर्नी इन दिस लाइफ. अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें हु इज़ वेरी फोकस्ड, बहुत क्लियर है कि वो अपने जीवन में क्या चॉइसेस बना रहे हैं. डिसीशन लेना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. दे विल नॉट गो अराउंड आस्किंग पीपल, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना. उनके पास सिर्फ अपना वो पर्पज ऑफ लाइफ और वैल्यू वाला चिट सामने होगा. हियर वॉट इट इज, सच अ पर्सन नेवर नीड्स हेल्प टू टेक देयर डिसीशंस. अगर मैंने अपना डिसीशन अपने वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए लिया, तो मुझे कभी भी अंदर से घुटन की फीलिंग नहीं आएगी, चाहे वो डिसीशन कोई भी डिसीशन.
0: You know, now a lot of people are going to ask us, what should be the purpose of our life?
1: Yeah, good.
0: You know?
1: I didn't mind that. That is an okay, good question. But we will not find the purpose. We can just take them on a journey to find their own purpose. क्योंकि एवरी वन विल हैव टू फाइंड द पर्पज फॉर themselves. अगर हमने रेडीमेड आंसर दे भी दिया कि दिस इज पर्पज ऑफ योर लाइफ, दीज आर योर वैल्यूज, वो आज पेपर पर लिखेंगे, कल छोड़ देंगे उसको. जैसे ही सिचुएशन सामने आई, वो छोड़ो इसको, आई हैव टू डू
0: वो
1: दिस.
0: तो एक जिस तरह से जीते जा रहे हैं उसी तरह से जिएंगे.
1: इट हैज टू कम फ्रॉम मी. हर एक को अपने आप के लिए ये ढूंढना पड़ेगा. तो जो लोग ये बहुत फोकस्ड और यू नो जिसको कहें वेरी क्लियर कि उनका डिसीशन क्या होना चाहिए, उनके एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए, उनके पास तीन बातों का आंसर होता है. वो कौन है, पहली बात, वो यहाँ क्यों है, एंड तीसरा, उनका रोल क्या है. ये तीन क्वेश्चंस के अगर आंसर मिल जाते, हु एम आई, वेयर एम आई, एंड व्हाई एम आई हियर, आई नीड दीज थ्री आंसर्स. हु एम आई, वेयर एम आई हियर, एंड व्हाई एम आई हियर, ये तीन आंसर्स मिल गए, फिर पर्पस और वैल्यूज ढूंढना बहुत ईजी हो जाता. लेकिन जैसे ही हु एम आई को आंसर करना शुरू करते, तो वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही खड़ा हो जाता है. और आज दिन तक तो जब तक परमात्मा से ये ज्ञान नहीं मिला था, तो यही सुना था कि हु एम आई इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर.
0: You spend all your life searching for it.
1: तो जब तक हु एम आई नहीं आंसर हुआ, तो माई पर्पज एंड माई वैल्यूज वो नहीं पता चलेगा. क्योंकि पर्पज और वैल्यूज किसका है? माई पर्पज, माई वैल्यूज, लेकिन वो मैं कौन? वो मैं का जैसे ही आंसर निकलेगा, तब तो उसकी वैल्यूज निकल कर आएंगे ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए सब कहते हैं कि जब तक हु एम आई का आंसर नहीं आता, तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही रह जाते. आज अगर हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, हर एक चीज के ऊपर एक लेबल लगा है. कोई भी ड्रेस देखो ना, उसके ऊपर लेबल है, कौन सा मेक, क्या कॉस्ट, क्या डिज़ाइन, कैसी इसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस है, सब कुछ लेबल्स लेबल्स, हर जगह लेबल्स. अपने आप को देखो, हमारे ऊपर भी एक लेबल लगा हुआ है. जिसको भी हम मिलते, उनके ऊपर भी तुरंत हम एक लेबल लगा देते हैं. बिना लेबल के किसी को देखना या किसी से मिलना इज़ बिकम डिफिकल्ट. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, लेबल, फैट, थिन, प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, वट एवर, लेबल्स. जैसे ही हम औरों के ऊपर इतने लेबल्स लगाते, अपने ऊपर भी हमने लेबल्स लगाए हुए हैं. हु एम आई, तो ये पूरी लिस्ट ऑफ लेबल्स आ जाती. और जैसे ही ये लेबल्स बन जाते, मेरी पूरी जीवन पता है किस में बीतती है, इन लेबल्स को डिफेंड करने में, इन लेबल्स को संभाल कर चलने में, कि और इन लेबल्स के ऊपर ही मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस लेबल पर ही डिपेंडेंट है
0: कि मैंने अपने आप को ये लेबल दिया, अब जो भी दूसरा है वो ये लेबल एक्सेप्ट करे, उसे समझ में आए कि मैं ये हूँ.
1: एब्सोल्युटली. जैसे ही किसी ने मेरे उस लेबल को थ्रेटन किया, लेट्स से माय लेबल इज आई एम अ हिंदू, सिंपल लेबल, जैसे ही कोई कहे तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ, आई एम एन इंडियन, ये मेरा लेबल है, कहे कोई अब इंडिया के बारे में कुछ भी, एंड आई विल गो लाइक दिस, मुझे कह दिया, एंड देन वी से पेट्रियोटिज्म, यस, बट पेट्रियोटिज्म डजंट मीन दैट आई नीड टू रिएक्ट, लेकिन मेरा लेबल है, और जैसे ही किसी ने उस लेबल को स्क्रैच किया, उसको हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया. लेट्स से आई एम अ डॉक्टर, किसी ने भी अगर कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, मुझे कह दिया, एंड आई विल गेट हर्ट. आई एम अ मदर, किसी ने मेरे बच्चों के बारे में कुछ कह दिया, आई गेट हर्ट, मेरे लेबल को स्क्रैच कर दिया. नाउ दिस इज माय आइडेंटिटी. अगर ये जो लेबल्स की पूरी लिस्ट है ये मेरी आइडेंटिटी होगी, तो व्हाट विल बी माय वैल्यूज
0: डिपेंडिंग अपॉन देम, यू नो,
1: डिपेंडिंग ऑन
0: दीज, सेव करने के लिए लेबल्स.
1: एब्सोल्युटली. मेरी वैल्यूज हु एम आई पर डिपेंड करती है. तो जैसे हु एम आई, वाइफ, मदर, वुमन, इंडियन, हिंदू, ये आंसर आएंगे, तो वैल्यूज भी क्या आएंगे, सब उससे रिलेटेड आएंगे.
0: और उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं को यू नो बहुत अच्छी तरह से शो करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई एम.
1: एब्सोल्युटली. क्योंकि वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, व्हेन वी से वैल्यूज, तो वैल्यूज मींस समथिंग दैट आई केयर अबाउट. आई से आई वैल्यू यू, आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप, आई वैल्यू माय जॉब, इट्स वैल्यू, समथिंग दैट आई केयर अबाउट. अब अगर मैं अपने आप को एक प्रोफेशन के साथ एसोसिएट करती हूँ, तो व्हाट विल बी माय वैल्यू,
0: यू नो,
1: पावर देयर,
0: यस,
1: पोजीशन देयर, माय रोल देयर,
0: एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन,
1: एवरीथिंग. नाउ माय वैल्यूज मींस आई विल ओनली बी रिलेटेड टू दैट पावर, पोजीशन, दैट रोल दैट आई प्ले देयर. तो सारा दिन मेरा पूरा ध्यान किस पर होगा, उस पर होगा. इफ माय लेबल इज, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, इफ माय लेबल इज आई एम अ ब्रह्मा कुमारी,
0: होल थिंग इज लाइक
1: रिलीजन, फिलोसफी. अगर किसी ने मेरी इस, मेरी नहीं मतलब, लेकिन जो भी फिलोसफी आई एम प्रैक्टिसिंग इट, लेट समवन से एनीथिंग अगेंस्ट दैट फिलोसफी एंड आई विल गेट हर्ट. स्पिरिचुअलिटी वैनिश्ड, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी वॉज एक्चुअली नॉट टू गेट हर्ट. लेकिन मैंने वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा, मैंने अपना लेबल कौन सा अटैच कर लिया, आई एम दिस. हाउ क्रिटिकल दैट इज. आज हमने अपने लेबल्स पर रिलीजन को लगाया है, एंड दैट्स वाई इन द नेम ऑफ रिलीजन वी आर fighting with each other, protect करने के लिए अपने religion को, अपने principles को, अपनी philosophy को, क्योंकि this is what I value. No one can do or say anything to this. Then to protect
0: this is important to me. Yes, you know, like, oh yes, very true.
1: ये सारे जो labels हैं, अब परमात्मा आकर हमारे ये सारे labels
0: हटा देता
1: और हमें दिखाता कि हम actually कौन हैं. और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हम एक्चुअली कौन है, हु एम आई जब आंसर हो जाएगा, तो वैल्यूज एंड पर्पस वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है.
0: वेरी ट्रू.
1: तो जब तक वो आंसर नहीं होता, लेट्स सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि हु एम आई, और जो जो आंसर बाहर के अक्वायर्ड लेबल्स के हों उनको एक साइड रखते जाए. दिस इज माइन, माई रिलीजन, माई रोल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जिन जिन लेबल्स के साथ माई आता उसको हटाते जाएं. दिस इज अ लेबल विच इज फाइन, दिस इज देयर, बट दिस इज माइन. मुझे उस आंसर पर आना है कि हु एम आई. तो अपने आप के साथ बैठें और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि जैसे ही हम आई कहते हैं तो क्या क्या आता है सामने, और धीरे धीरे जो जो चीज़ें इस जीवन की यात्रा में अक्वायर की हैं, हमने प्राप्त की हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, वो हमारी डिग्रीज हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी और पोजेशंस हैं, वो सब कुछ मेरे हैं, उनको एक साइड रखते जाएं. यस आई अंडरस्टैंड ये मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैं कौन? थॉट्स, फीलिंग्स, ये भी मेरे हैं, मैं कौन? लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट हु एम आई, टू होम ऑल दिस बिलोंग्स. जैसे जैसे हम एक एक लेबल को गिराते जाते, धीरे धीरे हम खो नहीं रहे हैं कोई भी चीज़ को, हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मैं कौन, मेरा क्या क्या। एक एक लेबल को हटाते हटाते वी कम टू आवर सेल्व्स, आई दैट बीइंग, द एनर्जी, जस्ट मी, जो इन रिलेशनशिप्स और इन रोल्स को प्ले करती है, आई कॉन्शियसनेस, आई एम दैट बीइंग ऑफ एनर्जी। एंड नाउ एज आई सेट आउट थ्रू आउट द डे विद दिस आइडेंटिटी कि ये सब कुछ मेरा है लेकिन मैं ये हूँ, तो आज के दिन मैं अपनी वैल्यूज को देखना शुरू करते, अपने पर्पस को ढूंढना शुरू करते। लेट मी एक्सप्लोर इट विद माई सेल्फ टुडे। ओम शांति।
0: ओम शांति। सुशिवानी, जिस तरह से आज पूरी बातचीत रही और जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्शन की बात कर रहे थे, वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट सवाल यही कि मेरे जीवन का पर्पस क्या, और उसमें आपने कहा कि जब तक वैल्यूज़ नहीं आएंगी सामने, तब तक, जब तक मैं खुद को नहीं पहचान पाऊँगा, तब तक ना वैल्यूज़ को ले पाऊँगा ना पर्पस पता चल पाएगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि खुद को हमें पहचानना है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू।

0: 0997366555 0999974555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज जो अपनी पहचान हुई है कि आप वो चैतन्य शक्ति हैं, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, इन सारे लेबल्स के, माँ के, पिता के, प्रोफेशनल के, या कोई भी जितने भी लेबल्स हमने उड़े हैं, उन्हें ज़रूर चेक करें, देखें कि वो कौन कौन से लेबल्स हैं, उनको रखने के लिए कितनी वैल्यू करता हूँ मैं, और उसके बाद डीप जब ये लेबल्स उतरते गए तो मैं कौन हूँ ये सामने आता है। उसके साथ आप रहें, उसे सीप इन करने दें, फिर वैल्यूज़, इस नई पहचान के साथ जब हम वैल्यूज़ और पर्पस की तरफ जाएंगे, एक नया मैं सामने आऊँगा। आज की कड़ी में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, मी मोनाली सावगत। तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि कैसे काशीपुर का घर छोड़ने पर सुरेंद्रनाथ मित्र महाशय की सहायता से नरेंद्रनाथ को बरहापुर का एक टूटा फूटा घर मिला और वहीं उन्होंने प्रथम रामकृष्ण मठ की स्थापना की। कई तरुण सन्यासी उनके साथ आए और जब तब के दिन बिताने लगे। वे दिन उन सभी के लिए बेहद कष्टप्रद थे। कई युवक परिवार के लोगों को ताड़ना से घर लौटना पड़ा। नरेंद्र पहले तो अपने घर के मामलों को लेकर के बहुत व्यस्त थे। जो ही उन्होंने थोड़ी फुर्सत पाई और सन्यास का आदर्श पालन करने के लिए स्वयं को मुक्त अनुभव किया, उस समय जो युवक अपने घर लौट करके पढ़ने लिखने में लग गए थे, उन्हें वराहनगर ले जाने के लिए, उनके मन में वैराग्य जगाने के लिए वे कटिबद्ध हो गए। घंटों उनके साथ वे तर्क वितर्क में रत रहकर अपने उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते थे।
1: नरेंद्र नाथ की उद्दीपनकारी वाक पटुता से उनके गुरु भाइयों के मन में पहले की बात जल उठती और उस समय के लिए सांसारिक वासना प्रभावहीन हो उठती। कोई कोई नरेंद्र की पुकार पर अध्ययन आदि छोड़कर वराहनगर जाते, किंतु व्यथित नहीं थे। घर लौटकर नरेंद्र नाथ के फिर आने के भय से जब वे सब बंद कमरे में अध्ययन में निहित रहते, तभी नरेंद्र नाथ अचानक आंधी की तरह उपस्थित होकर घर के दरवाजे को हाथ से थपथपा कर दरवाजा खुलवाते और गुरु भाई को राजमार्ग पर खींचकर अभिभावक के पीछे अग्निमयी वाणी का स्रोत बहा देते। वे कब किसके घर उपस्थित होते, इसका कोई ठिकाना नहीं था।
0: आठपुर के बाद त्याग की आकांक्षा तीव्र होकर स्थिति दूसरी तरह हो गई। क्रमशः शशि, निरंजन, राखाल, शरद, शारदा और सुबोध मठ में ही रहने लगे। कुछ महीने बाद ही वृंदावन से लौटकर लाटू ने भी योगदान किया। हरि के आने में भी देर नहीं हुई। श्री माँ के वृंदावन से लौट आने पर योगेंद्र का भी मठ जीवन शुरू हो गया। गंगाधर सन 1887 ईस्वी के फरवरी महीने में गृह त्याग कर हिमालय और तिब्बत का भ्रमण करने निकले। इसीलिए वे स्थायी रूप से मठ में 1890 ईस्वी के मध्य में आए और सबके अंत में स्वामी विवेकानंद के अमेरिका से लौटने के बाद हरिप्रसन्न आए थे। एक और व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक है, वे हैं तुलसी। ये श्री रामकृष्ण को एकाधिक बार देखने पर भी उनसे घनिष्ठ रूप से नहीं मिले और इसलिए अपने को श्री रामकृष्ण का शिष्य नहीं कहकर स्वामी विवेकानंद के शिष्य के रूप में अपना परिचय देने में ही गर्व का अनुभव करते थे।
1: समाज उन दिनों शंकराचार्य द्वारा अनुमोदित वैदिक संन्यास और अद्वैत वेदांत से भली भांति परिचित नहीं था। वे लोग महाप्रभु श्री चैतन्य द्वारा प्रवर्तित श्रेवस्थधारी बैरागी संप्रदाय को जानते थे। गंगा सागर के यात्री या जगन्नाथ के यात्री जटाजूटधारी नागाओं अथवा सामान्य गेरुआ वस्त्रधारी दो चार सन्यासियों को उन्होंने देखा था। चैत्र संक्रांति के मेले के सन्यासी और विरल मुट्ठी भर कौल सन्यासियों को वे पहचानते थे, किंतु शिक्षित मध्य वर्गीय परिवार के युवक वृंद दल के माता पिता को रुलाकर और सांसारिक संपन्नता को ठुकराकर संघबद्ध रूप से मठ जीवन यापन करेंगे तथा अनुष्ठान के रूप में एकमात्र गुरु पूजा के सहारे वेदांत सम्मत साधना मार्ग में अग्रसर होंगे। ये एक नई बात थी। इस धारा की पुष्टि होने में समाज का कल्याण होने के बदले अकल्याण होने की आशंका थी। इसीलिए पहली अवस्था में श्री रामकृष्ण मठ लोकप्रिय नहीं हुआ।
0: मोहल्ले के लोग उन दिनों मठ के विरोध में थे, झूठी निंदाएं किया करते थे। जब साधुगण गंगा स्नान करने जाते तो दुष्ट लड़के बगुले दिखाते और कहते, अरे सब राजहंस जा रहे हैं। मोहल्ले के लोगों का संदेह कितना प्रबल और अश्लील था, इसका परिचय एक घटना से मिलता है। स्वामी विवेकानंद के गले की आवाज नारियों की भांति कोमल थी। वे जब गाते तो दूर से सहसा नारी के स्वर का भ्रम होता। एक रात वे मठ में गाना गा रहे थे, उसी समय मोहल्ले के कुछ लोग यह निश्चय कर बैठे कि निश्चित ही मठ में किसी स्त्री का आगमन हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारों को हाथों हाथ प्रमाणित कर भ्रष्ट साधुओं को समुचित दंड देने की मंशा से कुछ लोग इस प्रयास में अग्रसर हुए और बाहरी दरवाजा बंद रहने के कारण दीवार फांदकर संगीत सभा में अचानक उपस्थित हो गए, किंतु उन्होंने देखा कि ये तो नारी नहीं पुरुष है। इसके बाद स्वयं ही पराजित होकर सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा याचना की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि साधुओं ने लेश मात्र क्रोध या शोक प्रकट किए बिना उन लोगों को हंसते हुए विदा की।
1: नरेंद्र नाथ और उनके साथी इन घटनाओं से विचलित नहीं होते थे। वे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और वक्त मिलते ही दानव कमरे में इकट्ठा होकर नरेंद्र रचित भजन गाते।
0: हम पहले भी जान चुके हैं कि मठ में सन्यासी कितनी तकलीफ और भुखमरी सहते थे। भिक्षा के सहारे भोजन मिलता था, वह भी 1 जून का। सन 1890 ईस्वी के 13 अप्रैल को बलराम बाबू को और 25 मई को सुरेंद्र बाबू के देहांत पर स्थिति अत्यंत संकटजनक हो गई थी। ऐसी कि एक बार मठ के खर्च के लिए शशि को शिक्षक का कार्य करना पड़ा था। हाँ, यह कुछ ही दिनों तक करना पड़ा था। विपत्ति के उन दिनों में गिरीश बाबू ने निसंकोच भाव से दान दिया था।
1: वराह नगर की दरिद्रता को नरेंद्र सहन नहीं कर पाते थे। कभी कभी तो शशि से झगड़ा भी हो जाता था।
2: शशि, मुझसे ये दुर्दशा और देखी नहीं जाती। छोटे छोटे सन्यासियों को हम भरपेट खाना भी नहीं दे पाते।
3: आप नाहक परेशान हो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा क्या?
2: कोई कहेगा तब मुझे मालूम पड़ेगा। अंधा तो नहीं हूं मैं। दिनों दिन बेचारे नमक और चावल खा रहे हैं।
3: क्यों? कभी कभी कुंदरू के उबले हुए पत्ते भी तो मिल जाते हैं।
2: कुंदरू के पत्ते, वे बेल भी तो बाकी नहीं बचे, सब तो हम खा गए। ऐसे बोल रहे हो जैसे रोज उन्हें राजभोग परोसा जाता है।
3: सन्यासी हैं, थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा ना।
2: पहले जिंदा तो रहें, फिर कष्ट भोग लेंगे। नहीं नहीं शशि, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये आश्रम बंद कर दो।
3: परेशान ना हो भाई, सब ठीक हो जाएगा।
0: सुरेंद्र नाथ जब तक थे तब तक वे मठ की खोज खबर रखते थे। असल बात यह थी कि सभी सन्यासी भद्र संतान थे। अपने अभाव की बात दूसरों से कहना उनके लिए लज्जा की बात थी। और श्री रामकृष्ण के नाम पर जिन्होंने ग्रह त्याग किया है, वे क्या इतना भी उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते? भगवान ने तो स्वयं ही गीता में प्रतिज्ञा की है, योग क्षेम वहाम्यहम्। फिर भी सुरेंद्र नाथ सामर्थ्य के अनुसार खोज खबर रखते और व्यवस्था भी करते। दूर रहने के कारण सर्वदा आना जाना उनके लिए संभव नहीं था। दूसरी ओर रोग से शय्याग्रस्त हो जाने के कारण वह असंभव हो गया था।
1: सब सोचकर उन्होंने छोटे गोपाल को ये कहकर मठ में रहने के लिए राजी करा लिया था, मैंने तुम्हारे परिवार के सारे खर्चे अपने कंधे पर ले लिए हैं, तुम मठ में रहकर घर के कार्य आदि करना और नित्य या एक दिन के बाद मेरे पास आकर मठ के भाइयों का समाचार देना। खासकर ये ध्यान रखना कि जो ही उन लोगों के भोजन आदि का अभाव देखो त्यों ही मुझे ये मालूम हो जाए। गोपाल ने परमहंस देव का सानिध्य पाया था एवं सन्यास ग्रहण करने की भी उन्हें इच्छा थी, किंतु दो छोटे छोटे भाइयों और विधवा माता के भोजन वस्त्र का भार कंधे पर रहने के कारण वो नहीं हो पाया। अब भोजन वस्त्र की दूसरे प्रकार से व्यवस्था होगी और वे सभी साधु रूप में मठ में रहने का सुयोग पाएंगे। ये देखकर गोपाल सुरेंद्र बाबू के प्रस्ताव से सहमत हुए थे।
0: मठ में जो ही अभाव या अनाहार की स्थिति होती, वे सुरेंद्र बाबू को सूचित कर देते और सुरेंद्र बाबू भी उन्हें तभी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपए दे देते। साथ साथ सतर्क कर देते कि उनका नाम प्रकट ना होने पाए, क्योंकि वे जानते थे कि बात फैल जाने पर मठ के भाईगण उनकी सहायता लेने में संकोच करेंगे। गोपाल उन वस्तुओं को मठ में ले जाते और साधुओं के पूछने पर कहते कि यह सब एक भद्र व्यक्ति ने भेज दिया है, मैं तो किसी तरह नहीं लेता। किंतु वे बहुत अनुरोध करने लगे, क्या करता, इसी से लेना पड़ा।
1: और दूसरे मददगार थे श्री बलराम बसु। वे एक दिन अचानक मठ में आ अपनी आंखों से साधुओं के उपवास का हाल देखकर इतने मर्माहत हुए कि घर लौटकर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि वे उस दिन कुंदरू के पत्ते के सुक्तो यानी एक तरह का व्यंजन जो बंगाल में प्रचलित है उसे छोड़कर कुछ नहीं खाएंगे। पत्नी ने सोचा ये तो पेट के मरीज हैं, संभव था आज रोग बढ़ गया है, किंतु बाद में ये जानकारी मिली कि मठ के भाइयों की दुरावस्था देखने के बाद उन्हें और खाने में रुचि नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद बलराम बाबू सुविधानुसार बीच में कुछ साग सब्जी और भोजन की सामग्री आदि मठ में भेज दिया करते थे।
0: अभाव के इन दिनों में एक तीसरे मित्र का भी आगमन हुआ था। उनका नाम था योगेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वे बहुत फुर्तीले थे और बहुत कहानियां जानते थे। काफी उदार स्वभाव था, खाने और खिलाने में प्रेम था। लोग कहते कि वे खा खा कर दरिद्र हो गए थे। मठ के सभी लोगों से वे प्रेम करते थे। आगे चलकर जब कई अवसरों पर मठ में खाने के लिए प्राय कुछ भी नहीं रहता तो यह जान लेने पर बाजार से स्वयं सामान खरीद कर ला देते थे।
1: मठ में वस्त्र आदि भी अत्यंत दरिद्र के समान थे। पहनने के लिए प्रत्येक को मिला एक कौपीन और एक गेरुआ चादर। बाहर जाने के समय आवश्यक होने के कारण सबके लिए एक मात्र उजली धोती और एक उजली चादर दीवार पर टंगी रहती थी, जिसको जब जरूरत होती वे उसे ले जाते। गृह सज्जा के उपकरणों में प्रत्येक के लिए एक चटाई पर बिछी चादर, कुछ जप मालाएं, दीवार पर लगी कुछ श्री राम कृष्ण और देवताओं की तस्वीरें और मित्रों के द्वारा दी गई प्रायः 100 के लगभग बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकें थीं। ये व्यवस्था बहुत दिनों तक बनी रही थी। सन्यासी मठ में केवल कौपीन पहनते, बाहर जाने के समय चादर धारण करते, महीने में एक बार सिर, मूंछ और दाढ़ी मुंडवाते। सबके जो थोड़े बहुत कपड़े लत्ते थे फिर रस्सी की अर्गनी पर लटकते रहते। कोई बक्सा नहीं था। विवेकानंद ने लिखा है,
2: श्री राम कृष्ण के देह त्याग के बाद हम वराह नगर के मठ में कितना जप ध्यान किया करते थे। सुबह 3 बजे सब जाग उठते थे। शौच आदि के बाद कोई स्नान करके और कोई कपड़े बदलकर मंदिर में जाकर जप ध्यान में डूब जाया करता था। उस समय हम लोगों में क्या वैराग्य का भाव था, दुनिया है या नहीं इसका पता ही न था। शशि 24 घंटे श्री राम कृष्ण की सेवा करता रहता था, घर की गृहिणी की तरह भिक्षा मांगकर श्री राम कृष्ण के भोग आदि की और हम लोगों के खिलाने पिलाने की सारी व्यवस्था वो स्वयं करता था। ऐसे भी दिन गए हैं जब सवेरे से 4-5 बजे शाम तक जप ध्यान चलता रहता था। शशि फिर खाना लेकर बहुत देर तक बैठा रहता और अंत में किसी तरह से घसीट कर हमें जप ध्यान से उठा दिया करता था। आहा, शशि की कैसी निष्ठा देखी है।
0: हाँ, यह बात निश्चित ही स्वीकार करने योग्य है कि श्री रामकृष्ण संघ की स्थापना के पीछे गुरु भाइयों का सम्मिलित प्रयास तो था ही, प्रत्येक की निजी देन भी थी। उस प्रारंभिक अवस्था में शशि की निपुणता अपूर्व थी। हमने देखा है कि नरेंद्र नाथ ने भी इसे स्वीकार किया है और एक बार उन्होंने अमेरिका में लिखा था,
2: आहा, शशि ने मठ को कैसा जागृत बना रखा है। उसकी निष्ठा एक बहुत सुदृढ़ आधार है। मठ के भाईगण जब ईश्वर प्राप्ति की आकुल आकांक्षा से इधर उधर तीर्थ दर्शन को जाते या दूर दूरांतर में तपस्या में लीन रहते, तब शशि ही मठ की ठाकुर पूजा आदि को लेकर अटल अचल सुमेरु की भांति वराह नगर में रहा करते। अभाव के दिनों में सन्यासी गण भिक्षा के लिए बाहर निकलते, किसी दिन केवल थोड़ा सान्न लेकर या किसी दिन खाली हाथ लौटते। ऐसे में एक दिन 4 साधु लौटकर जब श्री राम कृष्ण के भोग के लिए कुछ नहीं दे पाए, तब निश्चय किया गया कि उस दिन भूखे रहकर दिन भर भजन किया जाएगा। जैसी बात वैसा कार्य। किंतु श्री राम कृष्ण के भोग की व्यवस्था नहीं कर पाने से शशि को तो शांति नहीं थी। दूसरों को बिना बताए वे एक परिचित पड़ोसी के घर गए। उस घर के अन्य सब लोग मठ के विरोधी थे, अतः उस पड़ोसी मित्र ने शशि का वृतांत सुनकर खिड़की से एक पाव चावल, कुछ आलू और थोड़ा सा घृत दिया। उस दिन उसी से श्री रामकृष्ण को भोग दिया गया। अंत में प्रसाद के कुछ पिंड बनाकर शशि ने दानवों के घर में प्रवेश किया और भजन में निरत साधुओं में से प्रत्येक के मुख में एक एक पिंड घुसा दिया। साधुओं ने खाकर आनंद पूर्वक पूछा, ये अमृत तुझे कहां मिला शशि भाई? विमानो मटकी मां थे। सबको सुख सुविधा देना, सभी विषयों की देखभाल करना और सारे सामानों को ठीक से रखना उनका स्वेच्छा से स्वीकृत कर्तव्य था और श्री रामकृष्ण की सेवा का प्रत्येक अंग जिससे त्रुटिहीन रूप से संपन्न हो उस ओर भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी।
1: पैसे के अभाव के कारण नौकर रखना संभव नहीं था, इसी से गृहस्थी के सारे कार्य उन लोगों को अपने हाथों से करना होता था। झाड़ू लगाना, पाखाना साफ करना, बर्तन मलना, पानी ढोना, यहाँ तक कि बीच बीच में रसोई आदि भी बनानी होती थी। नरेंद्र नाथ को तनिक भी अवकाश ना था। वे ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर गुरु गंभीर ध्वनि से गुरु भाइयों को पुकार कर कहते, हे अमृत के पुत्रगण, अमृत का पान करने के लिए जागो, जागो। फिर जप ध्यान आदि समाप्त कर वे सब एक कमरे में सम्मिलित हो जाते। नरेंद्र नाथ किसी दिन गीता का तो किसी दिन टॉमस कैंपिस लिखित ईशानुसरण का पाठ करते, कभी उन्हें अनुप्रमाणित करने के लिए कहते,
2: कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
0: या कभी गीता बंद करके कह उठते,
2: क्या होगा गीता पाठ करके? गीता शब्द 10 बार कहने से जो होता है वही गीता, गीता, गीता, त्यागी, त्यागी, त्यागी। चाहिए त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, त्याग ही गीता का आदर्श है।
0: इसके बाद दोपहर दैनिक कार्य, जप ध्यान, सत्संग आदि में बिता देने पर तीसरे पहर में शशि उन लोगों को खींचकर भोजन करने के लिए बिठा देते। थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर शाम तक इसी प्रकार 2 घंटों तक चलने वाली श्री रामकृष्ण की आरती शुरू होती और सभी उसमें सम्मिलित होते। आरती के समाप्त होने पर छत पर बैठकर देर रात तक सीताराम नाम गान या दूसरे प्रकार के भजन आदि चलते रहते।
1: सभी समान भाव से सभी कार्यों में सहयोग करते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक अध्ययन आदि में ही प्रायः सारा समय बिता देते और घर के कामों में असुविधा होते देखकर जब आलोचना काफी मुखर हो जाती तब नरेंद्र नाथ ने एक दिन क्षुब्ध होकर कहा,
2: तुम्हारा एक भाई यदि पढ़ने में ही मन लगा रहा है तो इतनी जलन क्यों? लाओ तुम्हारे सारे बर्तन, मैं अकेला मांज दूं।
1: व्यक्तिगत आलोचना भी बंद हो गई।
0: नरेंद्र नाथ के संगीत प्रेम की बात हम पहले भी कह चुके हैं। उनका उत्साह दूसरों में भी संचारित होता। शरद उनसे संगीत सीखते और काली सीखते वाद्य वादन, और उनके संगीत और संगत साथी अन्य कई लोग होते, खासकर बूढ़े गोपाल और तारकनाथ। गोपाल दादा बाजा तबला बजाते। पखावज बजाने वाले की कमी दूर करने के लिए काले ने उस्ताद की सहायता से यह विद्या थोड़ी बहुत सीख ली थी। बीच बीच में भक्तों के घर पर भी नरेंद्र नाथ के गाने की मजलिस लगती है।

0: भूतों का कमरा कभी कभी देश विदेश की अनेक विचारधाराओं के विवेचन, विश्लेषण, ग्रहण, त्याग, तुलना इत्यादि से झूम उठता। कांट, हेगेल, स्पेंसर आदि दार्शनिक गण, यहाँ तक कि नास्तिक भौतिकवादी और अज्ञेयवादी भी इस वाद विवाद से नहीं बचते। गीता, उपनिषद, तंत्र, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध मत, वैष्णव मत, शैव मत आदि अनेक विषय इस सभा के विवेचन प्रसंग में आ जाते थे। वस्तुतः वो घर एक शिक्षा केंद्र या महाविद्यालय में परिणित हो गया था और इस केंद्र के मध्य मणि थे नरेंद्रनाथ। विवेचना शुरू करने पर वे इस प्रकार किसी एक पक्ष में झुकाव दिखाते कि प्रायः अन्य सभी प्रतिपक्ष अविलंबन करने को विवश हो जाते। वे भी तर्क प्रस्तुत कर उन लोगों के मत का खंडन करते। फिर जब वे सब तर्क नहीं ढूंढ पाते तब उन लोगों के पक्ष को ही अपने मत से काट कर छिन्न छिन्न कर देते।
1: यदि यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर है कि नहीं, तो नरेंद्रनाथ पूर्व पक्ष ग्रहण कर लेते और कहते ईश्वर नहीं है, वह मन की कल्पना मात्र है। फिर वे ही बाद में प्रमाणित करते कि ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है। इस प्रकार शंकर का दर्शन कभी नरेंद्र के पूर्व पक्ष के आघात से मिट्टी में मिल जाता और दूसरे ही क्षण उसके उत्तर के पक्ष में तर्क बल से खड़ा हो जाता था। साख्य, योग्य, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांता, इस षट दर्शन में नरेंद्र विलक्षण पंडित तो दिखते ही साथ साथ दूसरों का ज्ञान भंडार भी समृद्ध करते। फिर हिंदू धर्म के विभिन्न शाखाओं की रीति रिवाज, पूजा साधना आदि की भी चर्चा करते।
0: हीनयान और महायान, इन दोनों संप्रदायों की नव प्रकाशित अनेक पुस्तकों का उस अध्ययन कक्ष में अध्ययन और विवेचन होता। भारत के मध्यकालीन धार्मिक नेताओं के जीवन और उपदेशों से वहाँ घनिष्ठ परिचय प्राप्त हुआ। तदुपरांत ही ईसा मसीह ने उन लोगों के हृदय को आकृष्ट किया। साथ साथ बाइबल और ईशानुसरण आदि ग्रंथों का भी उन लोगों ने भली भांति अध्ययन कर लिया। आनुषंगिक रूप से ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदायों के प्रवर्तक सेंट फ्रांसिस, इग्नेसियस लायला आदि संतों के जीवन और उपदेश का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ। उन दिनों नरेंद्र नाथ ने प्रमदा बाबू को जाकर सारे पत्र लिखे थे। उससे ज्ञात होता है कि संस्कृत भाषा विशेषकर वैदिक शिक्षा के प्रति भी उन दिनों उन लोगों में विशेष आग्रह था।
1: नरेंद्र बीच बीच में भारतीय इतिहास अथवा समाज व्यवस्था की विवेचना से भी उन्मुख हो जाते। भारतीय सभ्यता की एकता कहाँ है? श्री रामचंद्र से लेकर के सम्राट अकबर तक भारत की संततियों ने किस प्रकार भारतीय संस्कृति को संपुष्ट किया है आदि विषयों के विचार में वे दिनों दिन निरत रहते। विदेशों का इतिहास, जैसे गिबिन की रोम साम्राज्य के अधपतन की कहानी, कालाइन का फ्रांस की क्रांति का इतिहास, उन लोगों की विवेचना में एक विशिष्ट स्थान पाता। जॉन ऑफ आर्क की जीवनी की वे विवेचना करते और फिर भारतीय वीरांगना झांसी की रानी का भी वे अत्यधिक सम्मान करते।
0: उस समय विभिन्न धर्मों के बड़े बड़े पर्वों को सादर मनाया जाता, जैसे बड़े दिन की रात में धूनी के चारों ओर अधलेटी अवस्था में ईसा मसीह के अविभाव और उपदेशों के प्रचार का प्रसंग चलता। एक दिन गुड फ्राइडे के उपलक्ष में उन लोगों ने सारा दिन उपवास कर व्यतीत किया। उसी समय दरवाजे पर एक यूरोपीय अतिथि का कंठ स्वर सुनाई पड़ा, कौन है ईसा की दुहाई, दरवाजा खोलो। तभी द्वार खोल कर सभी उन्हें घेर कर बैठ गए। इस शुभ दिन में एक ईसाई के मुंह से ईसा मसीह की कहानी सुनेंगे, किंतु उस व्यक्ति ने कहा कि वे सिलेक्शन आर्मी का सदस्य है और वो सब मात्र दो पर्वों को मनाते हैं, ईसा मसीह और जनरल बूथ का जन्मदिन। गुड फ्राइडे आदि के संबंध में वे कुछ ना कह सकेगा। सन्यासियों ने आश्चर्यचकित होकर कहा,
2: ये क्या, जिस दिन आपके भगवान ने क्रूस पे धोकर शरीर त्याग किया उस दिन की कहानी भी नहीं जानते?
0: और वे विदेशी लज्जित होकर जल्दी से चला गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, भारत दुर्दशा का ये मार्मिक वर्णन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। एक स्याह समय कि जहां जिंदा तो थे हम, पर जिंदगी नहीं थी। दरअसल मौत का न होना ही जिंदगी नहीं है। जीते जी भी इंसान मरता है, और मरते हुए हालात में भी वो जिंदा होने का ऐलान कर सकता है। 1857 का समय चलती हुई सांसों के साथ भी मौत का समय था, और 1857 का इतिहास मरते हुए इंसानों के जिंदा होने की कहानी है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने। 1757 तक अंग्रेज समझ जाते हैं कि कुछ राजनीतिक अधिकार मिल जाएं तो अधिक लाभ होगा। प्लासी का युद्ध होता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है, और इस तरह अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगता है। और अगले 100 सालों में ऐसे नियम, ऐसे कानून बनते हैं कि भारत बेहाल हो जाता है। लॉर्ड वेलेसली की सहायक संधि से देसी रियासतों की सत्ता में अंग्रेजों का दखल बढ़ चला था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर राज्यों को अपने अधिकार में ले रही थी। भू राजस्व कर 4 से 5 गुना तक वसूला जाने लगा। कारीगरों और बुनकरों के धंधे खत्म होने लगे। सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता। अंग्रेज भारतीयों को नीची नजर से देखते। धर्म परिवर्तन पर पदोन्नति होती और विभिन्न लाभ दिए जाते।

इन हालात ने भारतीयों को जीते जी मार दिया। रहने खाने के लाले पड़ गए। क्या जनता, क्या रियासतें, क्या सैनिक, सभी के भीतर एक असंतोष सुलग रहा था, एक छटपटाहट व्याप्त थी। इसी बीच सेना में दाखिल हुई इनफील्ड बंदूक, 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी। ये उस समय की आधुनिक बंदूक थी जिसे भरने के लिए कारतूस को दांत से काट कर खोलना पड़ता था। इस चर्बी युक्त कारतूस को भारतीय सैनिक मुंह से खोलने को तैयार नहीं थे। विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से हिंदुस्तान का खून वैसे भी खौल रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ गदर की तारीख भी तय हो चुकी थी, 10 मई 1857। लेकिन आग भला तारीख देखकर कब भड़की है, वो तो आक्रोश है, भावना है जो दिल से उठती है। 29 मार्च 1857, जगह बैरकपुर, बंगाल, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया और अपने रेजिमेंट के अफसर को घायल कर दिया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी सैनिकों को ही उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन आग तो भड़क चुकी थी, किसी ने भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। 6 अप्रैल को मंगल पांडे गिरफ्तार हुए और उनका कोर्ट मार्शल हुआ और 8 मई 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की शहादत ने वक्त से पहले ही 1857 की गदर में आग लगा दी और फिर रणभेरी बज उठी।

अंधेरे में रहते हुए भी उजाले की उम्मीद में सार्थक प्रयास जिंदगी की निशानी है। जुल्म के खिलाफ जंग में सरफरोशी की तमन्ना जिंदगी की निशानी है। और हिंदुस्तान जी उठा था। 8 मई को मंगल पांडे की शहादत के बाद अगले दिन 9 मई को मेरठ की एक रेजिमेंट ने बंदूक उठाने से इनकार कर दिया। सैनिकों को सजा सुनाई गई, वर्दी उतार ली गई, हाथ पैर में बीड़ी डालकर जुलूस निकाला गया और 10 मई को शुरू हुई क्रांति। 10 मई को भारतीय सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह कर उस पर कब्जा कर लिया। 11 मई को वे दिल्ली पहुंचे। विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली घेर ली, जिसे गरीब किसानों, ग्रामीणों, आम लोगों और दुर्ग रक्षकों का भी खुला समर्थन मिला। उस वक्त जो ब्रिटिश अधिकारी दिल्ली में तैनात थे वे भाग गए, जो सामने पड़े मार दिए गए। लाल किले पर कब्जा कर लिया गया और 82 वर्षीय पेंशन याफ्ता बादशाह बहादुर शाह जफर को राजा बना लिया गया। इस घटना ने जादू सा असर दिखाया। सारे लोगों ने सरकारी कोर्ट को नकार दिया और बहादुर शाह जफर में अपना विश्वास जताया। विद्रोह की लहर हर तरफ दौड़ गई, इनकलाब गूंज उठा। बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र से पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक बगावत ही बगावत। कंपनी का कलकत्ता स्थित मुख्यालय वीरान हो गया। 1857 के विद्रोह की योजना बनाई थी नाना साहेब पेशवा, अजीमुल्ला खां, रंगो बापूजी और तात्या टोपे जैसे वीर क्रांतिकारियों ने। कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया। हालांकि ये क्रांति तय समय से पहले ही शुरू हो गई, लेकिन बैरकपुर से ये चिंगारी भड़की तो भड़कती ही चली गई। दिल्ली में बख्त खां ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 30 मई को लखनऊ में इस क्रांति की अगुवाई की बेगम हजरत महल ने। कानपुर में क्रांति का आरंभ हुआ 5 जून 1857 को। नेतृत्व किया नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने उनकी मदद की। 4 जून 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और वो रणक्षेत्र में कूद पड़ी। रानी कालपी होते हुए ग्वालियर गईं, जहां तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, असम में मणि राम दत्त, उड़ीसा में राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह, सतारा में रंगोजी बापू, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, गोरखपुर में गजोधर सिंह और सुल्तानपुर में शहीद हसन ने क्रांति की कमान संभाली। उधर हरियाणा में राव तुलाराम, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, गढ़ा मंडला में शंकर शाह ने नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में बरसों का दबा दर्द जैसे फूट पड़ा था, कि जैसे जिंदगी ने कहा था कि तुम लड़ो कि चहचहा उठें हवा में परिंदे, तुम उठो कि उठ पड़ें असंख्य हाथ, चल पड़ें असंख्य पैर, कि जैसे जिंदगी ने कहा था कि तुम जलो कि रोशनी के पंख फड़फड़ा उठें, कि जैसे जिंदगी ने एक दिन कहा था कि तुम बहो रुधिर प्रवाह की तरह, बहो की लालिमा मिटा सके कलंक की सितम की कालिमा।

1857 के विद्रोह की आग ने अंग्रेजी साम्राज्य के मंसूबों को झुलसा कर रख दिया। लंदन के अखबारों में इस विद्रोह की खबरें लगातार छप रही थीं, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर केंद्रित हो गया था। इस विद्रोह की दहशत अंग्रेजों के मन में हमेशा बनी रही। फ्रेडरिक शेयर ने इंडिया गजट में स्पष्ट संकेत दिया था कि यहाँ के लोग कंपनी सरकार की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, वे इस सरकार को विदेशी हुकूमत के नजरिए से देखते हैं। इस सच्चाई को हमें जान लेना चाहिए। अंग्रेज प्रतिरोध में जुटे। मद्रास, ईरान और चीन से सैनिक टुकड़ियां बुलाई गईं। अनेक देसी रियासतों को लालच देकर अपने पक्ष में किया गया। लोगों को लालच देकर जासूस बनाया। इस तरह साम दाम दंड भेद अपनाकर इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाया। उधर विद्रोहियों के बीच नेतृत्व और समन्वय की कमी थी, साथ ही देश का बहुत बड़ा भाग इस विद्रोह से अछूता भी रहा। परिणाम स्वरूप ये विद्रोह असफल रहा। तात्या टोपे इस क्रांति के ऐसे महानायक थे जिन्होंने अकेले दम पर इस विद्रोह के दब जाने के बाद भी अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों से एक साल तक निरंतर युद्ध किया और अंततः शिवपुरी के जंगलों में उन्हें धोखे से पकड़वाया गया और अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया गया। तात्या टोपे की फांसी के साथ ही 1857 का ये मुक्ति संग्राम समाप्त हो गया, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी हुए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1 नवंबर 1858 को भारत पर क्वीन विक्टोरिया का आधिपत्य घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश शासन और भारतीयों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। सेना में भारतीयों की संख्या घटा दी गई। भारतीयों को ऊंचे पदों से हटा दिया गया। रियासतों और जमींदारियों का छीना जाना बंद हुआ और गोद के अधिकार को भी लौटा दिया गया। इस तरह 1857 की क्रांति की आग पर अंग्रेजों ने राख तो डाल दी, लेकिन उसके अंगारे सुलगते रहे। पहली बार भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता का भाव जागा। स्वतंत्रता का स्वाद चखने को आतुर भारतवासियों को सामंतों के साथ महारानी विक्टोरिया के शासन की जुगलबंदी रास नहीं आ रही थी। एक राष्ट्रीय चेतना जाग उठी थी। 1857 की क्रांति को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें सिर्फ सैनिक शामिल नहीं थे। देश की कई रियासतें इसमें कूद पड़ी थीं। ग्रामीण, कृषक, आम जनता सभी इसमें शामिल थे। इस तरह 1857 का विद्रोह देश की स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। अपने अधिकारों का, अपनी मुक्ति का एक बहुत ऊंचा स्वर जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ये मात्र 2 साल की लड़ाई नहीं थी, एक आग भारतीयों के भीतर सुलग उठी थी अपने देश, अपने राष्ट्र की। और ये आग पूरे 90 साल तक सुलगती रही और आजादी का सूर्य लेकर ही आई। इस तरह 1857 दुनिया की सबसे लंबी क्रांति का आरंभ था। भारत की स्वातंत्र चेतना का उद्घोष था 1857 का मुक्ति संग्राम। अजीमुल्ला खां का लिखा ये गीत 1857 की क्रांति का प्रयाण गीत था, जिसमें भारतीयों ने एक साथ ऊंचे स्वर में ऐलान कर दिया था कि इस जमीन के मालिक हम हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।
1: ये वतन का
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि

आप और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन जीने की कला को हम सीख रहे हैं लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में। अपने विचारों को देखा, जाना कि कितनी तरह के विचार होते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो थॉट्स या विचार हम क्रिएट करते हैं क्या असर डालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बड़ा खुलासा हुआ है हमारे सामने है अब खुली किताब की तरह कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। जो भी विचार हैं, जिस तरह के जितनी तरह के विचार हैं आपने कहा, वो हमारे द्वारा क्रिएट होते हैं। अभी तक हम अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। ये जो विचार हैं, ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे जीवन पे तो डाल रहे हैं असर। अगर है, क्या हमारे बॉडी पर भी इनका असर होता है?
2: नहीं, डेफिनेटली पहला असर तो बॉडी पे होता है, क्योंकि नहीं आत्मा शरीर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट इफेक्ट तो बॉडी पर ही है, फिर सारे जीवन पर है, लाइफस्टाइल पर है। और मानते हैं कि शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स है, तो आपका प्रत्येक विचार या सभी 75 ट्रिलियन सेल्स पर इफेक्ट करता है।
0: बॉडी और ये पर्सनालिटी, दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो जो जो हम थॉट कर रहे हैं वो इस शरीर पर, इस पर भी असर डाल रहा है, ऑर्गन्स पर भी डाल
2: बिल्कुल
0: रहा है।
2: हाँ, थॉट भी डालेगा, और जो पर्सनालिटी बनेगी तब तो वो थॉट आपका बार बार रिपीट होगा।
0: हाँ।
2: और उससे अच्छा और जो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट है वो बढ़ती जाएगी।
0: ओके।
2: बात तो है कि भी वन सिंगल थॉट अफेक्ट्स प्रैक्टिकली ऑल द 75 ट्रिलियन सेल्स ऑफ बॉडी।
0: Okay.
2: ना, मतलब इतनी इसको अगर हम समझ ले तो दिट्स अ क्वाइट एन डीप रूटेड थिंग, कि भी प्रत्येक विचार पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विचार में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, अगर उसमें पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव इफेक्ट हो रही है।
0: ओके। और ये कैसे डाल रहा है?
2: आत्मा का स्थान नहीं, ब्रेन का एक सेंट्रल पोर्शन है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस को भी माना गया है कि वो दिमाग का भी दिमाग है। तो वहां पर आत्मा निवास करती है, और हाइपोथैलेमस इमोशन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और जब एक भी नेगेटिव विचार आया तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट होगी, और उसका असर फिर सारे शरीर पर होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का सारा कनेक्शन ब्रेन के साथ भी है, डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर भी है।
0: ओके। तो मतलब मेरा एक एनर्जी, एक जो थॉट है, वो हाइपोथैलेमस को इफेक्ट कर रहा है।
2: हाइपोथैलेमस में कई सेंटर्स हैं। अगर ने आम भाषा का उपयोग करना हो, मेडिकल लैंग्वेज को बाजू में रख दे, तो ये एक स्विच बोर्ड की तरह, जैसे भी एक स्विच आपने ऑन की, फैन स्टार्ट हो गया, दूसरा स्टार्ट किया, गीजर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस में अलग अलग स्विचेस है। एक स्विच पर इफेक्ट हुई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी।
0: मतलब कोई एक इमोशन से एसिडिटी बढ़ गई
2: हाँ।
0: दूसरा इमोशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तीसरे इमोशन से घबराहट बढ़ गई, ऐसा कुछ?
2: ये भी हो सकता है। और जो दूसरी बात विच इज साइंटिफिकली प्रूवन, कि अगर एक सेंटर, हम कहें भी डिफरेंट स्विच हाइपोथैलेमस में है, एक स्विच अगर ऑन हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इससे दूसरी स्विच ऑन हुई तो डिफरेंट इफेक्ट्स होगी, और इमोशंस की भी इफेक्ट पॉसिबल है। ये अपने आप में एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है कि कैसे क्रोध की क्या इफेक्ट होगी, लोभ की क्या इफेक्ट होगी, अगर क्रिटिसिज्म हुआ तो क्या इफेक्ट होगा।
0: मेरे ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आई है मैंने वहीं तक सीमित रखा, उस दवाई के साथ ही उसको रिलेट किया, या फिर मैंने वो फिजिकल एक्सरसाइजेस और उन तक किया। मतलब व्हाई आई लिव्ड इन दिस फूल्स पैराडाइज, मुझे समझ में क्यों नहीं आया?
3: नो, इट्स नॉट दैट हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज इस बात की भी अवेयरनेस है कि माइंड इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन द बॉडी। ये बात की भी अवेयरनेस है कि अगर आप बॉडी का कितना भी ध्यान रख लें तो भी अगर माइंड हेल्दी नहीं है, सो मेनी यंग प्रोफेशनल्स टुडे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स एट अ वेरी यंग एज। और इनसे अगर बात की जाए तो ये कहेंगे हम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, हम अल्कोहल भी नहीं लेते, हम हर मॉर्निंग अपनी वॉक पर जाते हैं, हम फिजिकली भी ओबीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो लॉजिकली देर इज एब्सोल्युटली नो रीज़न के ऐसे हेल एंड हार्टी एंड जो राइट लाइफस्टाइल, जो हम कहते हैं ना राइट लाइफस्टाइल, वो लीड कर रहे हैं, तो फिर इसको इतनी यंग एज में, मिड 30s और समथिंग या अर्लियर देन दैट, हार्ट अटैक हो रहा है. दैट्स बिकॉज वी आर इग्नोरिंग वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि इनका मन कितने टर्मोइल से गुजर रहा है सारा दिन. तो जबकि ये अवेयरनेस आ गई, अब जैसे हम बॉडी का ध्यान रखते थे हमें मन का रखना है, लेकिन हम मन का क्यों नहीं रख रहे थे, क्योंकि हमने कहा वो तो विदाउट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन है. सो वी एक्सेप्टेड स्ट्रेस. सी वी एक्सेप्टेड ये सारी इमोशंस जो आज हम सोच रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट अर्लियर वी थॉट वी आर नॉट क्रिएटिंग, दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. सो इफ आई एम अ कॉर्पोरेट लीडर और इफ आई एम वर्किंग इन अ मल्टी नेशनल जहाँ ना दिन है ना रात है, सुबह निकलना है रात को आना है, फैमिली टाइम नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, तो दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड इफ दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, देन दीज डिजीजेस ऑल्सो
0: आर पार्ट ऑफ माई लाइफ. इन फैक्ट ओ हो यस, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज दैट.
3: आई कैन नॉट चेंज देम. दे थॉट टू चेंज मीन्स फिर आप अपनी जॉब छोड़ दो या आप अपने एम्बिशंस को कम कर दो,
0: आप संन्यास लेके बैठ जाओ बोलते
3: हैं. संन्यास नहीं भी तो भी, यू नो, इफ यू टेल समवन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा कहेंगे कॉम्पिटिशन इतना है कि अगर मैं थोड़ा भी स्लो हो गया तो. आज लीडर छोड़ो, एक नॉर्मल जॉब के लिए भी, जॉब एक है, लाइन में 100 लोग खड़े हैं जो उस जॉब के लिए रेडी है, थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाओ, द कंपनी विल से ओके यू आर नॉट नीडेड, लेट अनदर पर्सन वॉक इन. सो वी हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशंस चैलेंजिंग है तो स्ट्रेस तो होना ही है. द बिगेस्ट सो कॉल्ड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, यू नो, जिसकी वजह से हम अपना कितना नुकसान कर रहे थे. जब तक सिचुएशन नहीं चेंज होगी, इमोशन नहीं चेंज हो सकती, और जब तक इमोशन नहीं चेंज होगी तो हेल्दी होना पॉसिबल नहीं
0: है. तो
3: सो वी एक्सेप्टेड. सो वी थॉट कि चलो जितना मैं ध्यान रख सकता हूँ उतना रख लेता हूँ, एंड दैट वाज ऑल फिजिकल. बट द आयरनी इज कि इतना ध्यान रखने के बावजूद बीमारियां तो, लेट्स गो बैक 20 years बैक, नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल वाटर, नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉगिंग पार्क्स, डाइट अवेयरनेस. आज तो हर न्यूज़पेपर में डाइट पर आर्टिकल है, आज हम स्प्राउट्स खा रहे हैं, मतलब नेचुरोपैथी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बीमारियां फिर भी बढ़ती जा रही है. बिकॉज वन इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज बींग कन्वीनियंटली इग्नोर्ड जस्ट बाई सेइंग टू योर सेल्फ कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं. तो जितना इस तरफ ध्यान रख सकते हो रखो, फिजिकली सारा रख लो, ताकि कुछ तो एक बैलेंस, विच इज वेरी गुड कि एटलीस्ट वी आर टेकिंग केयर ऑफ सेल्स फिजिकली, लेकिन बैलेंस तो मतलब जो एक डोमिनेंट फैक्टर है कि इफ इट इज माइंड ओवर मैटर. आज दिन तक हम कहते थे अगर हेल्दी होंगे तो खुश होंगे, इट वॉज सपोज टू बी अगर खुश होंगे तो हेल्दी होंगे. यू नो, यू आस्क समवन क्या चाहिए, खुशी चाहिए. खुशी कैसे मिलेगी, हेल्दी होंगे तो खुश होंगे. हेल्दी होंगे तो खुश होंगे, नहीं खुश होंगे
0: तो हेल्दी
3: तो हेल्दी होंगे. तो इक्वेशंस ही तो सारे,
2: लेकिन गहराई में भी नहीं गए. जो शिवानी बहन बता रहे हैं कि ये तो समझ में आता है कि स्ट्रेस की इफेक्ट होती है, लेकिन वो डीप में क्या है, क्यों हो रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड अच्छे से आज तक नहीं कर पा रहे. और आपने भी जो शुरू में पूछा ना, वह बात भी एक प्रकार से सही है कि लोग आज ये समझने लगे कि हम आसन कर लेंगे, कुछ प्राणायाम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे. ये मन पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गहरी बात है, हमें समझ में नहीं आया
0: और हमारे बस में ही नहीं.
2: हाँ, ये भी सोचते
0: हैं कि हम उस पर कुछ कर ही नहीं सकते. और वो मतलब, क्योंकि अगर वो करना है तो मुझे अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, मुझे अपनी एम्बिशंस छोड़नी पड़ेगी. लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सिचुएशन बाउंड नहीं है, अगर हम ये रियलाइज कर लें, देन लेट्स लुक एट इट कि क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पे, क्योंकि उस तरफ तो हमने जाने की कोशिश नहीं की. तो क्या असर डालती हैं ये फीलिंग्स
2: हमारे शरीर में. एक प्रणाली है जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करती है. जैसे शरीर के मसल्स को कंट्रोल करना हमारे बस में, हाथ को ऊपर नीचे करना, परंतु जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हार्ट की एक्टिविटीज, डाइजेशन, किडनी का फंक्शन, ये सब ऑटोमेटिक चलता है. अब जब नींद में सोए हैं तब भी वो अपना नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, इसी के कारण उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक. जो सिंपैथेटिक प्रणाली है, अधिकतर जो हमने टॉक्सिक इमोशंस कहा, वो सभी टॉक्सिक इमोशंस सिंपैथेटिक सिस्टम को बहुत तेज चलाएंगे. और सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्सेलरेटर की तरह है, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम फास्ट काम करती है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सांस की गति तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो हृदय की अपनी धमनियां है, ब्लड वेसल्स है, वो भी छोटी सी हो जाएगी, मसल्स है वो सारे टेंशन में आएंगे, मुंह सूखने लगेगा।
0: तो ये जो हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं जब हम यू नो इन इमोशंस को महसूस कर रहे होते हैं, सो इट्स बिकॉज ऑफ द
2: बिकॉज ऑफ द
0: सिंपैथेटिक
2: सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी।
0: ओके
2: जैसे कि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी में ही डाइजेशन खत्म है, आपको भूख नहीं लगेगी, इवन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में जाते हैं तो बैक पेन होता है, इवन माइग्रेन हेडेक कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये सारा एक चेन ऑफ रिएक्शन है। और जो दूसरी सिस्टम है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, कि जो एक प्रकार से ब्रेक की तरह है, और जब पॉजिटिव इमोशंस हो, खुशी का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, सेटिस्फेक्शन का अनुभव हो, तो थोड़ी सी पैरासिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करती है, कि जो अच्छा है। आज वर्तमान 21वीं सदी में ब्रेक पर तो हमारा पैर ही नहीं है, ब्रेक फेल हो गई है, और एक्सेलरेटर बहुत ही फास्ट चल रहा है, इसके कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह हो रही है।
0: डॉक्टर पटेल, एक मेरे को बात जाननी है। आपने कहा कि जैसे ही हमारी टॉक्सिक इमोशंस जो हैं वो आती हैं हमारे पास, यानी कि हमारे थॉट्स जो हैं बहुत फास्ट चलने लगते हैं,
2: लगते हैं।
0: तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एस्पेक्ट्स हैं, जो ऑटोनॉमस हैं, ये नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइफ में अगर दोनों कुछ नहीं हो रहा, कोई भी इमोशंस इस वक्त नहीं है, तो वो क्या एक बैलेंस में चल रहे
2: हाँ,
0: होते
2: तो
0: हैं?
2: ऑलवेज वो बैलेंस में चलेंगे, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी भी नहीं है, पैरासिंपैथेटिक भी नहीं है, और आप हेल्दीली चल रहे हो। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशंस आए, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है, हम ये नहीं कह सकते परिस्थिति
0: उसमें
2: नहीं
0: हमने वो
2: आएगी,
0: इमोशंस क्रिएट की
2: कि
0: बार
2: हाँ
0: बार, आई थिंक वी नीड टू
2: बस
0: रब इन
2: उस
0: टू आवर
2: बात पर,
0: सेल्व्स नाउ।
2: हाँ, कि भी वो पॉजिटिव इमोशंस को भी लाना है, मुझे थोड़ा डिटैच होना है, पीस ऑफ माइंड को अनुभव करना है, तब पैरासिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट होगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वह सही रूप से चलेगा।
0: पैरासिंपैथेटिक अगर एक्टिवेट हुआ तो क्या क्या बॉडी पर इफेक्ट होता है
2: वो
0: उससे?
2: अधिकतर इससे अपोजिट है,
0: अच्छा, मतलब हार्ट
2: जैसे
0: रेट आपका कम होगा।
2: हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, मसल्स है वो रिलैक्सेशन में जाएंगे, प्रॉपर सिक्रीशन होगा डिफरेंट जूस का, इवन हार्मोनल सिस्टम पर भी उसकी कुछ इफेक्ट है, वो बैलेंस होगी।
0: मतलब अगर पैरासिम्पेटेटिक ज्यादा
2: बहुत
0: सिक्रेट हो
2: ज्यादा
0: जाए
2: तो बुरा है,
0: तो बुरा है वो।
2: हाँ, बट दैट इज एक्सट्रीम,
0: हाँ
2: अदरवाइज जो नॉर्मली है वह नेगेटिव इमोशंस है वो सिंपैथेटिक पर इफेक्ट करते हैं।
0: तो अब हमने कोशिश की थी कि गुस्सा आ रहा है तो उसके ऑपोजिट के इमोशन को क्रिएट करने की कोशिश करें, यू नो, या बिकॉज समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है।
3: समवेयर आई थिंक अपने बिलीफ सिस्टम्स पर वर्क कर लें, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से थॉट्स है। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा एक एक थॉट, एक एक गुस्से का थॉट मेरा डैमेज कर रहा है, दूसरे का तो कर रहा है, काम का तो कर रहा है, लेकिन सबसे पहले मेरा डैमेज कर रहा है, और शायद दूसरे भी से भी ज़्यादा मेरा ही डैमेज कर रहा होगा। यू नो, कई बार ऑफिसेज में अगर किसी सीनियर को आदत हो गई है गुस्से से काम कराने की, तो कई बार जो जूनियर्स हैं उन पर अब उस बहुत बात का असर
0: असर
3: नहीं
0: नहीं
3: पड़ता।
0: पड़ता
3: यू नो, देयर इम्यूनिटी सिस्टम बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर मेंटली ऑल्सो, कि ये तो ऐसे शोर मचाते रहते हैं, एंड समटाइम्स पीपल जस्ट लाफ अबाउट इट, लेकिन जो कर रहा है उसका तो नुकसान हो ही रहा है
0: शरीर
3: ना।
0: के हर अंग का, जैसे कहा
3: हाँ,
0: आपने।
3: एंड फिर उसकी वो नेचर बनती जा रही है। एंड होता भी क्या, अगर मैं किसी को देखकर इरिटेट हो जाऊं, आई माइट शाउट एट देम वंस, लेकिन वो बात मेरे माइंड में तो कुछ मिनट्स तक तो कम से कम रहेगी। ये लोग ऐसे ही हैं, जब तक इन पर चिल्लाओ नहीं, फिर मैं अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रही होती हूँ अपने बिहेवियर के लिए। तो शोर तो 1 मिनट में मचाया, लेकिन कम से कम 15 मिनट उसके थॉट्स चल रहे होंगे, इसका मतलब कितना ये डैमेज हो रहा होगा अंदर वाला। दिस आई एम नॉट रियलाइजिंग
0: इवन हेट्रेड, जिसको हम
3: एवरीथिंग
0: कभी
3: ना।
0: बाहर शो नहीं करते कितनी
3: यस,
0: बार, और अंदर अंदर हम मतलब हेट में जी रहे
3: क्यों
0: होते हैं।
3: सप्रेशन भी क्यों नहीं, सप्रेस्ड आज बहुत सारे वाइव्स फील करते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम अपनी बात नहीं रख पाते, हस्बैंड मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो अंदर अंदर अंदर सप्रेशन, अपनी थॉट्स को नहीं चेंज कर रहे, देन इट इज मैनिफेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ अ डिजीज ना। तो हेल्दी रहने के लिए अगर मुझे ये समझ में आ जाए, एटलीस्ट मैं अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स को तो चेंज कर दूं. इवन इफ आई एम एक्सेप्टिंग कि स्ट्रेस तो होना ही है, चलो लेट्स डू दैट सेकेंडरी, क्या मैं आज ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ ले लूं कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा, ये तो मेरे हाथ
0: अपने
3: में है
0: आप को
3: ना.
0: हेल्दी रखने
3: हाँ,
0: के लिए,
3: ये तो मेरे हाथ में है ना,
0: अपने आप
3: ट्राई
0: को सेफ
3: करो.
0: रखने के
3: यस,
0: लिए.
3: एंड इट्स ओनली अ प्रोग्रामिंग ना. मैं बार बार अपने आप को ये बात कहूंगा कि मैं गुस्से करे बिना काम कराऊंगा, व्हाई विल आई नॉट बी एबल टू डू इट. इट्स अ बिलीफ सिस्टम दैट आई हैव टू चेंज. एटलीस्ट वो इफेक्ट इमिजिएटली मुझे दिखाई देने लगेगा अपने ऊपर. धीरे धीरे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा, मैं अगर ध्यान रखूँ, आई कैन यू नो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई थॉट्स, देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ फियर ऑल्सो, बिकॉज मुझे रियलाइज होगा कि ये सारी नेगेटिव इमोशंस मेरी अपनी क्रिएशन है. इट्स ओनली एक किसी स्टेप से शुरू करना पड़ेगा. एंड आई नॉर्मली फील कि एंगर इज एन ईजियर वन टू स्टार्ट विद, क्योंकि एंगर बाहर मैनिफेस्ट होता है. आज हमें अपने आप को अंदर देखना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है कि कहाँ वरी है, कहाँ जेलसी है. जो हमें बाहर अपने आउटबर्स्ट दिखाई दे रहे हैं ना, मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, एटलीस्ट आई कैन सी दैट. मैं गॉसिप करती हूँ, आई कैन सी दैट. मैं शाउट करती हूँ, आई कैन सी दैट. लेट मी जस्ट स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट ऑन दीज बिहेवियर्स. आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल रियलाइज कि एटलीस्ट जहाँ मैंने अटेंशन दिया, आई वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. जिन चीज़ों को मैंने अभी तक कहा था कि ये नेचुरल है, धीरे धीरे आई विल बी एबल टू गो डीपर टू फियर्स, इनसिक्योरिटीज, रिजेक्शन.
0: आई थिंक क्योंकि अभी तक रियलाइजेशन ये ही नहीं था कि दीज आर माई क्रिएशंस, यू नो.
3: ये भी था कि दीज आर नेचुरल, यू नो,
0: होगा ही
3: करना नेचुरल. ये इतना नेचुरल नेचुरल कहने से इतनी सारी अननेचुरल चीजें हो रही थी.
2: और इवन ये बात भी कि भी एक थॉट की इफेक्ट है, जैसे नहीं, ये एक सिंपल थॉट कि भी आई एम अ पीसफुल सोल, वो तो सिंपल है ना. और कुछ चीजें भले आप बिलीव नहीं भी करो, दैट ऑल्सो कैन हैव अ वंडरफुल इफेक्ट. हमारे गुलजार दादी एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं, जो एंगर की बात कही ना, कि भी एक बॉस थे, वो माउंट आबू में आए, उन्होंने मेडिटेशन को सीखा और ये बात आई कि भी आई एम अ पीसफुल सोल. और फिर ऑफिस में गए, सचमुच पीसफुल रहने लगे. लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि भी क्या बात है. पहले तो हमारा बॉस आता था, गुस्से में ही बात करता, डांटता था, हम लोग भी कांपते थे आते ही. अब इसमें क्या हो गया, तो पीसफुल हो गया सचमुच, लोगों में भी चेंज आया. दादी कहते यहाँ तक कि उसके जो सबॉर्डिनेट थे मेरे पास आए और कहा, दादी इनको रोज आप मेडिटेशन सिखाना, 2-4 महीने में तो जरूर इनको कुछ ना कुछ मेडिटेशन की बात सिखाना. कहा क्यों, तो कि दादी ये जरूर आप करना, क्योंकि पहले जब आता था ना तो हमको लगता था कि काल आ गया, अभी जब भी हमारे बॉस आते हैं तो हमको लगता है बाप आ गया.
0: डॉक्टर पटेल, अगर ये सारी चीजें इतना इफेक्ट कर रही हैं, जैसा आपने कहा कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का एस्पेक्ट आ जाता है,
2: इवन देयर आर अदर्स, नो, देयर आर अदर 3 एस्पेक्ट्स ना जिस पर इफेक्ट होती है. जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऐसे दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम, ये छोटी छोटी ग्लैंड है, आपने भी सुना होगा कि गले में थायराइड ग्लैंड है, साथ में पैराथायराइड है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है.
0: मुझे तो कई बार लगता है कि 80% जनता जो है वो हाइपोथायराइड से जूझ रही है, मतलब हाइपो या हाइपर से जूझ रही है.
2: किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड है जिसको एड्रिनल कहते हैं, ऐसे नहीं, ओवरीज और टेस्टीज, उसमें से भी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. तो ये जो सभी एंडोक्राइन हॉर्मोन्स है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, और साथ साथ में वह केमिकल सीधा खून में चला जाता है, और केमिकल से वो सीधे खून में नहीं जाते हैं. तो ये जो एंडोक्राइन सारी सिस्टम है वो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा की तरह है,
0: डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं.
2: हाँ, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि वो सीधा खून में जाता है. और यह जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो ऑर्केस्ट्रा में अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से नहीं बजे तो पूरा आनंद किरकिरा हो जाता है. तो ऐसे कहते हैं कि भी एक भी ग्लैंड में थोड़ी भी दिक्कत हो तो सारी सिस्टम गड़बड़ा जाती है. और इसका कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस में है.
0: अच्छा.
2: हाँ, हाइपोथैलेमस से जो डिफरेंट ग्लैंड्स है उनको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं. जैसे थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन. अब थायरोक्सिन को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, दूसरा है थायरोक्सिन इनहिबिटिंग फैक्टर,
0: TSH वगैरह.
2: तो अभी TSH को रिलीज भी करना है, बढ़ाना भी है, वो बैलेंस भी हाइपोथैलेमस में. और जो हमारे इमोशंस है उससे उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, और एक इम्बैलेंस हुआ सारे के अंदर डिस्टर्बेंस निर्माण होगा. तो बात यह है कि यह इश्यू बड़ा सेंसिटिव है कि एक छोटा सा भी विचार आपके सारे हार्मोन्स में डिस्टरबेंस ला देगा।
0: तो ये जो टॉक्सिक इमोशंस हैं, ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं।
2: वो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेंगे।
0: अच्छा, तो
2: रिलीजिंग या इनहिबिटिंग जो इफेक्टर्स है वो डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे तो हार्मोन्स पर भी इफेक्ट होगी। ऐसे दूसरा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, कि जो किडनी के ऊपर छोटी सी ग्रंथि है। अब कॉर्टिसोल की जरूरत भी है हमें, क्योंकि उससे एनर्जी भी आती है, परंतु कॉर्टिसोल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो भी उसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, यहाँ तक कि ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तो इसके कारण स्ट्रेस से या टॉक्सिक इमोशन से कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है।
0: हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है।
2: हाँ, हाइपोथैलेमस पहले इफेक्ट होता है, फिर उस पर इफेक्ट।
3: इसीलिए कहते होंगे ना, जब गुस्सा आता है तो मुझे लगता है मुझे एनर्जी मिली है।
2: हाँ, एक बार
0: गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं,
3: बिकॉज़ इट मस्ट बी गिविंग दैट सर्ज ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम। लेकिन वो टेम्पररी हुआ, और बार बार करने से उसका लॉन्ग टर्म फिर
2: नो, इवन एवरी टाइम, हर बार आपको गुस्सा आया, भले एनर्जी लगी, परंतु तब ब्रेन पर भी इफेक्ट हुई और ब्रेन डैमेज हुआ।
0: अच्छा,
2: हार्ट पर भी नेगेटिव इफेक्ट हुई, हार्ट भी डैमेज हुआ।
0: मतलब अगर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है
2: तो ब्रेन पर भी डैमेज होता है,
0: ब्रेन पे असर पड़ रहा है उसका।
3: एंड दैट्स व्हाई इफ वी सी मोस्ट ऑफ दीस डिजीजेस, थायराइड और वंस यू गेट द प्रॉब्लम यू आर लिविंग विद इट फॉर अ लाइफ टाइम।
0: हाँ, मतलब
3: क्योंकि हम रूट को तो, अगर रूट थॉट्स है उसको तो मैनेज करने के बारे में हमने नहीं सोचा, तो इनमें से जो भी इलनेसेस हैं एक बार हो गई तो हम सिर्फ दवा ले लेके उसको बस चलाते रहते हैं, उसके बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। रूट को अगर ठीक कर लेते
2: पूरी आज नई ब्रांच डेवलप हो रही है मेडिसिन की, जिसको कहा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि कैसे साइकिक फैक्टर्स है वह ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं और इन टर्न वो इम्यून सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। नहीं, इम्यून सिस्टम वो एक हमारी डिफेंस मैकेनिज्म
0: है। बार बार बीमार जो हम पड़ते हैं, मतलब हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि बार बार बीमार
2: पड़ते हैं, तो नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, और साथ साथ इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर भी निर्माण कर सकती है।
0: अच्छा,
2: जो कहीं कैंसर होते हैं ना, कहते पता नहीं क्यों कैंसर हो गया, कि वो तो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ठीक से एक्सरसाइज कर रहा है, वेट भी ठीक है, डाइट ठीक है, तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गई। इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। वास्तव में बॉडी को ये है कि भाई ये मेरी बॉडी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर रिकॉग्नाइज नहीं करे, जैसे नहीं हमारे सोल्जर है वो हमारे लोगों को मारने लगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, दे आर अवर ओन पीपल, तो है ना, ऐसा इम्यून सिस्टम में होता है।
0: Okay.
2: और इसके कारण कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
3: अपने ही डिफेंस मैकेनिज्म को अटैक कर दिया,
2: नहीं, क्योंकि वो फॉल्टी हो गया और रिकॉग्नाइज नहीं करने लगा।
0: वही जैसे कंप्यूटर है, उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई वायरस ऐसा आया, तो उसका पूरा वो कोलैप्स ही हो गया,
3: नहीं, अच्छी वैल्यूएबल फाइल्स को ही डिस्ट्रॉय कर,
0: डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय,
2: नहीं, सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है।
0: अच्छा, ये जो कॉर्टिसोल था, क्योंकि किडनी के बारे में बात की आपने, ये डायबिटीज को एक्टिवेट करने में भी क्या ये रिस्पॉन्सिबल?
2: कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन है जिसकी काफी इफेक्ट है। जैसे कॉर्टिसोल इज एन एंटी इंसुलिन हार्मोन, वो इंसुलिन से अपोजिट काम करता है, तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन सप्रेस होगा और डायबिटीज पर भी उसके इफेक्ट होगी। एटलीस्ट जो कंट्रोल है डायबिटीज का वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक जो बात गहराई से समझने की है कि जो अभी भी साइंस अब मानने लगा है, 100% नहीं मान रहे हैं, वो यह कि हमारे विचार भले यह कोई मैकेनिज्म न भी हो, अब तक तो डॉक्टर्स यही सोचते थे कि भाई मन में जैसे गुस्सा आया तो क्या मैकेनिज्म होगी ताकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, लेकिन अब तो ये मानने लगे कि विचार है वो भल मैकेनिज्म न भी हो, जो कनेक्शन है फिजिकल कनेक्शन न हो तो भी बॉडी पर इफेक्ट कर सकते हैं। एक होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन, कि मन एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर कैसे इफेक्ट करेगा, उसका कनेक्शन एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी इफेक्ट होती
0: है। एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करता है?
2: हार्मोन है कि जो अपने जो बॉडी में पानी है उसका बैलेंस रखता है। अगर नहीं, पानी ज्यादा हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो वो जो बैलेंस है वो ये हार्मोन करता है, और टॉक्सिक इमोशन से एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकती
0: है। तो वो वाटर रिटेंशन जो होती
2: हो जाएगा, या तो एक्सेस नहीं, ज्यादा यूरिन होगा और वाटर है वो शरीर के बाहर निकल जाएगा,
0: और कई बार स्वेलिंग हो जाती है, ज्यादा रिटेन हो जाता है,
2: रिटेन होने से स्वेलिंग होगी।
0: हाँ।
2: तो अब तो ये मानने लगे कि वो फिजिकल कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है, मन बॉडी पर डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है।
0: अमेजिंग शिवानी, मतलब दिस इज समथिंग, इट्स अ रेवोल्यूशन। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आज बात कर पा रहे, व्हाट डू यू से,
3: I think it gives a big hope to all of us that we don't need to live with these diseases.
2: Yeah.
3: It's a big hope. कि जैसे परिस्थितियां मैं अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ, रिश्तों को कंट्रोल में ला सकता हूँ। हमने इतनी बार इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि रिश्ता, चाहे उसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, हम अपने सोच को ठीक कर लें, रिश्ता ठीक हो जाएगा। आज हमें समझ में आया, हम अपने सोच को ठीक कर लें, शरीर ठीक हो जाएगा, तभी तो कहीं एनर्जी इन्वेस्ट होगी। सिवाय अभी लुकिंग एट इट शॉर्ट टर्म, हमें ये पता है अगर लाइफ में बॉडी ठीक नहीं चली तो जो भी चीज़ें हम अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सकते। तो आज उल्टा इट्स अ होप, इट फैक्ट इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि एक और चीज़ मेरे कंट्रोल में आ गई है। था पहले मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आ सकता है, मेरे रिश्ते मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, आज ये कि मेरा शरीर भी मेरे कंट्रोल में आ सकता है। नहीं तो अभी तक कह रहे थे वो बीमारी हो गई, या अब बीमारी हो गई तो अब ये रहेगी। आज हमें ये पता चलता है बीमारी भी मैंने क्रिएट की थी, ठीक भी इसको मैं ही करूँगा। और अगर अभी कोई बीमारी नहीं है तो मैं अगर ठीक चलूँ यहाँ, तो यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। दिस इज लाइक वंडरफुल न्यूज़ फॉर ऑल।
2: और मैसेज तो एक इम्पोर्टेंट ये है कि भी डरने की बात नहीं, ये सब जान के आप लोग डरते भी हैं।
3: जैसे आपको नॉलेज मिलती है कि सब कंट्रोल में आ गया है, तो एक्चुअली तो अच्छी बात है ना कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में।
2: पॉजिटिव समझो कि दिस इज इम्पोर्टेंट।
0: नो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जिस्ट कर रही है, आज बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, हम उनको ठीक करने के भी रिवर्सल प्रोसेस भी कर पाएंगे।
2: डेफिनेटली वी कैन डू इट।
0: सोच को अपनी चेंज करके, डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी तक जिंदगी के कई, जैसा आपने कहा कि रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे परिस्थितियों में, अपने आप अपने थॉट को चेंज करके, लेकिन आज अगर इन बीमारियों को भी हम रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को, तो उससे बड़ी तो कोई मिरेकल नहीं हो सकता। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: सचमुच आज जो हमने बात की है, हाँ थोड़ी थोड़ी घबराहट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक जैसे रियलाइजेशन होता है, जैसे हमें पहली बार समझ में आया था कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं, बहुत डिफरेंट लगा था। सिमिलरली हमारे ही द्वारा क्रिएट किए गए ये थॉट्स और फीलिंग्स मेरे शरीर के जितने भाग हैं, जितनी बीमारियों से आज मैं जूझ रही हूँ, उनको क्रिएट करने में सहायक हुए हैं। इनफैक्ट उनके द्वारा बहुत हेल्प मिली है ये बीमारियां क्रिएट होने में। पहले ये पता चला, अब हम उसको रिवर्स करने के प्रोसेस को भी जानेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से आप एक्सेप्ट करें, समझें, जानें कि क्या क्या हो रहा है आपके शरीर में। और जैसे हमने थॉट्स को देखा, शायद अगर शरीर के बारे में सोचना शुरू करेंगे, हमें ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। कोई बात आपके मन में है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं ईमेल पर या फिर फ़ोन पर। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे करें। अगर ये थॉट्स मुझे इन बीमारियों की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो यही थॉट्स, यही इमोशन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इन बीमारियों को ठीक भी तो कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, वेलकम सिस्टर।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
4: थैंक यू
3: सिस्टर। आपसे बात हो रही थी संस्कारों की, लेकिन उस पर वर्क करते करते मैं सोच रहा था कि भाई खाना पीने में आप वेजिटेरियन हो गए और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए और मतलब जो थोड़ी बहुत आदतें थी ऊपर की छोड़ दी, लेकिन जो अंदर है संस्कार जिसे नेचर कहते हैं,
4: yes.
3: और मैं उसको समझता था ये तो मेरा बेसिक नेचर है यार, हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ, कांट आई बी नेचुरल। मतलब जो मेरा बेसिक नेचर है ना उसको मेरा मन बताता है और बड़े अच्छे लॉजिक देता है, कहते हैं यू हैव टू बी नेचुरल ना, नेचर थोड़ी बदल सकता आदमी, yes. पैदा ही ऐसा हुआ।
4: इस लाइन को आज पकड़ लेते हैं, यू हैव टू बी नेचुरल, दिस इज योर नेचर। मुझ आत्मा की नेचर जो है मुझे उस अनुसार ही व्यवहार करना है, दैट्स श्योर कि जो मेरी नेचर है मुझे उस अनुसार बिहेव करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट इज टू नो कि मेरी नेचर क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये कपड़ा व्हाइट है तो इसका कलर क्या है, ये व्हाइट है। अब हम कहें इसका ओरिजिनल कलर क्या है,
3: व्हाइट है।
4: अब पूरा दिन इसको पहना तो कहीं कुछ दाग, कहीं मिट्टी, कहीं कुछ चिकड़, कहीं कुछ और, कहीं कोई पत्ता गिरा, कहीं कुछ खाने की चीज गिरी, तो रात तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई दाग लग गए। किसी ने आकर कहा कितने दाग लग गए, कितने मैले हैं, इसको साफ करो, लेकिन उस पूरे दिन के अंदर मुझे ये भूल गया अवेयरनेस कि ये ऊपर से लगे दाग है,
3: इससे पहले ये वाइट थी,
4: वो तो भूल ही गया। मुझे लगा ये ऊपर से जो लगे दाग है ये इसका डिजाइन है, तो मैंने बोला इसको क्या उतारना है इस दाग को, ये तो इसका डिजाइन है। सामने वाले ने कहा ये इसका डिजाइन नहीं है, ये ऊपर से लगा दाग है। तो मैं कहा नहीं, जब से मैंने इसको देखा है तब से तो इसका डिजाइन ऐसा ही है। इसलिए जो आपने कहा जब से मैं पैदा हुआ, चाहे वो पेरेंट्स फैमिली से कुछ संस्कार मिले, किसी ने कहा आप किस मंथ में पैदा हुए तो उस जोडियक साइन के अनुसार आपके संस्कार हैं, ये संस्कार हैं, लेकिन ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर नहीं है। दो चीजों में बहुत फर्क है। वो जो दाग अभी इस ड्रेस पे लगे हैं
3: जिसको मैं डिजाइन समझ रहा हूं,
4: वो ईश्वर इस ड्रेस का हिस्सा है, राइट। इफ आई हैव अ ब्लैक पैच हियर On this dress, if I have a black patch here, इस क्षण वो ब्लैक पैच इस व्हाइट ड्रेस का हिस्सा ही लगेगा। अगर कोई बाहर से देखे तो वो ब्लैक पैच बिल्कुल इसके अंदर हिस्सा बनकर रखेगा, लेकिन नॉलेज, वन पॉइंट ऑफ नॉलेज विल चेंज एवरीथिंग। अज्ञान है तो हम कहेंगे ये ब्लैक काला दाग इस साड़ी का हिस्सा है, इसका डिजाइन है। ज्ञान है तो हम कहेंगे ये ड्रेस व्हाइट कलर की है, ये सिर्फ ऊपर से लगा हुआ दाग है, ऊपर से लगा है, मिट सकता है। ज्ञान और अज्ञान फर्क,
3: ओके,
4: इतना
3: अज्ञान
4: फर्क।
3: में अज्ञान में हम बोल रहे तो नेचुरल है,
4: नेचुरल है, ये तो इसका हिस्सा है, अज्ञान है,
3: ओके।
4: क्योंकि हमने बहुत समय से उसको व्हाइट कलर पे तो देखा ही नहीं, हमने बहुत समय से उसको उस दाग के साथ ही देखा है ना।
3: हो सकता है इस जन्म में जब से पैदा हुआ तब से देखा नहीं ना,
4: तब से देखा नहीं ना,
3: तो पिछले जन्म का थोड़ी मालूम है,
4: नहीं मालूम है ना,
3: जब से मैंने शर्ट खरीदी तब से
4: यस, जब से मैंने खरीदी तब से ही है।
3: लेकिन कोई जो मैन्युफैक्चरर बोलेगा मिलके कि भाई साहब मैंने ऐसा बनाया नहीं था, ये तो गलत है, ये धब्बा लगा हुआ है, आप इसको मिटा दीजिए।
4: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वो मिट सकता है, कोई चीज पे, एक ड्रेस पे कोई ऐसा भी चीज डिजाइन हो सकता है, एक दाग हो सकता है जो मिट नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ने कहा ये तो ऊपर से लगा दाग है, ये तो ऐसे ही मिट जाएगा। और इसीलिए जो उस दिन आपने पढ़कर सुनाया कि कोई भी चीज बार बार करने से लूप में चली गई है, मेडिकल साइंस भी कह रही है, डॉक्टर्स न्यूरोसर्जन्स भी कह रहे हैं, वो लूप में चली गई है, ब्रेन में वो वायरिंग बन गई है और इसीलिए जब भी वो बात आती है वो ही न्यूरॉन्स फायर होंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या कहा, इट कैन बी चेंज्ड। साइंटिस्ट ने भी कहा इट कैन बी चेंज्ड, परमात्मा ने कहा इट कैन बी चेंज्ड, सो वी नाउ जस्ट नीड टू वर्क ऑन हाउ टू चेंज इट।
3: सीन पीपल,
4: यस,
3: हु हैव चेंज्ड,
4: वी हैव सीन आवरसेल्व्स हु हैव चेंज्ड।
3: तो पीपल जरा हट के बोल रहा था ताकि मैं,
4: इम्पोर्टेंट इज अपने जीवन के अनुभव। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन की यात्रा में कभी ना कभी अपनी आदतें नहीं बदलता है। इट कुड गो टू द गुड साइड
3: और बैड,
4: इट कुड गो, बट इट्स अ चेंज ऑफ हैबिट ना।
3: मैंने आपसे नहीं कहा था 10 आउट ऑफ 10 मेरा एक तो चेंज हुआ,
4: आउट ऑफ 10 एक हैबिट चेंज
3: हुआ था, बोला था ना आपको
4: चेंज हुई,
3: इसका मतलब चेंज हो सकता है।
4: सी, आपने पिछली बार क्या कहा, पहले जब मैं कॉलेज में था सब लोग आसपास सिगरेट पीते थे, मैं नहीं पीता था।
3: सही
4: हैबिट, उस समय क्या हैबिट थी कि नहीं लेता था, तब भी लोग आसपास लेते थे, नहीं लेता था, वो एक हैबिट थी, वो भी एक संस्कार था। फिर मन ने कुछ और थॉट्स क्रिएट की, बुद्धि ने निर्णय लिया तो लेना शुरू किया, ठीक है, वो भी एक हैबिट बनी, चेंज ऑफ हैबिट। अब इस केस में द अर्लियर हैबिट वॉज हेल्दी, नहीं लेने की, फिर एक हैबिट क्रिएट की जो मन और शरीर दोनों के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि शरीर हेल्दी नहीं रहेगा उस हैबिट से, मन के अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी, मन हमेशा रिलैक्स्ड होने के लिए एक सब्सटेंस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, मन एडिक्शन की तरफ जाएगा, आत्मा कमजोर होगी क्योंकि आत्मा की विल पावर घटेगी। तो हमारी चेंज ऑफ हैबिट हुई towards something which was not right for us. फिर समय बीता, फिर कुछ मन ने सोचा, बुद्धि ने एक अलग निर्णय दिया, फिर हैबिट चेंज हुई, फिर हमने उस चीज को छोड़ दिया, तो मन भी हेल्दियर हुआ, शरीर भी हेल्दी हुआ। जस्ट इन वन लाइफ स्पैन वी सी सो मेनी चेंज ऑफ हैबिट्स। हम सब सारा दिन में देख रहे हैं अपने आप को, कोई बहुत लेट उठते थे, सडनली उसका जॉब या स्कूल डिमांड करता है जल्दी उठना, कल से चेंज ऑफ हैबिट। चेंज ऑफ हैबिट्स तो हम सब देख रहे हैं, तो वी कैन नॉट से कि कोई भी ऐसी हैबिट है जो चेंज नहीं हो सकती।
3: एक हैबिट अगर हम चेंज करें तो दूसरी हैबिट चेंज करने के लिए भी शक्ति आ जाती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई कैन चेंज। मेरा बिलीफ सिस्टम था, अरे ये तो किताबी बातें हैं, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है, और इतना मैं इस पे कॉन्फिडेंट था इस नेगेटिव शब्द पे कि नॉट पॉसिबल, ओनली फॉर बुक्स। लेकिन अब आपकी बात सुन के देख रहा हूँ कि एक चीज छोड़ने में ना एक कोई एक, एक कहीं एक कॉन्फिडेंस और शक्ति आते, ये तो बहुत आसान है,
4: क्योंकि एक आत्मा ने अपनी आदत पर विजय पाई तो विल पावर बढ़ेगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी ना। एक डिपेंडेंसी को छोड़ा अगर तो शक्ति बढ़ेगी। अब जैसे ही आत्मा की शक्ति बढ़ी और एक चीज आत्मा ने कर ली है तो दूसरी बार करना
3: आसान है,
4: आसान, तीसरी बार और आसान है, आपकी ब्रेन की वायरिंग हो जाएगी। रोज ने कहा ना, रिपीटेड बार बार करेंगे तो अगली बार फास्ट होता जाएगा।
3: और जैसे हमारी बुरी आदतें ऑटोमोड पे चले जाती है, हो सकता है ये भी चली जाए,
4: हो सकता है, नहीं
3: हाँ।
4: हो सकता है, क्यों,
3: मतलब
4: एनीथिंग डन रिपीटेडली हो सकता है, क्यों, ऐसे थोड़ी है कि बुरी आदतें ऑटोमेटिक मोड में जाती है और अच्छी वाली नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी, दे हैव टू गो, वो ऑटोमेटिक मोड में जाना ही है क्योंकि वो लूप बन जाएगा।
3: मैं आदतों की बात नहीं कर रहा था, मैं कॉन्फिडेंस ऑफ
4: संस्कार परिवर्तन करने की आदत भी हो जाएगी,
3: हाँ, उसकी बात कर रहा था, संस्कार परिवर्तन करने की जो शक्ति है इतनी बढ़ जाएगी कि मैं एक सेकंड में सोचोगे हटाना तो हटा दिया, आज से नहीं करना, नहीं करना,
4: नहीं करना,
3: आज से ऐसा नहीं बोलना, नहीं बोलना,
4: बिल्कुल बिल्कुल, आज से इससे ऐसा नहीं कहना, ठीक है, हो गया, क्योंकि आत्मा का अपने ऊपर जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो बढ़ गई है। इसको कहेंगे आत्मा राजा मालिक।
3: पर सोचा जाए तो ये आदत तो मेरे में पहले भी थी, ये वाली इतनी स्ट्रेंथ, इस आदमी से बात नहीं करना है, हेट हिम टू हेट हिम,
4: तो आदत तो होती
3: मतलब
4: है,
3: मतलब ये शक्ति तो थी ना,
4: आत्मा में शक्ति तो है ही, एनर्जी, एनी एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड पर्पस, सेम एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर अ डैमेजिंग पर्पस ऑल्सो, वही आत्मा की शक्ति, केयर, कंपैशन, फॉरगिवनेस, लव, एक्सेप्टेंस, ये भी क्रिएट कर सकती है।
3: तो हम लोग एक एक्वायर करेंगे इनको, ये
4: बाय नहीं, आत्मा की शक्ति है ना जो ये फीलिंग्स,
3: बाय बर्थ होते हैं ना,
4: आत्मा की शक्ति है ना लेकिन जो ये फीलिंग्स क्रिएट कर सकती है, ये आत्मा की शक्ति है, और वो ही आत्मा की शक्ति एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, फियर, वो भी क्रिएट कर सकती है। आत्मा तो सेम ही है, क्या क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलाज के लिए यूज करनी है या युद्ध के लिए यूज करनी है, शक्ति तो सेम ही है। शक्ति का उपयोग करने वाला डिसाइड करेगा कि शक्ति को किस डायरेक्शन में और किस कार्य के लिए उपयोग करना है। अब जैसे आपने कहा, अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये छोड़ना है, ठीक है, हो गया, ये करना है, ठीक है, हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार दो बार करने से आत्मा को ये अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि मैं जो डिसाइड करूं मैं कर सकता हूं। वी स्टार्ट टेकिंग गारंटी ऑफ आर सेल्फ एंड दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट।
3: ऐसा हुआ था कि आज से कुछ साल पहले एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास गया था, मैं स्किन में कुछ रैशेस प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो बोल रहा था कि आई कैन ट्रीट यू लेकिन आपको नॉन वेजिटेरियन छोड़ना होगा। मैंने बोला तुम पागल हो, फिर इंग्लिश दवा दे दो, कोई और दे दो, मेरे से ये नहीं होता।
4: जिस क्षण उस टाइम आत्मा ने कहा ये मेरे से पॉसिबल नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, उस क्षण आत्मा क्या कह रही है, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, कि मुझे मालूम है ये मेरे लिए सही नहीं है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, मतलब मुझ आत्मा का अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, मैं गुलाम।
3: लेकिन अब क्या हुआ, आफ्टर जो मेडिटेशन आपने कहा और ये अवेयरनेस की बात हुई और उसमें थोड़ा सा वर्क किया, ज्यादा नहीं, तो कुछ दिन पहले अबाउट लास्ट मंथ मुझे डॉक्टर ने बोला देखो मैं आपको 40 डेज का डाइट प्लान देता हूँ लेकिन आप मीठी चीज नहीं लेना, शक्कर चाय में तक नहीं डालना। उस दिन से वो तो मैं ओके, तो ये सेट ओके, इतना आसान है, हाँ अच्छा नहीं लेना, आपने बोल दिया ना। तो फिर को फोन करके पूछता है, आर यू श्योर? मैंने बोला, उसको मालूम था कि मैं मिठाई खाए बिना मैं खाना नहीं खाता, मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए टेबल। उस दिन से आज तक नहीं लिया।
4: वो आत्मा जो गुलाम थी, वो आत्मा अब क्या बन गई, मालिक। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन हाउ वी फील व्हेन आवर लाइफ बिकम्स लाइक दिस?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग वेरी लाइट,
4: लाइट।
3: एक हैवीनेस जो थी ना, एक अजीब सा बर्डन था, आई डोंट नो व्हाट, उसको मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ लेकिन वर्ड्स में इतना नहीं बोल पाऊंगा। एक लाइटनेस लगती है और एक अपने आप से प्यार लगता है, विच आई नेवर हैड बिफोर। आई हैव रियलाइज दिस न्यू थिंग। मैं इतनी अपने आप से नफरत करता था, मैं कमजोर, मैं ये, मैं वो, मैं जब आउट ऑफ टाइम बोल देता हूँ जिससे नहीं बात करनी उसको भी हेल्प कर देता हूँ, बाद में यही होता है, आई डोंट नो व्हेन विल आई चेंज, ऑलमोस्ट कर्सिंग मायसेल्फ। अब ना इन छोटी छोटी बातों से भी ना थोड़ा सा आई स्टार्टेड लाइकिंग माई ओन सेल्फ।
4: व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि आत्मा के जो दाग है वो मिटते जा रहे हैं, तो जो आत्मा की ओरिजिनल कलर है वो इमर्ज हो रही है, और वो ओरिजिनल कलर तो बहुत प्यारी है, तो वो प्यारी ओरिजिनल कलर को देखकर हम खुद खुद से प्यार करने लग जाते हैं। जैसे वो आत्मा की ओरिजिनलिटी हमें दूसरों में अच्छी लगती थी, तो अपने में इमर्ज होगी तो अपने में भी तो अच्छी लगेगी ना।
3: बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है अब तो, बहुत, मतलब विदाउट माई नॉलेज। अभी पैकिंग कर रहा था शूटिंग पे जाने के लिए, तो उस पेटी जिसमें मैंने लड़के को बोला ये सामान डाल दे, तो उसमें एक शॉल पड़ी थी, मेरे हटाओ ना गर्मी हो, तो आप रहने दो ना, आपको कौन सा उठाना है, प्लेन में ही जाना है, ये अगर कोई पहले बोलता तो मतलब तुम मुझे सिखा रहे हो, मतलब क्या क्या हो जाता। तो मैंने बोला अच्छा रहने दे, अभी तक पड़ी है, ले आया मैं। व्हाट इज दिस?
4: दिस इज व्हाट? दिस इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सोल।
3: बट आई एम शॉक्ड।
4: यू आर शॉक्ड सीइंग योर ओन ओरिजिनल नेचर? यस, क्योंकि बहुत समय से देखी नहीं है ना।
3: मतलब स्टाफ तू मुझे समझाता है इतने हजार रुपए पर मंथ में।
4: दिस इज ईगो। ईगो क्या करेगा? ये तर्क देगा। उस समय हमें वो तर्क सही लगेगा। उस समय आपके पास बहुत सारे जस्टिफिकेशन हो सकते हैं। एक, गर्मी, उसमें गर्मी में शॉल चाहिए। दूसरा, ये कौन, ये मेरे को सिखाएगा, इसको कुछ समझ है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहां मौसम कैसा है, ये मुझे बता रहा है कि वहां शॉल लेके जा। दिस इज ईगो स्पीकिंग।
3: और ये भी नहीं है कि मुझे इतने काम है पहले, अब तेरे को सिखाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। जो बोला इतना कर, जैसे बोला उतना सुन। पहले से बोलता था, तेरे को बोला ना हटा दे।
4: अब जब ये सब क्रिएट होता था तो अंदर भी
3: वो जो बात आई थी ना, लाइकिंग माई सेल्फ,
4: लाइकिंग माई सेल्फ। एंड अब जो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ, इसमें आई एम फीलिंग नाइस एंड मेकिंग अदर पीपल फील नाइस।
3: उन सबसे ऊंचा और सबसे बेस्ट फीलिंग यही कि आई एम लाइकिंग माई सेल्फ, विच आई नेवर हैड।
4: यू आर लाइकिंग योर सेल्फ बिकॉज यू आर फीलिंग नाइस। जब अंदर यहां ईज होगी, शांति होगी, कोई उथल पुथल नहीं चल रही है, वी विल लाइक आर सेल्फ। अब उथल पुथल अंदर नहीं चल रही तो औरों को भी प्यारी वाइब्रेशन भेजी है, वहां से भी अच्छी आ रही है, तो वी आर फीलिंग नाइस। ये धीरे धीरे जब बढ़ेगा, हमें ऐसा लगेगा कि क्या किया आज, वाई एम आई फीलिंग नाइस? क्योंकि आज तक तो जीवन में बहुत मेहनत करते थे टू फील नाइस।
3: आई नो, कितने कितने
4: कुछ करना होता था ना टू फील नाइस।
3: एडिक्शंस हो गई थी नाइस फील करने के चक्कर में।
4: इवन लाइक जीवन में कुछ होना चाहिए टू फील नाइस। जैसे बच्चा आज फर्स्ट आ गया, कोई घर में कुछ है, किसी ने कोई, मतलब समथिंग हैड टू हैपन टू फील नाइस।
3: त्योहार है,
4: कुछ भी। और अब कैसा लगता है मेडिटेशन करने के बाद कि कुछ हुआ नहीं आज सारा दिन में, कुछ किया नहीं है, कोई ऐसी ओकेजन नहीं आई, कोई बात नहीं आई, आई एम फीलिंग नाइस। दिस फीलिंग नाइस इज माई ओरिजिनल कलर। तो जब ये ओरिजिनल कलर इमर्ज होता है तो आत्मा को बहुत ईज एंड रिलैक्स्ड फील होता है। ये ईज एंड रिलैक्स्ड जो कुछ मिनट मेडिटेशन के दौरान होता है, फिर ये सारा दिन में भी रहने लगता है। द मूड, द फीलिंग जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस में क्रिएट होती है, क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि उस टाइम हमने प्योर थॉट्स क्रिएट किए। सपोज हमने एक थॉट क्रिएट की, आई एम अ मास्टर ऑफ दिस बॉडी, मैं मालिक हूं, मैं एक प्योर आत्मा हूं। दो मिनट भी अगर ये थॉट क्रिएट की एंड मन वो ही थॉट से चल रहा है तो केमिकल्स अलग सीक्रेट हो गए अंदर, ब्रेन में अलग मैसेजेस चले गए, बॉडी को अलग सिग्नल्स चले गए, आत्मा एंड बॉडी बोथ फील्स एट ईज। अब ये कुछ देर के लिए है। अगर इसको जीवन में ट्रांसलेट नहीं किया, मतलब उठे मेडिटेशन से गुस्सा करने लगे, डांटने लगे, ये किया, तो वो थोड़ी देर का एक्सपीरियंस रह जाता है। सो दैट्स व्हाई पीपल नाउडेज से आई फेल्ट ब्यूटिफुल ड्यूरिंग माई मेडिटेशन। वहां गए मेडिटेशन रिट्रीट की, बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लगा। वापिस आए तो वापस में तो स्ट्रेस हो गई, टेंशन तो हो गई, बिजनेस में थोड़ी वो वाला एक्सपीरियंस होने वाला है। वो वाला एक्सपीरियंस कहाँ होना था? ड्यूरिंग द मेडिटेशन रिट्रीट। राजयोग में हम क्या अटेंशन रखते हैं? जो मेडिटेशन के दौरान हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जिएंगे। जैसे ही उसको जीना शुरू करेंगे, जो मेडिटेशन के दौरान फीलिंग आ रही थी लाइटनेस की, वो सारा दिन में आने लगेगी। धीरे धीरे आत्मा इस स्टेज पे पहुंचेगी कि क्राइसिस होगा सामने, चैलेंज होगा, केओस होगा, आसपास के लोग टेंशन में होंगे, हम वही लाइटनेस की फीलिंग में होंगे,
3: क्योंकि हम फिर सोल कॉन्शियसनेस में,
4: सोल कॉन्शियसनेस में है। सिर्फ ईगो कॉन्शियसनेस की वजह से आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है, उसका सोच टर्बुलेंट हो जाता है, उसके बोल टर्बुलेंट हो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज हिल जाती है, सिर्फ ईगो कॉन्शियसनेस की तरफ। एंड दैट्स व्हाई हु एम आई, ये एक लाइन को अगर ऐसे पकड़ के रखें और उसके थ्रू जीवन को जिए, सब कुछ बदल जाएगा। मन की फीलिंग, शरीर का स्वास्थ्य, आत्मा के रिश्ते, सब बदल जाएगा। काम करने का तरीका बदल जाएगा।
3: लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हुआ माई भी कर लिया, सुबह मेडिटेशन भी कर लिया, उठ के देखा कि चाय टेबल पे रेडी नहीं है, नाश्ता रेडी नहीं है, फिर चिड़चिड़ चालू।
4: हाँ, सो अगेन नेवर माइंड, स्टॉप, चेक, रिफ्लेक्ट, चेंज, हर बार करना है।
3: स्टॉप,
4: सपोज आपने कहा मेडिटेशन किया, अच्छा लगा, उठे, थोड़ी देर में 5 मिनट में चाय नहीं आई टेबल पे तो गुस्सा कर दिया, क्योंकि हमारे पास दोनों वायरिंग है, अंदर दोनों संस्कार है। स्टॉप, पॉज करके उस टाइम अपने आप से पूछे, वॉज दिस राइट, ये करना चाहिए था। अब उस क्षण हो सकता है मन कुछ आंसर देना शुरू करे, ऑब्वियसली इतना भी नहीं उसको पता कि इतने बजे चाय लानी थी, उसको सिर्फ पूछो, वो मालूम है मुझे कि चाय लानी चाहिए थी, लेकिन ये जो मैंने किया, वॉज दिस राइट। टॉकिंग टू योर सेल्फ, मेडिटेशन कोई 2-3 मिनट नहीं चलने हैं। मेडिटेशन मीन्स, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज आत्मा का अपने आप से रिश्ता, दैट इज राजयोग का फर्स्ट स्टेज, अ रिलेशनशिप विद द सेल्फ। आज तक औरों से बहुत रिश्ते निभाए हैं।
3: क्या होता है अपने साथ रिश्ता?
4: अपने आप से रिश्ता, औरों के साथ रिश्ता कैसे होता है?
3: दोस्ती का होता है, प्यार का होता है।
4: हाँ, पर रिश्ते में क्या होता है, किसको कहेंगे कि मेरा इसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है? तो
3: जिनके साथ बैठ के अच्छा लगता है, जिनके साथ बैठ के बातें शेयर करते हैं,
4: और
3: जिनके साथ उठते बैठते खाते पीते रहते हैं।
4: यस, अपने आप के साथ करना है। आपने कहा अब मुझे मैं अच्छा लगने लगा हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अपने आप के साथ रिश्ता। अकेले भी बैठे हैं, अपने आप के साथ अच्छा लग रहा है, वी डोंट फाइंड द नीड टू गो ऑन टॉकिंग टू अदर पीपल।
3: थोड़ा सा प्यारा वाला रिश्ता है ना, पहले तो उल्टा था, I hate myself,
4: क्योंकि हम अपने आप से कड़वी बातें करते थे, अब हम प्यारी बातें करेंगे। अब सपोज आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठी हूँ, हमने अभी मेडिटेशन पूरा किया, ठीक है, उठे और मैंने उठकर किसी को यहाँ जोर से डांट दिया कि ऐसे करना था क्या काम, इतनी बार बोला तो भी समझ में नहीं आता, तो मैंने डांट दिया। नाउ यू आर वॉचिंग मी डू दिस, आप देख रहे हैं कि ये मैं कर रही हूँ, यू आर अ फ्रेंड, तो आप क्या कहेंगे? अब बताइए मुझे, यू आर अ फ्रेंड,
3: आपको समझाऊं,
4: क्या आप सिर्फ डिटैच्ड होकर देखते रहेंगे कि हाँ ये कर रहे हैं, इतने जोर जोर से डांट रहे हैं?
3: इशारे से ट्राई करूंगा बोलने के लिए।
4: हाँ, क्या बोलेंगे?
3: मैंने बोला एक, हाँ, रहने दो।
4: तो मैं आपको ही सुनाना शुरू कर दूंगी, आपको दिख नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहे ये लोग, ऐसे करो तो ये तो सुनना ही नहीं इन्होंने कुछ भी, अब यू आर अ फ्रेंड, तो क्या करेंगे?
3: देखो इससे और काम खराब हो जाएगा, अब रहने दो, बाद में शांति से समझा लेंगे, अभी आप शांत हो जाओगे तो आपका भी काम खराब हो जाएगा।
4: अच्छा, आप ये सब क्यों बोलेंगे मुझे? रहने दो ना, मैं गुस्सा कर रही हूँ, छोड़ दो, आप क्यों राय देने आते हैं बीच में?
3: फ्रेंड,
4: दैट्स इट,
3: रिलेशनशिप,
4: मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, अपने मन का दोस्त। जब देख रहे हैं कि हमने ऐसे गुस्सा कर दिया तो पॉज और अपने आप से बात करें और एग्जैक्टली सेम लाइन कह दें।
3: कभी कभी गुस्सा दूर वाले पे भी आते,
4: दोनों लेते हैं पहले, लेकिन सामने सामने है, जैसे आपने कहा चाय नहीं आई, डांट दिया, ओके, अब अपने आप को बैठेंगे, 1 मिनट ही लगता है, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए कि लंबा कुछ रिफ्लेक्शन करना है, नहीं, 1 मिनट, जैसे आपने कहा इशारा ही दे दो, अपने आप से बात करिए 30 सेकेंड्स, तो क्या कहेंगे अपने आप को? चेक, क्वेश्चन योर माइंड, Was this my right response? अपने आप को क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्वेश्चन करते ही हम एक नई थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, आई कुड हैव डन दिस अनदर वे, मैसेज गया।
3: लेकिन मैं सब बोलता हूँ, तू अपने आप को क्यों डिस्टर्ब कर रहे है? हो गई बात पुरानी, पास खत्म न छोड़ो,
4: हो गई बात
3: अभी
4: पुरानी,
3: सोच के और क्यों डिस्टर्ब
4: सोच नहीं रहे, हम ये नहीं सोच रहे हाय मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, हर बार मैं करता हूँ, ऐसे नहीं थॉट क्रिएट करनी, ये थॉट रॉन्ग पैटर्न है। सी, ये अब हमें ध्यान रखना है, हर थॉट जो क्रिएट की, एक फैक्ट्री है ना, हर थॉट क्रिएट की एनर्जी रिलीज होगी, ब्रेन के सेल्स में जाएगी, केमिकल्स रिलीज होंगे, फिर टेक केयर. तो हमने ये थॉट नहीं क्रिएट करी, क्यों गुस्सा किया, अभी तो मेडिटेशन किया था फिर भी कर दिया, मैं तो सीखता ही नहीं हूँ. ये तो एक एक रॉन्ग थॉट है.
3: किचन में हम दूध बनाते हैं तो नींबू को दूर रखते हैं ताकि सारा एक ड्रॉप से पूरा फट जाएगा.
4: yes.
3: यहाँ पर मतलब एक थॉट से इतना डिस्टर्बेंस
4: सारी ये चेंज हो जाएगा. तो वो नहीं हम कर रहे. हम क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वॉज दिस माई राइट रिस्पॉन्स, आस्क, ताकि मन साइलेंट हो गया, गुस्सा तो खत्म हो गया, बात हो गई. अब वो मन कहेगा नहीं, आई कुड हैव डन इट अनदर वे, ये मैं दूसरी तरह से कर सकता था. ये थॉट इतनी इम्पोर्टेंट है,
3: उसके अंदर फिर ड्रॉप हो जाता है मेरा मन.
4: नहीं, चेंज ये भी आदत है.
3: नहीं, यहाँ क्या होता है ना, ऐसे मैं बुरा फील करने लगता हूँ, देखो फिर से कर दिया मैंने, वापिस आ गया मैं.
4: वी आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन फिर से कर दिया क्यों कर. नहीं, वी आर क्रिएटिंग अ थॉट फॉर द नेक्स्ट टाइम, जो हो गया उस पर नहीं. जैसे हमने मन से कहा वॉज दिस द राइट वे, कुड आई हैव डन इट अनदर वे, मन कहेगा येस आई कुड हैव डन इट अनदर वे. उस क्षण ये थॉट क्रिएट करने से हमने यहाँ पे एक नई रिकॉर्डिंग शुरू की है. अगर okay. हमने ये थॉट क्रिएट की मेरे से होता ही नहीं. अभी आप सिर्फ एक एक पेपर है उस पर एक पेंसिल लेते हैं, गोल गोल घुमाते जाते हैं, ठीक है. अब जितनी बार उसको गोल गोल घुमाते जाएंगे वो जो पैटर्न है वो कितना गहरा होता जाएगा. तो एक बार गुस्सा कर दिया तो नेगेटिव डिजाइन बना, फिर उसके ऊपर गिल्ट भी क्रिएट किया, फिर अपने आप को कोसा भी, फिर अपने आप को फेलियर भी कहा. वो ग्रूव नेगेटिव वाला ही डीप होता जाएगा. कॉन्शियसली अनदर पैटर्न, यस आई कुड हैव डन इट अनदर वे. अब हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम वो ही पैटर्न पर बार बार पेंसिल नहीं घुमाते जाए ऐसे, क्योंकि वो ग्रूव जो है वो बहुत गहरा होगा. अब हमारी थॉट क्वालिटी चेंज है, इसे आई कुड हैव डन दिस अनदर वे, इसको मैं दूसरी तरह से कर सकता था. नदर ग्रूव, नदर ग्रूव, नेक्स्ट टाइम बात आएगी ये वाला गाना बजने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने उसका प्रिंट तो बनाया अंदर. लेकिन अगर गिल्ट क्रिएट करते गए तो हमने बेटर ऑप्शन का तो प्रिंट ही नहीं बनाया अंदर, तो नेक्स्ट टाइम फिर गुस्सा कर देंगे, फिर गिल्ट क्रिएट कर देंगे. गुस्सा और गिल्ट का संस्कार फिर पक्का होता जाएगा, एंड इट विल गो इनटू द ऑटोमेटिक मोड. दे
3: सही बात है सिस्टर, लेट मी ट्राई दिस टाइम टू मेक अ न्यू वन, अ ब्लैंक वन, एंड पुट ऑल द गुड थिंग्स इन दैट.
4: थैंक यू सो मच.
3: नमस्कार. थैंक यू.
5: The original nature of the soul is like a white cloth, clean and spotless. The acquired

0: हेलो बच्चों।
1: हेलो दीदी,
0: कैसे हो तुम लोग?
1: बहुत अच्छे।
0: और तुम लोग की गर्मियों की छुट्टियां चल रही है ना?
1: हाँ।
0: तो फिर तो कोई भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता होगा।
2: हाँ, देखिए घर पे बोर हो जाते हैं।
0: घर पे बोर हो जाते हो? दोस्तों के बिना तो हम सब बोर हो जाते हैं ना।
1: हाँ दीदी।
0: तुम लोग के सारे दोस्त स्कूल में हैं या कुछ दोस्त घर के पास भी रहते हैं?
3: कुछ दोस्त घर के पास रहते हैं।
0: अच्छा, आदि के कुछ दोस्त घर के पास रहते हैं। कौन कौन रहता है आदि के दोस्त?
3: यश, देवत, आर्यन और विवेक।
0: अरे वाह, आदि के तो बहुत सारे दोस्त हैं। और सताक्षी?
4: मेरी भी रहती है एक फ्रेंड।
0: एक फ्रेंड रहती है घर के पास। और भुवना?
5: मेरी तो अपार्टमेंट है ना, इसलिए बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन मेरे से कम उम्र में। इवलिन, ईथन, वैष्णवी, कार्तिक, अनन्या।
0: मतलब ये सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपसे छोटे हैं?
5: हाँ, बहुत छोटे।
0: कितने बड़े हैं?
5: फोर्थ क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे।
0: अरे वाह, तो हमारे दोस्त तो हमसे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं।
5: हाँ,
0: है ना बच्चों?
2: हाँ।
0: दोस्ती की तो कोई एज नहीं होती, लेकिन ज्यादातर फ्रेंड्स तो हमारे वही बनते हैं जो हमारे साथ में पढ़ते हैं।
5: हाँ,
0: क्योंकि
5: हाँ।
0: उनके साथ हम दिन भर रहते हैं, खेलते हैं।
2: हाँ दीदी,
0: हमारे भी बहुत सारे दोस्त होंगे।
2: हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ज्यादा स्कूल में ही।
0: ज्यादातर स्कूल में ही है। घर
2: हाँ।
0: के पास कोई भी दोस्त नहीं है जिनके साथ क्रिकेट खेलते हो?
2: हाँ, ऐसे तो बहुत है क्रिकेट खेलने वाले दोस्त, लेकिन स्पेशल फ्रेंड्स कुछ खास नहीं है।
0: अच्छा, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त?
2: अच्छे तो है।
0: कितने दोस्त?
2: मेरे अच्छे दोस्त दो हैं जो मेरे घर के पास रहते।
0: दो दोस्त हैं? वो आपके साथ में पढ़ते हैं कि आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं?
2: एक टेंथ में पढ़ता है और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ट्वेल्थ में पढ़ता है।
0: अच्छा, अरे वाह, मतलब आपके बराबर के ही हैं।
2: हाँ,
0: है ना। आदि, आप कब आपके साथ पढ़ता है? कब से आपके साथ में पढ़ता है? आयुष आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है?
3: मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुष और मेरी दोस्ती कब हुई। एक दिन जब हम पार्क में खेल रहे थे, तब वो आया था और बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं क्या। तो मैंने बोल दिया हाँ खेलो। तो उसके खेलने के बाद जब हम घर जा रहे थे, तो मैंने उसका नाम पूछा और उसने मेरा नाम पूछा। ऐसे ही दोस्ती हो गई हमारी।
0: ऐसे ही खेलते खेलते दोस्ती हो गई।
3: हाँ।
0: आयुष और आदि की। सताक्षी, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है?
4: मेरी बेस्ट फ्रेंड उन्नति है।
0: उन्नति, और कितने सालों से वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है?
4: वो 3 इयर्स से।
0: 3 इयर्स से। अच्छा, उन्नति आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड जो आपकी है, वो आपको सबसे ज्यादा पसंद क्यों है?
4: क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग है, इंटेलिजेंट

0: केयरिंग है, तो क्या वो आपकी बहुत केयर करती है?
1: हाँ, हम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं।
0: तो कोई सिचुएशन आपको ऐसी याद है, कोई ऐसी बात जो उसके बारे में आपको याद?
1: बहुत झगड़ा करती है मुझसे, तो एक बार वो उससे मेरे से बहुत बुरा वाला झगड़ा कर लिया था, तो उन्नति ने उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था।
0: अच्छा, मतलब उन्नति ने जाके उसको समझाया था?
1: हाँ।
0: बेस्ट फ्रेंड्स की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो प्यार से समझाते हैं, और अगर हम कोई भी गड़बड़ कर दें तो उसको क्या करते हैं?
1: सॉल्व करते हैं।
0: सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं, है ना? भुवना, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है?
2: मेरे बेस्ट फ्रेंड चार लोग हैं। निवेदिया, सुश्रुता, आकांक्षा, विंध्या।
0: ये सब आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं?
2: नहीं, विंध्या तो दूसरी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन ये तीनों मेरे साथ ही है। लेकिन विंध्या जब मैं छोटी थी तब से मेरी बेस्ट फ्रेंड थी।
0: अच्छा, मतलब विंध्या आपकी सबसे पुरानी दोस्त है।
2: हाँ।
0: उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगती है?
2: वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है।
0: बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा। तो कोई सिचुएशन आपको याद है जब उसने आपको अंडरस्टैंड किया हो?
2: हाँ, एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, ये हुआ, तो मैंने कुछ बात नहीं की। थोड़े लोग आते हैं और पूछते क्या हुआ, मुझे बहुत इरिटेशन होता है, लेकिन वो अच्छे से समझती है और सॉल्व करती है, प्यार से बात करती है और बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है।
0: अच्छा, मतलब और लोग पूछते हैं तो आपको बुरा लगता है?
2: हाँ।
0: लेकिन वो इतने प्यार से आपसे बात करती है और पूछती है,
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों की ये खूबी तो होती है कि वो हमसे इतने प्यार से बात करते हैं, उन्हें पता होता है जब हम टेंशन में हैं, तो इतने अच्छे से बात करते हैं कि हमारी सारी टेंशन हम उन्हें बता देते हैं, और फिर आपको अच्छा महसूस भी होता है ना?
2: हाँ।
0: और बाकी तीनों फ्रेंड्स?
2: वो भी बहुत अच्छे है, लेकिन इतना बड़ा सिचुएशन नहीं आया था कि मैं उनसे इतना बात करूं, लेकिन वो बहुत अच्छी दोस्त है विंध्या।
0: सिचुएशन आने पे हमारी अच्छी दोस्तों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज और उभर कर आती है।

0: पंकज, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है?
1: मेरे बेस्ट फ्रेंड है सैंडी और एक हर्षित है।
0: सैंडी और हर्षित,
1: ये उस टाइम की बात है जब मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड हर्षित फ्रेंड नहीं बने थे। तो हम पहले शांति उन्हें मिला करते थे। उस वक्त मैं उसे नहीं जानता था और ना वो मुझे जानता था, लेकिन मैं मेरे दोस्तों के साथ गेम खेलता था जिसमें हम फाइटिंग करते थे एक दूसरे से। तो हर्षित को मैं जानता नहीं था और वो मुझे आके मार के चला जाता। तो इस बात पे मुझे गुस्सा आया और मैं जब उसे मारने गया तो वो जाके बाथरूम के पीछे छुप गया। तो उसके बाद वो जब भी मुझे मिलता मैं उसको मारने के लिए भागता, लेकिन वो हमेशा भाग जाता। मतलब हमें पता ही नहीं चला कि ऐसी लड़ाई लड़ाई में हमारी फ्रेंडशिप कब हो गई।

0: सैंडी की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है कि मैं कितना भी परेशान होता हूँ लेकिन उसके पास रहता
1: हूँ। अच्छा, आप अपनी परेशानियाँ भूल जाते हो।
0: हाँ।
1: तो कोई ऐसी बात आपको याद है जब आप बहुत परेशान हुए हो? कभी पढ़ाई की कोई टेंशन हुई हो या घर की कोई टेंशन हो और आप सैंडी के साथ हो और फिर सब भूल गए हो?
0: हाँ, वैसे एक बार फ्रेंड से झगड़ा हुआ था किसी दूसरे फ्रेंड से, तो मैं अपने फ्रेंड सैंडी से मिला और उसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि मतलब अपनी प्रॉब्लम ही भूल जाते हैं।
1: मतलब वो बहुत सारी मस्ती करता है आपके साथ?
0: हाँ।
1: कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, और चाहे हम कितना भी सीरियस क्यों ना हो, हम वो सब उनकी मस्ती में भूल जाते हैं। आदि, क्या आपका भी दोस्त आपसे बहुत मस्ती और मजाक अपने दोस्त के साथ?
2: मस्ती और मजाक।
1: अच्छा, हमारे बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो हमने बात की, पर हम भी तो उनके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे ना?
2: हाँ।
1: तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपने अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद की हो?
0: हाँ, बहुत बार की है।
1: बहुत बार की है, तो पंकज बताएगा हमें।
0: जी दीदी।
1: पंकज, क्या आपके सामने भी कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आपने सैंडी की मदद की हो?
0: सैंडी का तो याद नहीं, लेकिन मैंने हर्षित की हेल्प की थी एक बार।
1: अच्छा, क्या मदद की थी?
0: उसे आई साइट है तो उसके एक बार ग्लासेस टूट गए थे।

0: उसके ग्लासेस टूट गए थे तो आपने क्या किया फिर?
1: तो उसके पास पैसे नहीं थे और उसे डर लग रहा था कि घर पे कहीं डांट ना पड़े, तो उसे मैंने पैसे दिए थे और उसके ग्लासेस 2 दिन के अंदर ठीक करवा के वापस लिए थे।
0: लेकिन आपने उसे पैसे कैसे दिए, अपने मम्मी से पूछ के?
1: मम्मी ने मुझे दिए थे पॉकेट मनी।
0: अपनी पॉकेट मनी से आपने उसकी मदद की? बात है कि अपनी पॉकेट मनी से आप उनकी मदद करें, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी बात आए जहां आपको ज्यादा जरूरत हो तो अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। भुवना, आपको कोई ऐसी सिचुएशन याद है?
2: हाँ, एक दिन हमें सडन टेस्ट हुआ तो टीचर ने 2 मिनट दी सबको रिवाइज करने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो साइंस सब्जेक्ट है और वो पूर है उसमें। तो मैंने और मेरे दोस्त ने साथ में कंबाइंड स्टडीज की और उसको समझाया क्या किया है, और फिर हम दोनों ने एग्जाम इतना अच्छा लिखा कि हमको 10/10 मिला।
0: अरे वाह, दोनों को?
2: हाँ।
0: ये दोस्ती की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि हम आगे अकेले नहीं बढ़ते बल्कि अपने दोस्त को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।
2: हाँ,
0: है ना? तो आदि, आपने अपने दोस्त की कभी कोई मदद नहीं की?
3: की है।
0: क्या की? पढ़ाई में की कि खेलने में की कि मस्ती में की?
3: मैंने अपना फेवरेट गेम उसे दिया था, वो मांग रहा था इसलिए।
1: कैसे दिया?
3: जेंडर से।
0: अच्छा, मतलब आपका फेवरेट वीडियो गेम आपने अपने दोस्त को दिया?
3: हाँ।
0: अपना फेवरेट गेम शेयर किया। अच्छा, क्या तुम लोग का कभी कोई स्कूल चेंज हुआ है?
1: हाँ, हुआ है।
0: और पुराने दोस्त छूटे हैं?
3: हाँ।
1: नहीं, मेरे पुराने दोस्त नहीं छूटे।
0: अभी भी उनसे मिलते हो?
1: हाँ, अभी भी मिलता हूँ।
0: तो वो दोस्त अभी भी वैसे ही है या कोई दोस्ती में फर्क पड़ा है?
3: नहीं,
1: मेरे सारे दोस्त तो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थे।
2: मैंने तो नर्सरी और LKG अरबिंदो में पढ़ी, तब से मैं एक ही स्कूल में ही हूँ, तो मुझे कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वो छोटे हैं ना, मैं भूल गई।
0: अच्छा, मतलब लेकिन आपके दोस्त वही हैं हमेशा से?
2: हाँ।
0: कभी चेंज नहीं हुए। और आदि तो अभी बहुत छोटा है, है ना आदि? तो आपके दोस्त तो अभी भी वही है।
3: हाँ।
0: ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पुराने दोस्त हमसे छूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं, लेकिन तब भी हमारी दोस्ती हमेशा कैसी रहनी चाहिए?
3: अच्छी।
0: हाँ, जैसे पहले थी वैसी ही रहनी चाहिए, चाहे स्कूल चेंज हो जाए, चाहे हम दूसरी क्लास में आ जाएं, तब भी हमारे पुराने दोस्त हमें वैसे ही लगने चाहिए।
3: हाँ।

0: अच्छा, अब तो हमने बात की अपने बेस्ट फ्रेंड की, लेकिन आपको पता है एक और बेस्ट फ्रेंड हमारे पास होता है।
1: हाँ।
0: कौन?
2: माँ।
0: हाँ, मम्मी, क्योंकि मम्मी से भी तो आके हम सब बातें बताते हैं, है ना?
2: हाँ।
0: तो किस किस की बेस्ट फ्रेंड उनकी मम्मी है?
2: मेरी।
0: और पंकज?
3: मेरी भी है।
0: आदि?
4: मेरी भी है।
0: अच्छा, तो मम्मी के बारे में बताओ, मम्मी के साथ दोस्ती के बारे में भूपना हमें बताएगी।
2: माँ के साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, इतनी अच्छी समझती है कि मुझे कंसोल करती है कुछ हुआ तो, और मुझे पढ़ाई में हेल्प करती है जैसे फ्रेंड्स करते हैं, और सभी बातों में मेरे साथ एंजॉय करती है, कुछ भी जोक्स हो कुछ भी मुझे समझाती है और अच्छे से बात करती है।
0: और सताक्षी?
5: मम्मी मुझे ढेर सारी चीज़ें बनाना सिखाती है और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और मैं उनके साथ हर एक प्रॉब्लम शेयर करती हूँ जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ करती हूँ।
0: हाँ, तो मम्मी इसीलिए हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है क्योंकि वो हमें हर सिचुएशन से निकाल सकती है, हर सिचुएशन में हर बात हम उन्हें बता सकते हैं और हेल्प उनकी ले सकते हैं, है ना पंकज और आदि?
3: हाँ।

0: अच्छा अब मुझे ये बताओ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब जब अभी कोई आपको प्रॉब्लम हो या आपकी छुट्टियां हैं, आपको कुछ चाहिए हो, तो मम्मी पापा तो साथ में होते हैं, बट क्या दोस्तों से भी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो?
1: हाँ,
0: क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने दोस्तों से? सताक्षी,
1: वो बहुत ही शेयरिंग हो और मतलब एक दूसरे को समझने वाले हो, क्योंकि जब तक वो लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो फ्रेंड्स नहीं कहलाएंगे अच्छे, और फिर झगड़ा होता रहेगा एक दूसरे में।
0: और पंकज, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो?
2: मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी मुझे मेरे फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़े तो वो कभी मुझे मना नहीं करें। जैसे हर फ्रेंड की आदत होती है कि चाहे खुद को कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर किसी फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए।
0: मतलब जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारा दोस्त हमारे साथ हो।
2: हाँ,
0: और भुवना, आप क्या चाहते हो अपने दोस्त से?
3: मेरे दोस्त ने, मैं ये चाहती हूँ कि वो हंसते बात करे, क्योंकि थोड़े लोग मेरे दोस्त ना बुरे तरह से बात करते हैं, कि बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात ना इतना इरिटेटेड हो जाते हैं कि दूसरे लोगों को बहुत बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त हंसते बात करे और हर टाइम खुश से रहे।
0: आप चाहते हो कि आपके दोस्त कोई भी ऐसी बात ना करें कि किसी को बुरा लगे।
3: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है भुवना। और आदि?
4: मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें और दूसरों की हेल्प करते रहें।
0: दूसरों की हेल्प करते रहें। तो पता है बच्चों, ये एक्सपेक्टेशंस हमारी जो हमारे दोस्तों से हैं वो कैसे पूरी होंगी, किसी को पता है?
1: जब हम लोग उनके साथ इसी तरह से बिहेव करें।
0: हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो आप दूसरों से चाहते हैं वैसा आप बन के दिखाइए तो आपको वो ज़रूर मिलेगा।
3: हाँ।
0: तो ये सब चीज़ें जो आप अपने दोस्तों से चाहते हैं वो अगर आप उनके साथ करेंगे, वही व्यवहार आपको वापस उनसे ज़रूर मिलेगा।
1: लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो सभी जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उनसे, वो सभी वैसी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, वो सभी ऐसे हैं, तभी तो वो हमारे दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना बच्चों?
1: हाँ।
0: लेकिन अगर कभी कभी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए, बताओ?
2: हमें उनका साथ तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
0: तो अगर आप लोगों के दोस्तों से कोई गलती हो जाएगी तो क्या करोगे?
2: उसे माफ कर देंगे
0: और बाद में उसे प्यार से समझाएंगे।
2: बिल्कुल यही होता है, अभी भी
0: यही होता है।
1: हाँ।
0: अच्छा, क्या तुम लोग का अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ है?
1: हाँ,
2: हाँ हुआ है।
0: अच्छा, तो कौन सबसे पहले बताएगा झगड़े के बारे में? पंकज, अगर आपका दोस्त आपसे झगड़ा करे किसी गलत काम के लिए, आपको करने को बोले कि कोई गलत काम है जो वो बोले कि आपको करना है, आपका बहुत अच्छा दोस्त, तो आप क्या करोगे?
2: फिलहाल तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरे किसी अच्छे दोस्त ने कोई गलत काम करने को कहा हो। मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे समझदार हैं और कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते या गलत काम नहीं करते।
0: कोई कभी बोले तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में?
2: उस सिचुएशन में उसे डायरेक्टली मना कर दूंगा।
0: डायरेक्टली मना कर दोगे? और अगर वो आप पे गुस्सा हुआ तो?
2: अगर वो मुझ पे गुस्सा हुआ तो मैं उसे समझाऊंगा, समझे तो ठीक है। तो हमें गलत काम तो हमें नहीं करने चाहिए नहीं, और फ्रेंड भले ही कितना भी अच्छा हो लेकिन गलत काम करने को कहता है तो उसे मना कर देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, फ्रेंड कितना भी अच्छा हो अगर गलत काम करने को कहे तो हमें मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड के लिए भी गलत है ना? दोस्ती कितनी भी अच्छी हो, गलत काम हमें उस दोस्ती में कभी
1: नहीं करना
0: है ना आदि? आदि कोई गलत काम तो करता नहीं, और आदि के दोस्त भी

0: अच्छा अब मुझे बताओ दुखी, दोस्तों के साथ तुम्हारी सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी है?
1: मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है मेरे बर्थडे टाइम पे, मेरे खूब सारे फ्रेंड्स आए थे स्कूल के और हमने खूब ज्यादा मस्ती की थी।
0: बर्थडे पे तो दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है। और आदि, सबसे ज्यादा मजा दोस्तों के साथ कब आया?
2: जब मेरा बर्थडे हुआ था तभी आया था।
0: बर्थडे स्कूल में मनाया था कि घर पे?
2: दोनों जगह।
0: दोनों जगह दोस्तों के साथ?
2: हाँ।
0: अरे वाह, तब तो टू टू टाइम मजा आया आपको। और पंकज?
3: मुझे मेरे दोस्तों का साथ मजा आता। एक बार जब मैं सुंदर माता मंदिर घूमने गया था अपने फ्रेंड्स के साथ।
0: घूमने गए थे तो वहाँ पे क्या क्या किया दोस्तों के साथ?
3: वहाँ पे बहुत मस्ती की, बस हम वो भूल नहीं सकते।
0: और भुवना?
4: जब हम पिकनिक गए वाटर पार्क।
0: वाटर पार्क पिकनिक गए स्कूल से?
4: हाँ।
0: अच्छा, तो क्या क्या किया वहाँ पे?
4: बहुत सारी गेम्स थी, हम सब दोस्तों ने पैसे पैसा बांट लिया और हम सब बहुत सारे गेम्स ट्राई की और इतना मजा आया कि मैं भूल नहीं सकती वो मेमोरी।
0: मतलब जब हम दोस्तों के साथ ग्रुप में बाहर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे हमारा बर्थडे हो चाहे पिकनिक हो, तो हमें बहुत मजा आता है।
4: हाँ।
0: ठीक है बच्चों, तो हमने दोस्तों के बारे में बात की और ये भी बात की कि हमें दोस्ती निभानी भी जरूरी है कि नहीं?
4: हाँ।
0: तो जो एक्सपेक्टेशन हम अपने दोस्तों से रखते हैं वो पहले हमें पूरी करनी है, और अगर हमारा दोस्त कभी कोई गलत काम करने को कहे तो हमें उसकी बात
5: नहीं
0: माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दोस्त के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है।
1: हाँ।
0: है ना बच्चों?
4: हाँ।
0: और क्या जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं बस वही आपके दोस्त होते हैं, या जो लोग जिनसे आप डेली मिलते हो, जिनके साथ रहते हो, वो भी आपके दोस्त होते हैं?
4: सब लोग हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन हमको जो बहुत सारे जिनसे हमको बहुत रिलेशन हुआ वो हमारे खास दोस्त होते हैं।
0: वो हमारे खास दोस्त होते हैं, लेकिन जिन लोगों से हम मिलते जुलते हैं अगर उन्हें भी दोस्त बना लें तो उनके साथ भी हम इंजॉय कर सकते हैं।
4: हाँ।
0: है ना आदि?
1: मुझे एक शायरी याद है, ये शायरी उस वक्त पे डिपेंड करती है जब सारे दोस्त छूट जाते हैं और हम उन दोस्तों को याद करते हैं। शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हसीन पल मिल जाए, चल बैठे क्लास की उस लास्ट सीट पे, शायद फिर वो पुराने दोस्त मिल जाए।
0: अरे वाह, तो फिर सब लोग तालियां बजाएंगे, क्योंकि बचपन की जो दोस्ती होती है वो सबसे स्ट्रांग रहती है, जब आप बड़े हो जाओगे तब भी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी।
3: हम भी वो टाइम मिस करते हैं।
0: इसलिए हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहो, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करो और उस दोस्ती को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखो।
3: हाँ निधि।
0: लास्ट में ये बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहते हो?
3: मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कहना चाहता हूँ वो अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पे पहुँच जाए लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूले, और मुझे जब भी उसकी ज़रूरत हो वो हमेशा मेरे पास हो,
0: और उसे जब आपकी ज़रूरत हो
3: तो मैं भी उसके पास होऊंगा।
0: मतलब उसे जब भी आपकी ज़रूरत होगी, चाहे वो कहीं भी चला जाए, आप उसके पास होगे।
3: हाँ जी।
0: भुवना?
2: कुछ भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कहीं भी हो जो शेयर करे, और ताकि हम दोनों बात करें और उसको समझाई।
0: अच्छा?
2: ऐसा बात करिए और हम दोनों को कंसोल करिए ताकि उसको इतना बुरा ना लगे और वजन थोड़ा कम हो जाएगा।
0: मतलब आपकी फ्रेंड जहाँ भी हो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो शेयर करे ताकि वो प्रॉब्लम हल्की हो जाए और उसका
2: हाँ।
0: वजन कम हो जाए और एक सलूशन आप लोग मिलके निकालो।
2: हाँ।
0: है ना? अपने बेस्ट फ्रेंड को आदि क्या मैसेज दोगे?
6: वो जहाँ भी हो मुझे ना भूले जब भी वो बड़ा हो जाए।
0: जब वो बड़ा हो जाए आपको नहीं भूले, इतने नटखट प्यारे आदि को कौन भूल सकता है?
3: कोई नहीं।
0: और आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स को
6: नहीं भूलो।
0: सताक्षी?
1: मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने इन स्कूल टाइम में खूब ज्यादा मस्ती करें और फिर एक दूसरे को कभी ना भूले, क्योंकि फिर 11th में तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हॉस्टल में चले जाएंगे, तो हम लोग एक दूसरे को कभी भी ना भूले।
0: दोस्ती अगर सच्ची है तो डिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो एक दूसरे को नहीं भूलते और एक दूसरे की हमेशा खुशी चाहते हैं, जिससे दोस्ती बनी रहती है। ये था हमारा कार्यक्रम, आज हमने बच्चों से बात की दोस्ती के बारे में और दोस्तों के बारे में। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।

जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।

ये कचतुर नार हम छोड़ेगा।

0: चतुरा ना घोड़ा का चतुरा ये घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पैर है ना या घोड़ा बोलना या चतुरा बोलना का
1: एक चतुरा।

0: अब तो कोई दीवार नहीं है ना?
1: नहीं, अब कोई दीवार नहीं मीनू।
0: मीनू नहीं, मीना।

0: कहीं दाग न लग जाए।
1: ठीक कहती हो, कहीं आग न लग जाए।

0: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
1: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, फौलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

निकालू, मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना।